सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश के संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग भी मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह

0: ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए आज का चिंतन, भ्रष्टाचार से बचें।
3: रामकृष्ण परमहंस परस्पर चर्चा में शिष्यों को बता रहे थे, मनुष्यों में कुछ देवता पाए जाते हैं, कुछ सामान्य कोटि के मनुष्य ही, और शेष तो नरपिशाच ही होते हैं। नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, ने पूछा, भला इन नरपिशाचों, मनुष्यों और देवताओं की पहचान क्या है? परमहंस ने कहा, वे मनुष्य देवता हैं, जो दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वयं हानि उठाने के लिए तैयार रहते हैं। मनुष्य वे हैं जो अपना भी भला करते हैं और दूसरों का भी, और नरपिशाच वे हैं जो दूसरों की हानि ही सोचते और करते हैं, भले ही इस प्रयास में उन्हें स्वयं ही हानि सहनी पड़े। सदाचार मनुष्य को देवता भले न बना सके, नरपिशाच होने से उसे बचाए रखता है। नगर में सेठ जी की दवा की दुकान थी। दुकान खूब चलती थी। देखते ही देखते सेठ जी की नगर के प्रतिष्ठित धनी व्यक्तियों में गिनती होने लगी। दलालों के माध्यम से उन्होंने ये प्रचारित कर दिया था कि उनकी दुकान में दवा के मूल्य में छूट मिलती है जो किसी दूसरी दुकान में नहीं। सेठ जी अपने नगर में महीने में कुछ ही दिन रहते थे, दूसरे बड़े बड़े नगरों का दौरा लगा ही रहता था। एक बार ऐसे ही दौरे में कुछ दिनों के लिए वे अपने नगर से बाहर गए हुए थे। इसी बीच उनका युवा लड़का बीमार पड़ गया। सेठ जी की पत्नी ने घबराकर डॉक्टरों की टोली घर बुला ली। डॉक्टरों ने रोग का निदान किया, इंजेक्शन और खाने की दवा लिखकर मरीज को कब कब दवा देनी है समझाकर वे चले गए। सेठ जी की पत्नी ने सारी दवाइयां अपनी दुकान से मंगाकर देनी आरंभ कर दी, किंतु उनके पुत्र की हालत बिगड़ती ही गई। अंत में डॉक्टर फिर बुलाए गए। उन्हें आश्चर्य हुआ, दवाओं से लाभ क्यों नहीं हुआ? दवाओं की जांच से पता चला कि ये सब नकली हैं। दूसरी दुकान से दवाएं लाकर दी गईं, किंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। सेठ पुत्र को बचाया न जा सका। बाद में पुत्र शोक से आकुल व्याकुल सेठ ने स्वीकार किया कि वे नकली दवाओं का धंधा करते थे, जिसका फल ईश्वर ने उन्हें दे दिया। भ्रष्टाचार से अपनी उन्नति करने वाले भूल से ये समझ बैठते हैं कि इससे बुराई समाज के अन्य लोगों की हो रही है और उनकी तो उन्नति हो रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति की धनाशक्ति उसे ये सोचने ही नहीं देती कि इस धन का उपयोग करने वाला कौन है। भ्रष्टाचार के कारण हम आत्मा की रक्षा नहीं कर पाते। गांव का एक दुकानदार गरीबों को उधार सौदा देता था और अपनी बही पर मनमाने ढंग से दिगुना तिगुना मूल्य लिखकर गरीबों को फुसला फुसला कर उसे वसूलता था। सूद पर जो रुपये कर्ज देता था उसे भी गांव वालों से दुगने तिगुने रुपये का कागज बना बनाकर उनके अंगूठे का निशान लगवाकर कानूनी तौर पर अपना दावा पक्का कर लेता था। अपने मूलधन से कई गुना रुपये दुकानदार को देने के बाद भी गांव के गरीबों का कर्ज चुकता ही न था, और उधर बनिए के घर सोना बरस

0: सकता था। एक दिन रात में दुकानदार के घर में अचानक आग लगी। उसकी पुकार पर गांव वाले जुटे। बार बार दुकानदार गांव वालों से अपने उन दोनों बक्सों को लाने के लिए कहता रहा जिनमें आभूषण और कर्ज के कागजात थे। गांव वालों ने बड़े परिश्रम से जान की परवाह न कर दोनों बक्से निकाल दिए। बाद में दुकानदार को होश आया कि उसका 5 वर्ष का इकलौता बेटा तो घर में खाट पर सो रहा है। लड़का गंभीर रूप से जल जाने पर निकाला जा सका और चिकित्सा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। भ्रष्टाचारी पहले तो खूब उन्नति पाता है, शत्रुओं पर विजय भी पाता है। उसे लगता है कि उसकी बुराई तो हो ही नहीं सकती, किंतु निश्चित रूप से अंत में उसका समूल विनाश होता है। गुरु नानक ने पाप की कमाई की रोटी से खून टपकाकर और परिश्रम की रोटी से दूध निकालकर यह संदेश दिया था कि भ्रष्टाचार से बचने में ही हमारा कल्याण है। भ्रष्टाचार ऐसी जहरीली गैस है जो अपने बनाने वाले को भी अपनी गोद में समेट लेती है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, भ्रष्टाचार से बचें। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। सुबह के 6:10 हुए हैं। अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये भक्ति गीत। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

अभी आपने सुना अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्ति गीत। अगला भक्ति गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

0: इसी के साथ कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी,
1: एपिसोड नंबर 52।

माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्रीहरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के दो मनमौजी गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेर कर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूलकर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिव जी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिवजी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो। फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम विवरण के तहत अब आपको बता दें आज केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। 7:20 पर सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान वार्ता। गीत संगीत ही आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। मॉर्निंग मेलोडी ये आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। 9 बजे सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 10 बजे आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11 बजे आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 1:10 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 1:20 से पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 2:55 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 3 बजे सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 पर सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। संध्या 4:30 पर सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी। संध्या 5 बजे सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। संध्या 5:02 पर सुनेंगे इवनिंग मेलोडी। 5:30 पर कार्यक्रम खेती बारी आप सुनेंगे। 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से सुनेंगे। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युव वाणी। 6:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। 7:30 पर सुनेंगे ऑल टाइम हिट्स। 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कानूनी सलाह। 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 10:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से। रात्रि 11 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। और प्रतिदिन की तरह आज भी कार्यक्रम का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। ये थी आज केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:00

0: रक्षामन्त्रिणाम् उपवेशने भागं ग्रहीष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालययोः अतिवृष्ट्यै रक्तवार्णिकी संचेतना प्रख्यापिता इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

0: अभी आपने सुना सत्येंद्र मिश्रा और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। अभी आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग यही समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विज्ञान वार्ता के अंतर्गत पूर्व प्रसारित वार्ता हवाएं क्यों चलती हैं। वार्ताकार हैं विवेक कुमार तिवारी।
1: सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार तिवारी आपके समक्ष आज का विषय हवाएं क्यों चलती है पर विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। हवाएं क्यों चलती है, इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि हवा किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी गैस अणुओं की परतों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से मिलकर बना होता है। जब इन गैसों के अणु गति पकड़ते हैं तो उसे हवा कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हवा क्यों चलती है। सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है तो इससे वायुमंडल भी गर्म होता है। जिन हिस्सों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वह गर्म हो जाते हैं और जिन हिस्सों पर तिरछी किरणें पड़ती है वह ठंडे रहते हैं। पृथ्वी की सतह गर्म होने से हवा भी गर्म हो जाती है। गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की हो जाती है, इसलिए ऊपर उठती है और फैलती है। उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आ जाती है, तो इस तरह हवाएं चलती है। पृथ्वी के चारों ओर हवा निरंतर चलती रहती है। गर्म हवा का ऊपर उठना तथा ठंडी हवाओं का खाली जगहों को भरने के लिए आगे आना, यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। सूर्य की गर्मी से धरती और समुद्र के अलग अलग हिस्से अलग अलग समय पर गर्म होते हैं और इस तरह धरती पर हवा का बहना निरंतर जारी रहता है। हवा के बड़े बड़े हिस्से को एयर मास या वायु संहिति कहते हैं। यह अपने पास स्थित धरती या समुद्र के जिस हिस्से के ऊपर से गुजरता है उसी स्थान के तापमान के अनुसार गर्म, सूखा, ठंडा या नम हो जाता है। तो आप लोगों को पहले ही बता दें कि हवा बनती नहीं है, ना ही हवा खत्म होती है। बिल्कुल आत्मा की परिभाषा की तरह लग रहा है ना, परंतु यह सच है। तो अब यह सवाल उठता है कि जब हवा बनती नहीं है तो फिर चलती कैसे है। तो आइए इसका जवाब हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सीलिंग फैन या टेबल फैन से जानते हैं। हवा वातावरण में पहले से मौजूद होती है। जब पंखे को कोई भी चालू कर देता है तो पंखा पीछे की हवा को आगे कर देता है। पंखा जितनी तेजी से घूमता है उतनी ही तेजी से पीछे की हवा को आगे करता जाता है। इस प्रक्रिया में हवा की मात्रा उतनी ही रहती है जितनी पहले थी, बस अधिक हवा आपके शरीर से टकराने लगती है जिससे यह एहसास होता है कि हवा तेज चल रही है। इस तरह कह सकते हैं कि हवाओं को चलने में वायु दाब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायु दाब भी दो प्रकार के होते हैं, एक उच्च दाब और दूसरा निम्न दाब। निम्न दाब वह स्थान होता है जहां से सूर्य की गर्मी के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठता है तथा उच्च दाब वह स्थान होता है जहां के खाली स्थान को भरने के लिए वायु नीचे की ओर आता है। अब ये जानते हैं कि हवा आखिर और कहां कहां से आती है। पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के अतिरिक्त पृथ्वी का स्थल मंडल ठोस पदार्थों से बना है तथा जलमंडल जल से बने हैं। वायुमंडल कितनी दूर तक फैला हुआ है इसका ठीक ठाक पता नहीं है, पर निश्चित है कि पृथ्वी के चतुर्दिक कई सौ मीलों तक ये फैला है। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। निचले स्तरों में वायुमंडल का संगठन अपेक्षाकृत एक समान रहता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो गैसों की आपेक्षिक मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है। पहला क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल तथा अंतिम बाह्य मंडल। आज हवा के अन्य मुख्य घटक जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है, जिसमें से मुख्यतः जेट स्ट्रीम, मानसून तथा कोरियोलिस प्रभाव है।

पहले हम जानते हैं कि जेट स्ट्रीम का संबंध हवा से क्या है, इसकी विशेषता, इसके प्रभाव क्या हैं, साथ ही जलवायु संबंधी इसकी महत्ता क्या है। जेट स्ट्रीम एक भूस्थैतिक हवा है जो क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों से होकर क्षैतिज रूप से बहती है। आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर बहती है। यह वहां विकसित होती है जहां अलग अलग तापमान वाली हवाएं आपस में मिलती है। इसलिए सतह का तापमान यह निर्धारित करता है कि जेट स्ट्रीम कहां बनेगी। तापमान में अंतर जितना अधिक होगा, जेट स्ट्रीम के अंदर हवा का वेग उतना ही तीव्र होगा। जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक फैली हुई है। जेट स्ट्रीम की जलवायु संबंधी महत्ता भी बहुत अधिक है। कभी कभी जेट स्ट्रीम समताप मंडल में कुछ नमी लाती है जिससे नॉक्टिलुसेंट बादल का निर्माण होता है, मतलब ऊपरी वायुमंडल में बादल जैसी सूक्ष्म घटना जो गहरे धुंधले में दिखाई देने वाले बर्फ के क्रिस्टल से बनी होती है। आपको बताते चलें कि मानसूनी हवाओं के आगमन और वापसी में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी गति में भूपरपट्टी और गर्त निर्माण के साथ वैकल्पिक चक्रवाती और प्रतिचक्रवाती स्थितियों को तीव्र बनाता है। जब वायु द्रव्यमान गतिमान होता है तो यह बारी बारी से विस्तार और संदीपन से गुजरता है, जिसका अर्थ है कि यह बारी बारी से उच्च दबाव और निम्न दबाव से जुड़ा होता है। अब जानते हैं जेट स्ट्रीम की विशेषताएं क्या है। औसतन जेट स्ट्रीम लगभग 110 मील प्रति घंटे की गति से चलती है, लेकिन गर्म और ठंडी हवा के द्रव्यमान के बीच नाटकीय तापमान अंतर जेट स्ट्रीम को बहुत अधिक गति से चलने का कारण बन सकता है, जो लगभग 250 मील प्रति घंटे या उससे भी अधिक हो सकती है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम एक ठंडी हवा है जो हवा को सतह की ओर धकेलती है, जिससे सतह पर उच्च दाब पैदा होता है। इस उच्च दाब क्षेत्र से शुष्क हवाएं निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने लगती है। सरल भाषा में कहें तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ये हवाएं उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश के उत्तरी भागों में शीतलहरी लाती है। बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के बाद फेरेल सेल के प्रभाव से पश्चिमी हवाएं उत्तर पूर्वी मानसून का रूप ले लेती है। जब यह हवा तमिलनाडु के तट पर पहुंचती है तो बंगाल की खाड़ी से प्राप्त आर्द्रता के साथ वर्षा करती है। यहाँ एक सवाल और दिमाग में आता है कि समुद्र में हमेशा हवा तेज क्यों चलती है? क्योंकि समुद्र का पानी सूखने और गर्म होने की प्रक्रिया धीरे होती है और यह गर्म और ठंडी के विभिन्न क्षेत्रों के बीच गतिमान हवा की प्रवृत्ति बदलता है। जब गर्म हवा समुद्र के पानी के ऊपर होता है तो यह उसको गर्म करता है और ऊपर उठता है, जिससे तेज हवा समुद्र में हमेशा चलती रहती है। अब हम जानते हैं कि मानसून और हवा का संबंध क्या है। मानसून पूरी तरह से हवाओं के बहाव पर निर्भर करता है। आम हवाएं जब अपनी दिशा बदल लेती है तब मानसून आता है। जब यह ठंडे से गर्म क्षेत्रों की ओर बहती है तो उनमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण वर्षा होती है। मानसून मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में भारी वर्षा कराती है। ये ऐसी मौसमी हवा है जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्रायः 4 माह सक्रिय रहती है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग ब्रिटिश भारत में एवं पड़ोसी देशों के संदर्भ में किया गया था। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से चलने वाली बड़ी मौसमी हवाओं के लिए प्रयोग हुआ था, जो दक्षिणी पश्चिमी से चलकर इस क्षेत्र में भारी वर्षा लाती थी। हमने देखा कि जब हवा की दिशा बदलती है तो मानसून आता है। तो आखिर कैसे बदलती है हवा की दिशा? होता क्या है कि हवा हमेशा उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव क्षेत्र की ओर जाती है। इसके साथ ही धरती का रोटेशन, मौसमी प्रेशर, गर्मी की वजह से हवा का रुख बदलता है। ये हवा धरती के रोटेशन के आधार पर प्रेशर और हीट के साथ मिलकर अपना रुख बदलती रहती है। ये हवाएं भी कई तरह की होती है जो मौसम पर अपना प्रभाव डालती है। मौसम में होने वाले अधिकतर परिवर्तन हवा की वजह से होते हैं।

0: नमी, हवा का दबाव आदि मौसम के बारे में बताते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि मौसम विभाग के लोग हवाओं की प्रेशर आदि को देखते रहते हैं और समझते हैं कि आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहेगा। अब हम आगे कोरियोलिस प्रभाव और हवा के बारे में जानेंगे और इस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि आखिर हवाएं क्यों चलती है। पृथ्वी के घूमने का मतलब है कि हम एक स्पष्ट बल का अनुभव करते हैं जिसे कोरियोलिस बल के रूप में जाना जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा को दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। यही कारण है कि निम्न और उच्च दबाव प्रणालियों के आसपास हवा का प्रवाह प्रत्येक गोलार्ध में विपरीत दिशाओं में घूमता है। कोरियोलिस प्रभाव का सबसे आम उदाहरण पृथ्वी पर हवाओं के विक्षेपण के माध्यम से देखा जाता है। इस प्रभाव का एक और उदाहरण एक सामान्य खेल के मैदान के गोल चक्कर को देखकर प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे यदि आप एक घूमते हुए गोल चक्कर के बीच में खड़े हैं और गेंद फेंकने का प्रयास करते हैं तो यह दाईं ओर मुड़ती दिखाई देगी, जबकि वास्तव में यह गोल चक्कर पर ना खड़े किसी भी व्यक्ति को सीधी रेखा में यात्रा करती दिखाई देगी। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होने वाली घटना के समान है जहां हवाएं दाईं ओर मुड़ जाती है। यह विक्षेपण यह समझाने के लिए एक प्रमुख कारक है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं निम्न दाब के चारों ओर वामावर्त और उच्च दाब के चारों ओर दक्षिणावर्त क्यों बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत कोरियोलिस प्रभाव के बिना हवा सीधे उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्यों जाती है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। फिर भी यह कुछ ऐसा है जो प्रकृति में हमेशा होता रहता है। चीजें हमेशा समान होने की कोशिश करती है, इसे विसरण कहते हैं। लोग भी ऐसा करते हैं। जब लोग बस में चढ़ते हैं तो क्या वे सभी बस की एक तरफ ही बैठते हैं? क्या अजनबी लोग एक दूसरे के बगल में बैठते हैं जबकि बस की बहुत सारी सीटें खाली हों? तब बिल्कुल नहीं। लोग जितना संभव हो उतना फैलना चाहते हैं। हवा भी बिल्कुल वैसी ही है। अगली बार जब आप हवा का बहाव महसूस करें तो सोचें कि वह कहाँ जा रही है तथा कौन से तापमान और दबाव के कारण वह ऐसा कर रही है। तब आपको
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित वार्ता हवाएं क्यों चलती हैं। जानकारी दे रहे थे विवेक कुमार तिवारी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब सुनिए कार्यक्रम गीत संगीत।

0: अभी आपने सुना फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। आप सुनिए अभिजीत की आवाज में ये गीत।

अभी आपने सुना पंकज उदास को इस गीत में। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत।

अभिजीत के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संगीत यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संगीत। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवी वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे ओलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
3: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना आया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
4: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
2: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
5: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा।

0: भारत ने इस बैठक में दो अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।

0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
1: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा कर रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरल में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। यह चैंपियनशिप 17-23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को एसओपी बनाए आरबीआई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल न बने।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 बज चुके हैं और हम सुनेंगे अब प्रादेशिक समाचार।
1: मां एचआईवी से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को एचआईवी का संक्रमण हो सकता है, इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर मां की एचआईवी जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को एचआईवी के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें।
2: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
3: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
4: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी परीक्षा मामले में छात्रों ने की दूसरे राज्यों के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जांच कराने की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। नेता प्रतिपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई। निर्वाचन आयोग के एसआईआर के तहत राज्य भर में प्रारूप मतदाता और एएसडीडी सूची का प्रकाशन आज। मुख्य निर्वाचन कार्यालय चलाएगा न्यू वोटर हैशटैग अभियान। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण की पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों की सहायता के लिए जारी किए ट्यूटोरियल वीडियो और हेल्पलाइन नंबर। गिरिडीह में भीषण वज्रपात से 9 लोगों की मौत, 10 घायल। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। और रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए डूरंड कप मुकाबले में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली की शानदार जीत, जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में जेपीएससी धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 12वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारी छात्रों ने अब राज्य से बाहर के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जांच कराने की मांग की है। छात्रों ने सीआईडी जांच को नाकाफी बताया है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मामले पर सरकार की पैनी नजर है और जांच जारी है।
1: छात्रों की जो मांग है, छात्रों की जो जिज्ञासा है, उसके अनुरूप समय आने पर आपको निर्णय भी दिखेंगे। और मुझे उम्मीद है छात्र भी अस्वस्थ, और जिस तरीके से जांच टीम सक्रिय है, सरकार के भी निर्णय सामने आएंगे।
0: वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने परीक्षा में सीटों की बिक्री का गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: सरकारी जो नौकरी है उसको ही जेपीसीसी हो या जेसीसी हो, इन लोगों ने बेचा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भाई इन सारे एग्जामों को रद्द करनी चाहिए सरकार। जेपीएससी के चेयरमैन हो, सदस्य हो और महत्वपूर्ण पदों पर जो बैठे हुए हैं, उन सब लोगों को हटाना चाहिए, उन लोगों के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूरी मामला की जाँच सीबीआई से करानी।
0: जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 एजेंटों उमेश कुमार, बुधेश्वर भगत और रमेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये आरोपी अभ्यर्थियों की तलाश करते थे। इसके अलावा सीआईडी ने परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी टीडीपीएल के निदेशक समेत 3 लोगों से गहन पूछताछ की है। राज्य में आज प्रारूप मतदाता सूची और एएसडीडी सूची का प्रकाशन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम इस ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे आज से फॉर्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके साथ ही युवा मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए आज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया पर न्यू वोटर हैशटैग अभियान भी चलाया जाएगा।
3: झारखंड में सभी बूथों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। साथ ही साथ इसे सभी पात्र नागरिक से अनुरोध है, आप फॉर्म 6 के साथ डिटेल्स फॉर्म जमा करें। इस मौके पर झारखंड में एक हैशटैग अभियान कराया जा रहा है, हैशटैग न्यू वोटर्स। उसके माध्यम से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सभी वोटर तक पहुंचने के लिए हम लोग का प्रयास है। इस प्रयास में सबका भागीदारी करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं।
0: नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। उम्मीदवार 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन और शाम 6 बजे तक शुल्क भुगतान कर सकते हैं। सीट आवंटन का परिणाम 17 अगस्त को आएगा। सहायता के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्यूटोरियल वीडियो जारी किए हैं। राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बीरुआ ने साहिबगंज पुलिस मुख्यालय से डायल 112 के 15 अत्याधुनिक आपातकालीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल आमजन को त्वरित और प्रभावी पुलिस सहायता सुनिश्चित करेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
4: सावनी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
5: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
6: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
5: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। धनबाद के कतरास क्षेत्र में लगातार बारिश के बीच कल शाम भीषण भूदशान से आधा दर्जन घर जमींदोज हो गए। मीडिया से बातचीत के दौरान एक महिला का घर लाइव कैमरे पर ढह गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। घटना में घरेलू सामान और वाहन जमीन में समा गए। स्थानीय लोग राहत कार्य में जुटे हैं। सरायकेला खरसावां पुलिस ने साइबर ठगी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए विभिन्न राज्यों के 40 युवाओं को गिरोह के चंगुल से मुक्त कराया है। अपराधी इन युवाओं को बैंक खातों के बदले कमीशन का लालच देकर होटलों में रखते थे। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि युवाओं को चेतावनी देकर परिजनों को सौंप दिया गया है। गिरिडीह जिले में विभिन्न स्थानों पर वज्रपात से 9 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। सबसे दर्दनाक घटना देवरी थाना क्षेत्र में हुई, जहां 4 किशोरों की जान चली गई। जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने पीड़ित परिवारों से मिलकर गांवों में तड़ित चालक लगाने की मांग की है। इस बीच मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, सिंहभूम और सरायकेला सहित राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। हालिया हादसों को देखते हुए प्रशासन ने आमजन से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर न रहने और सुरक्षित इमारतों में शरण लेने की अपील की है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में कल खेले गए डूरंड कप मुकाबले में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हरा दिया। पहले हाफ में जमशेदपुर एफसी ने 1-0 की बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 2 गोल दागकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में एससी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराकर 3 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने पहले हाफ में बढ़त बनाई। टीम के खिलाड़ी सनम ने गोल कर जमशेदपुर एफसी को 1-0 से आगे कर दिया। हाफ टाइम तक जमशेदपुर एफसी की बढ़त कायम रही। दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने आक्रामक खेल दिखाते हुए शानदार वापसी की। नामते ने लगातार 2 गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की पिछड़ने की स्थिति से 2-1 की बढ़त दिला दी। निर्धारित समय तक एससी दिल्ली की बढ़त बरकरार रही और टीम ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। नामते के 2 गोलों की बदौलत एससी दिल्ली ने डूरंड कप में अहम 3 अंक दर्जित किए। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने दिशम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री द्वारा रामगढ़ के निमरा में उनकी आदमकद प्रतिमा के अनावरण की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छात्र आंदोलन पर सीएम बोले, सरकार युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। प्रभात खबर ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 6 छात्रों ने कहा, ओएमआर शीट में बदले गए उत्तर। हिंदुस्तान के शब्द हैं, झारखंड में कई जिलों में भारी बारिश, ठनका से 4 बच्चों समेत 19 की मौत। दैनिक जागरण लिखता है, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित युवक की घर से खींचकर पीट पीट कर हत्या, 8 गिरफ्तार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी परीक्षा मामले में छात्रों ने की दूसरे राज्यों के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जांच कराने की मांग, मुख्यमंत्री ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा, नेता प्रतिपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई। निर्वाचन आयोग के एसआईआर के तहत राज्य भर में प्रारूप मतदाता और एएसडीडी सूची का प्रकाशन आज, मुख्य निर्वाचन कार्यालय चलाएगा न्यू वोटर हैशटैग अभियान। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण की पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू, स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों की सहायता के लिए जारी किए ट्यूटोरियल वीडियो और हेल्पलाइन नंबर। गिरिडीह में भीषण वज्रपात से 9 लोगों की मौत, 10 घायल, मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। और रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए डुरंड कप मुकाबले में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली की शानदार जीत, जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
9: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
10: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए, अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

दोस्तों, आज फिल्म अभिनेत्री काजोल का जन्मदिन है, तो आकाशवाणी परिवार की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। काजोल एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री है, जिन्हें मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में उन्हें उनकी सहज अदायगी और शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है। उनकी माता तनुजा एक दिग्गज अभिनेत्री है और पिता सोमू मुखर्जी एक फिल्म निर्माता थे। दोस्तों, काजोल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत वर्ष 1992 में फिल्म बेखुदी से की थी। उनकी लोकप्रिय फिल्में हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, बाजीगर, कभी खुशी कभी गम, फना और माय नेम इज खान जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। तो आइए सुनते हैं काजोल पे फिल्माए ये गीत, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। और आज अभिनेत्री काजोल के जन्मदिन पर हम आपको सुनवा रहे हैं काजोल पर फिल्माए गीत। तो दोस्तों, काजोल को फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। काजोल ने अपने बेहतरीन अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2011 में देश के 4th सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। अब आइए सुनते हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम से ये गीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। राशिद अली की आवाज में जाने तू या जाने ना फिल्म से ये गाना, अब्बास टायर वाला के बोल, ए आर रहमान।

आप सुन रहे थे ये गाना जाने तू या जाने ना फिल्म से। वैसे ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब इसके फैंस तो बहुत सारे बने थे, लेकिन इस फिल्म से ज्यादा फैंस बने इसकी एक्ट्रेस यानी जेनेलिया डिसूजा के। आज विविध भारती पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जेनेलिया डिसूजा का बर्थडे। फोर्स फिल्म से आप सुन रहे हैं गाना के और सुचित्रा की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, हैरिस जयराज का संगीत।

अतरंगी फिल्म से, अतरंगी रे फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना हरिचरण शेषाद्री, श्रेया घोषाल, सूर्यांश, स्वागत राठौड़ और सार्थक कल्याणी की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल, एआर रहमान का संगीत। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। अभय जोधपुरकर की आवाज में जीरो फिल्म से गाना इरशाद कामिल के बोल, अजय अतुल का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना मेट्रो इन दिनों फिल्म से। पैपॉन की आवाज में गालिब और संदीप श्रीवास्तव के बोल, प्रीतम का म्यूजिक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: ही गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

काजोल को अभिनय की तालीम तो विरासत में मिली। काजोल की नानी शोभना समर्थ मूक फिल्मों के जमाने से समर्थ अभिनेत्री थीं। बाद के दिनों में उन्होंने कई सशक्त फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। शोभना समर्थ की दोनों बेटियां तनुजा और नूतन अपने अभिनय कौशल में माहिर थीं और उन्होंने अपने अभिनय कौशल से लोगों को मोहित किया। माँ तनुजा और मौसी नूतन से काजोल को अभिनय की बारीकियां खुद ब खुद सीखने को मिल गईं।

काजोल की नानी, उनकी माँ और मौसी तो फिल्मी दुनिया की विशिष्ट अदाकारा तो थी ही, उनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी गजब के कलाकार थे। उनके खानदान में और भी एक्टर्स थे, रानी मुखर्जी, मुनीष बहल, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म बनाने वाले अयान मुखर्जी। परिवार में इतने सारे फिल्मी कलाकारों का जमावड़ा, फिल्मी परिवार के बीच बड़ी चुलबुली और शरारती सी काजोल पढ़ाई में अपना मन लगा रही थी। दोस्तों, काजोल के माता पिता ने पहाड़ों के गोद में बसी जगह पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलवा दिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय का चस्का लग गया। पढ़ाई के दिनों में ही काजोल को साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। वे साहित्य किताबें पढ़ती थीं और बहुत सारी कहानियां पढ़ती थीं। एक बार वे कॉलेज से, पंचगनी से मुंबई आई। वहां राहुल रवेल की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां उन्होंने कैमरे के सामने कुछ परफॉर्म किया। बस वहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 1992 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेखुदी में उन्हें एक बड़ा ही सुंदर किरदार मिल गया निभाने के लिए।

0: करम।
1: और उनके साथ थे नवोदित अभिनेता कमल सदाना और उनकी माँ तनुजा भी इस फिल्म में साथ थीं। काजोल ने इस फिल्म में राधिका का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास साबित नहीं हुई, लेकिन काजोल के अभिनय की बहुत बहुत सराहना हुई। और उसके बाद अब्बास मस्तान की क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजीगर में उन्हें रोल मिला, जिसमें उनके साथी कलाकार थे शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी।

अभिनय की बारीकियों के कारण काजल को बहुत जल्द बेहतरीन रोल मिलने लगे और काजोल ने अभिनय की चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया और खुद को साबित किया। काजोल ने यूं तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम करके अपने अभिनय का जलवा दिखाया, लेकिन शाहरुख खान के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी।

सन 1995 में शाहरुख खान के साथ एक बेमिसाल शानदार और जबरदस्त हिट फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में इतिहास का एक खास पन्ना लिख दिया। एक सिनेमा घर में 1000 हफ्ते से भी ज्यादा चलने का रिकॉर्ड बनाया है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म ने।

मुंबई के एक सिनेमा घर में आप अभी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म देख सकते हैं। सन 1998 में शाहरुख खान के साथ काजोल की एक और हिट फिल्म आई कुछ कुछ होता है।

माय नेम इज खान। दोस्तों काजोल ने सिर्फ बेस्ट हीरोइन का ही रोल नहीं किया बल्कि नेगेटिव रोल में भी काजोल बेस्ट एक्ट्रेस कहलाई। उन्होंने फिल्म गुप्त में रोल किया नेगेटिव लेकिन रिजल्ट रहा पॉजिटिव। इस तरह काजोल ने साबित कर दिया कि काजोल हीरोइन का रोल करें या खलनायिका का रोल करें रहेंगी वे उत्कृष्ट अदाकारा।

0: हर लड़की के जीवन में एक रोज एक राजकुमार आता है। वो राजकुमार उसके सपनों में नए रंग भरता है। काजोल के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के हीरो बने अजय देवगन।
1: देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए।
0: अजय देवगन के साथ काजोल ने कुछ बेमिसाल फिल्में दी। ये फिल्म है इश्क।

दिल क्या करे। इस फिल्म में उनके साथ थे अजय देवगन। 1994 में आई फिल्म हलचल में काजोल ने शर्मिली सिन्हा की भूमिका निभाई थी। सन 1998 में फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था, जिसमें काजोल ने संजना पटेल का किरदार अदा किया था।

राजू चाचा, गुंडा राज और यू मी और हम अजय देवगन के साथ ये हिट फिल्में काजोल ने दी। फिल्म यू मी और हम में काजोल अल्जाइमर्स नाम की बीमारी से ग्रसित होती है। अजय देवगन के साथ ये एक मार्मिक फिल्म थी।

सन 2006 में काजोल की फिल्म आमिर खान के साथ आई थी। फिल्म थी फना, जिसमें उन्होंने एक नेत्रहीन कश्मीरी लड़की की भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में ऋषि कपूर पर्दे पर नजर आए थे।

आमिर खान के साथ कुछ फिल्में और की थी काजोल ने, जैसे फिल्म इश्क। हालांकि फिल्म इश्क में आमिर खान के साथ थी जूही चावला। काजोल की बेहद कमर्शियल फिल्म आई थी हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म में काजोल के साथ पर्दे पर नजर आए थे अनिल कपूर।

काजोल बनी थी मेघा वर्मा। सन 2000 में आई फिल्म राजू चाचा। सन 2001 में फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी। मुझ में

0: कुछ कुछ मीठी।
1: दोस्तों, काजोल को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1996 में काजोल को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

सन 1999 में फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। सन 2002 में कभी खुशी कभी गम फिल्म के लिए मिला काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर। अभिनेता थे शाहरुख खान। सन 2007 में आमिर खान के साथ काजोल की फिल्म आई फना, जिसके लिए मिला उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 2011 में फिल्म माय नेम इज़ खान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में अभिनेता थे शाहरुख खान।

काजोल के फिल्मी करियर की एक बड़ी बेहतरीन फिल्म आई थी तानाजी, जिसमें अजय देवगन बने थे तानाजी मालूसरे, काजोल बनी थी सावित्री बाई और सैफ अली बने थे उदय भानु सिंह राठौड़। बहुत सारे फिल्मी समीक्षकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी।

सैफ अली खान के साथ काजोल की एक और फिल्म आई थी ये दिल लगी, जिसमें साथ में अक्षय कुमार भी थे। एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म आई थी काजोल के फिल्मी करियर की सन 1998 में दुश्मन, जो बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा हुई थी।

काजोल की अभिनय यात्रा आज भी जारी है। सन 2015 में उनकी एक कॉमेडी फिल्म आई थी दिलवाले, फिल्म खूब चली थी।

2021 में आई फिल्म त्रिभंगा, इसके बाद सन 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी। काजोल ने कुछ वेब सीरीज भी की, जैसे कि द ट्रायल। काजोल ने अपनी फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए। वे कहीं चुलबुली लड़की के रूप में पर्दे पर नजर आईं, कहीं गंभीर स्त्री, तो कहीं बेहद रूमानी प्रेमिका या पत्नी।

अभिनय के अलावा काजोल एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और विधवाओं और बच्चों के साथ अपने काम के लिए वे काफी चर्चित हैं। काजोल ने सन 2008 में कुछ रियलिटी शोज भी किए जिसमें एक टैलेंट जज के रूप में भी उन्होंने काम किया।

0: काजोल का फिल्मी करियर काफी विराट है। उनके पूरे करियर को समेटकर सारी फिल्मों का जिक्र करना एक कार्यक्रम में संभव नहीं है। आज बस इतना ही।
1: जाती हूं मैं,
2: जल्दी है क्या?
1: धड़के जिया,
2: वो क्यों भला?
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी

0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

अंजलि का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सड़क कभी भी सीधी नहीं होती है, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहें, सुखद मोड़ अवश्य आएगा।

के हजारीबाग केंद्र से। दोस्तों, हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। नवजात शिशु के लिए स्तनपान यानी माँ का दूध अति आवश्यक है, क्योंकि यह शिशु को पूर्ण पोषण, मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। इस विषय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जीवन के पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए, बाहर का कुछ भी नहीं, पानी, शहद, कुछ भी नहीं। स्तनपान से नवजात शिशु को बहुत लाभ होता है। माँ के दूध में शिशु के विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं। यह शिशु की उम्र के साथ बदलता रहता है। पहले गाढ़े पीले दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो शिशु को संक्रमण, दस्त और निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों से बचाती है। स्तनपान शिशु के विकसित हो रहे पेट और आंतों के लिए भी बेहद कोमल और आसानी से पचने योग्य होता है। इसमें मौजूद तत्व शिशु के मस्तिष्क और आंखों के विकास में मदद करती है। दोस्तों, माँ के दूध की हर बूंद उसके सुरक्षा की ढाल है। माँ का दूध केवल भोजन नहीं, बल्कि शिशु के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। यह शिशु को आवश्यक पोषण देता है और सामान्य संक्रमणों से बचाने में मदद करता है। और इस क्षेत्र में आंगनबाड़ी की दीदी भी बहनों को काफी जागरूक करती हैं कि वो अपने बच्चों को 6 महीने तक केवल स्तनपान ही करवाए, उसके बाद ही कोई किसी भी तरह का ऊपरी भोजन या दूध या कुछ भी देना है, लेकिन वो 6 महीना के बाद ही। तो इसलिए स्तनपान बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। इसके लिए सभी को जागरूक होना बहुत जरूरी है।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।

दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा बढ़िया रहे, हम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। तो इसके लिए हम लोगों को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। हर चीज साफ होना बहुत जरूरी है और यह एक अभियान नहीं है बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। स्वस्थ समाज और बेहतर भविष्य के लिए हर नागरिक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि जब तक स्वच्छता को हम अपनी आदत और कर्तव्य नहीं बनाएंगे तब तक पूरी तरह से स्वच्छ वातावरण के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम अपनी दिनचर्या में माने अपने शरीर की सफाई के साथ साथ शुद्ध पानी पीना चाहिए। जैसे भी बरसात के मौसम में है कि कभी कभी पानी का जलस्तर बढ़ जाता है तो पानी गंदा भी हो जाता है, तो ऐसे में पानी को उबालकर छानकर उसके बाद ही उसे ठंडा करके पिए। और भोजन भी हमेशा सादा भोजन करें और ताजा करें। और जहां तक हो कि बाहर की खुली चीजें कभी ना खाएं और अपने आसपास की भी सफाई पर पूरा ध्यान रखें। और इसके लिए सभी को छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। शरीर की सफाई, घर की शुद्ध पेयजल, शुद्ध भोजन तथा आसपास की सफाई भी जरूरी है। कचरा प्रबंधन तो सबसे जरूरी है। हमेशा कचरे को कूड़ेदान में ही डालें और गीले कचरे को गीले डब्बे में और सूखे कचरे को सूखे में, यानी अलग अलग रखें। और सार्वजनिक स्थानों की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थलों को गंदा नहीं करें और दूसरों को भी इसके लिए विनम्रता से प्रेरित करें। अपनी मानसिकता को भी बदलनी होगी। केवल सफाई कर्मियों पर निर्भर रहने के बजाय खुद आगे आकर समूह बनाकर अपने आसपास की सफाई करने में मदद करें।

घर में बच्चों को भी शुरू से स्वच्छता के महत्व के बारे में बताएं ताकि वह उसे समझे और एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। क्योंकि बच्चे अगर शुरू से जानेंगे कि सफाई के महत्व को वो समझेंगे तो आगे चलकर वो कभी गलती नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। तो इसलिए दोस्तों स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब जानते हैं मौसम का हाल। तो आज सुबह में तो मौसम साफ है और दोपहर में बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। कल यानी 6 अगस्त के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और आज सूर्यास्त का समय है 6:37 और कल सूर्योदय का समय है 5:24। आर्द्रता की बात करें तो अधिकतम आर्द्रता है 94% और न्यूनतम है 72%।

दोस्तों, आज 5 अगस्त है, तो अब जानकारी लेते हैं ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो आज ही के दिन 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। आज ही के दिन 2020 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किया गया और आधारशिला रखी गई। 1991 में आज ही के दिन न्यायमूर्ति लीला सेठ उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। 1960 में अफ्रीकी देश बुर्किना फासो को फ्रांस से पूर्ण स्वतंत्रता मिली। आज ही के दिन 1914 में अमेरिका के क्लीवलैंड शहर में दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट सिस्टम लगाया गया। और 5 अगस्त को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1914 में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाने की याद में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, जानकारी की बातें आगे भी होंगी, अभी साथ मिलकर सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। आज 5 अगस्त है, तो जानते हैं कि आज किन लोगों का जन्म हुआ। 1852 में आज ही के दिन आचार्य प्यारे मोहन का जन्म हुआ था, जो उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रवादी थे। 1901 में आज ही के दिन द्वारिका प्रसाद मिश्रा का जन्म हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार तथा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 1907 में आज ही के दिन बी.जी. रेड्डी का जन्म हुआ, जो मद्रास विधानसभा के सदस्य

दोस्तों, अब नज़र डालते हैं पेपर की सुर्खियों पर। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन होगा करजन ग्राउंड में। बरही चौक अब दिशोम गुरु चौक के नाम से जाना जाएगा। शिबू सोरेन के प्रथम पुण्यतिथि पर डीसी एसपी समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने किया नमन। जिले के 1968 मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन आज। चौपारण की पुरातात्विक धरोहर पर अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की नजर। 2 दिनों तक दहर, सोहरा, हथिंदर और बहोरनपुर के पुरातात्विक स्थलों का किया अध्ययन। प्राचीन अवशेषों के संरक्षण पर शोधकर्ताओं ने किया विशेष जोर। NH-522 किनारे 300 से अधिक सूखे पेड़ हटाने की मांग। मतदाता सूची के नाम के साथ हर विवरण की जांच जरूरी है। दोस्तों, टाटीझरिया प्रखंड के धर्मपुर पंचायत अंतर्गत चिरवा देवी मंडप के पास किसान राजेश यादव के फूलगोभी या टमाटर की बारी में 3 अगस्त की रात तक जंगली हाथी से भारी नुकसान पहुंचाया। हाथी का आतंक बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे गांव के लोग काफी भयभीत हैं। शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से 5 अगस्त से लगातार 10 दिनों तक स्वैच्छिक रक्तदान अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत समाहरणालय परिसर में प्रतिदिन रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध कराना है, ताकि दुर्घटना, आपातकालीन उपचार, सर्जरी, थैलेसीमिया, कैंसर समेत गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय पर सुरक्षित रक्त मिल सके। विश्व स्तनपान को लेकर जागरूकता भी बढ़ाया जा रहा है। चुरचू प्रखंड मुख्यालय में बाल विकास परियोजना की ओर से विश्व स्तनपान कार्यक्रमों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम किया गया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भक्ति पद सुना। संगीत दिया था हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: बहादुर शाह जफर का कलाम अभी आपने सुना। गायिका थी रूना लैला और संगीत पंडित गुलाम कादिर का था।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं यूसुफ आजाद कव्वाल और उनकी हमनवा की गाई ये कव्वाली। इसे तविश महमूद ने लिखा और धुन बनाई निसार ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं किशोरी अमोनकर की आवाज में उनकी गाई ये ठुमरी भैरवी।

0: किशोरी अमोनकर की आवाज में अभी आपने उनकी गाई ये ठुमरी भैरवी सुनी।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
0: शोभा गुर्टू की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये कजरी।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
3: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध

0: अभी आप सुन रहे थे शंकर, शंभू और खव्वाल की आवाजों में हजरत अमीर खुसरो का ये कलाम। ये एक सूफी कव्वाली थी जो हजरत अमीर खुसरो ने अपने मुर्शीद यानी अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखी, और इस कव्वाली में भी अपने पीर, अपने संत को पाने की खुशी और उनके प्रेम के रंग का वर्णन कर रहे थे। संगीत दिया था मुरली मनोहर स्वरूप ने।
1: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
2: क्यों?
1: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी।

0: बॉक्स नंबर 19,750 मुंबई 400091 मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091 आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में रामानंद शर्मा का लिखा ये भक्ति पद। इसे गाया है शर्मा बंधु ने।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही

0: सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। Honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
0: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अभिनेत्री काजोल और जेनेलिया डिसूजा का जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से हम इन दोनों अभिनेत्रियों को देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने वो गीत चुने हैं जो काजोल और अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की फिल्मों के हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही चुनिंदा गीत।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
0: लता मंगेशकर और कुमार सानू फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

अनु मलिक की संगीत निर्देशन में अभी आपने देव कोहली का लिखा ये गीत सुना। आवाजें कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की, फिल्म का नाम था बाजीगर।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये गीत है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। इसे समीर ने लिखा है और तर्ज जतिन ललित की है।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम। बोल समीर के हैं और धुन जतिन ललित की है।

अभी आपने सुना फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये गीत। अगला गीत जतिन ललित की संगीत निर्देशन में प्रसून जोशी का लिखा हुआ, युगल स्वर सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, फिल्म का नाम है फना।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2:00। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है।
3: जी हाँ, अब आप सुनने वाले हैं आशा भोसले और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है प्यार तू होना ही था। गीतकार समीर हैं और संगीतकार जतिन ललित हैं।
4: अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

आशा भोसले और उदित नारायण को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जाने तू या जाने ना, आवाज रूना की, संगीत दिया है ए आर रहमान ने और गीत लिखा है अब्बास ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। फिल्म का नाम है मस्ती, आवाजी शान और स्नेहा पंत की। इसे समीर ने लिखा है और धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: मस्ती फिल्म का दो गाना अभी आपने शान और स्नेहा पंत की आवाजों में सुना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज भीख लेते हैं सावन में। कैसे हैं आप लोग बताइए पहले। अरे भाई क्या बात है, सब सावन का आनंद ले रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम उसी सावन के नाम हम करते हैं जिसका हम आनंद ले रहे हैं, या हमारे कुछ श्रोता लोग जिनके शहर में बरसात नहीं है वो कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई सावन के इस महीने में हमारे श्रोता कैसे हैं, जरा बताएंगे। आप सभी जानते हैं ना कि सावन आते ही जैसे हवा का मिजाज बदल जाता है, यानी मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, पेड़ों की हरियाली, रिमझिम बारिश की बूंदें और ठंडी ठंडी हवाएं मन को सुकून से भर देती हैं। और हम सभी कहते हैं कि भाई ये जो मौसम है खास तौर से सिर्फ प्रकृति को ही नहीं हमारे दिलों को भी हरा भरा कर देता है ना। आप भी महसूस करते हैं ना ये सब। तो चलिए आज सुरीला सफर में हम सावन की बूंदों का एहसास करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बताइएगा इस सुरीला सफर में आज हमारे साथ चलने के लिए आप लोग तैयार हैं भी कि नहीं।

ही देखिए, सावन का महीना है, बरसात का मौसम है, हो सकता है कहीं कहीं हमें गर्मी का ऐसा महसूस हो, गर्मी महसूस हो, तो हमें परेशान नहीं होना है। सब मिलकर इस हरियाली का, इस सावन का, इस उल्लास का, इस प्रेम का, इस मिलन का, इस प्रकृति का आनंद लेते हैं, ठीक है। तो आज की इबारत आप सभी ने पढ़ ली है, जो फेसबुक श्रोता हैं हमारे, फेसबुक से जुड़े हैं उन्होंने पढ़ ली है, लेकिन जो फेसबुक फ्रेंड नहीं है हमारे उनको हम बता दें, आज हमने आपके लिए इबारत रची है ये लिखकर कि आदरणीय श्रोताओं, संगीत प्रेमियों और सम्मानित हमारे नए श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। भारत की ऋतुओं में यदि किसी ऋतु का सबसे अधिक इंतजार किया जाता है तो वो है सावन। हाँ, और ये केवल वर्षा का मौसम नहीं बल्कि हरियाली का, उल्लास का, प्रेम का, मिलन का, विरह का और प्रकृति की आराधना का, शिव की आराधना का उत्सव माना जाता है। जब धरती पर वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो मानो प्रकृति स्वयं गीत गाने लगती है। झूले पड़ते हैं, पपीहा पुकारता है, मोर नाच उठते हैं और मन, हमारा मन गीत संगीत से भर जाता है। बस इन्हीं भावों को हमारे फिल्मी संगीत ने अनगिनत मधुर गीतों में अमर कर दिया है। तो आज का ये संगीतमय कार्यक्रम उन्हीं सदाबहार गीतों को समर्पित है जिन्होंने सावन की हर अनुभूति को सुरों में पिरोया है। ये थी हमारी आज की इबारत और इस इबारत को पढ़ने के बाद हमारे श्रोताओं ने इतनी खूबसूरत इबारत अपने अपने शब्दों में हमारे सामने रखी है जिसे हम पढ़ेंगे इस गीत के बाद। महेंद्र कपूर और साथी, फिल्म का नाम बंधन, इंदिवर की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन। तो सावन में भीगा जाए, सुरीला सफर शुरू हो गया है। सावधान।

जी हाँ, सावन आ गया है और ये गीत तो महेंद्र कपूर और साथियों ने फिल्म बंधन के लिए गाया था। इंदिवर के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी की धुन। भाई सावन आ गया है और हम इससे बेखबर कैसे हो सकते हैं? देखिए ना, हमारे श्रोता भी कितने सावन की बौछारों से भीग गए हैं। कुछ श्रोता तो लिख रहे हैं कि हालांकि उनके शहर में अभी बरसात नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रमों के जरिए महसूस करेंगे कि सावन की कुछ फुहारें उनके भीतर महसूस हो। तो एक श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश में फिर एक बार सावन के भीगे मौसम की बात है तो गानों से जरूर तरबतर हो जाएंगे। सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि धरती और आकाश के मिलन का महाउत्सव, ये चातक की प्रतीक्षा, कृषक की आशा और विरहियों की व्याकुलता का सघन मेघ है। जब ग्रीष्म की तपन से झुलसी वसुधा पर स्वाति की बूंदे गिरती है तब मिट्टी से सौंधी महक उठती है। ये महक प्रकृति के नव श्रृंगार की पहली घोषणा है, इसलिए ये हृदय का राग है, मिलन का बंधन है, मानवीय भावनाओं के चरमोत्कर्ष का काल है और सावन एक शाश्वत अनुभूति है। बहुत सुंदर भाव आपने अपनी इबारत में भेजा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन के इस महीने में सुरीले सफर की खूबसूरत इबारत का, सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि हमारे मन का सबसे कोमल एहसास है। सावन की फुहारों में प्रेम का संदेश है, झूलों की पींगों में बचपन की हंसी है, मोर के नृत्य में प्रकृति का उल्लास है और पपीहे की पुकार में विरह की मधुर टीस भी है। फिल्मी गीतों में भी सावन कभी मिलन का बहाना बनकर आया तो कभी बिछड़ने वालों की आंखों में बरसता रहा। सुनेंगे इस संगीत में सावन में सुरीले सफर में उन सदाबहार गीतों को जिन्होंने बरसात की हर बूंद को सुरों का मोती बना दिया। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज इबारत आती थी मगर ऐसी न थी। चेतक पक्षी को जैसे सावन की एक बूंद का इंतजार रहता है, हमें भी सुरीला सफर की बागडोर कौन संभाल रहा है उस पोस्ट का इंतजार रहता है। क्या बात है, सावन आए और विविध भारती पर इससे जुड़े गीत न बजे ऐसा संभव ही नहीं। सावन केवल एक ऋतु नहीं, आशा, विश्वास, मिलन, विरह और प्रतीक्षा का प्रतीक है। हमारे लिए सावन आए न आए, जिया जब झूमे सावन है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी आवाज मेरी आवाज सुरीला सफर को और सुरीला बना देती है। क्या बात है, सावन सिर्फ बारिश की बूंद नहीं लाता बल्कि मन में एक नई ताजगी भर देता है। जब सूखी धरती पर पहली बूंद पड़ती है तो सौंधी महक से हर कोना महक उठता है। पेड़ पर पड़े झूले, बादलों की गड़गड़ाहट और हरी भरी पत्तियां सब मिलकर जीवन में नए रंग भर देते हैं। आपने भी कुछ गीत चुने हैं जिनका जिक्र आपने किया है, तो देखना यह है कि आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या आपके गीत से मिलते हैं वो गीत। तो जब सुरीला सफर पर निकल ही चुके हैं, सावन आ ही गया है, तो चलिए फिर क्या करते हैं, झूला झूलते हैं। बताइए आपके आसपास कहीं झूला टंगा है किसी पेड़ की टहनी पर या घर में? बताइएगा क्या आपने झूला झूला इन दिनों? फटाफट लिखिएगा अपना एहसास, कितनी ऊंची पींगे बढ़ाई आपने ये भी बताइएगा।

0: लता मंगेशकर, आशा भोंसले और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था बहू बेगम, इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और धुन रोशन की थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि धमाकेदार शुरुआत से लगता है आज सावन में ही भादो आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, यानी आप भी आनंदित हो रहे हैं और सावन में भीग गए हैं, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीत बहुत ही प्यारे होने वाले हैं क्योंकि सावन जो आ गया है विविध भारती के आंगन में। भाई, आपके आंगन में भी तो सावन आ गया है और सब श्रोता मिलकर मंदाकिनी जी के साथ मस्ती से आनंद लेने वाले हैं। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बंधन फिल्म के महेंद्र कपूर जी की ये जो आवाज थी शानदार गाने से सावन की शुरुआत सुरीला सफर कार्यक्रम में हुई, इसके लिए बहुत बहुत आभार। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली बार ये गीत सुनने को मिला है, सुरीला सफर में बज रहा है या बहुत लंबे से समय के बाद इस गीत को बजाया गया है, धन्यवाद देती हैं आप। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर की सुरीली यात्रा अत्यंत सुखदायी लग रही है क्योंकि आज की विशेष कड़ी आपके द्वारा सावन में वर्षा की ठंडी ठंडी फुहार जैसे कर्णप्रिय गीतों से सजाई गई है। भई, जब सावन का मौका है और सुरीला सफर है, हम और आप साथ हैं, मिलकर इस यात्रा पर निकले हैं, तो यकीनन जो सफर है वो सुरीला होना लाजिमी है ना।
1: जो है वो बना रहे तेज तरार हमारे जो युवक युवतियां हैं उनको यह अवसर प्रदान किया है ताकि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत कांग्रेस पार्टी का जो संदेश है उन लोगों तक कैसे पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है उनकी विफलताओं को कैसे उजागर भी कर।
2: सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावां से प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के 3 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। गिरफ्तार नक्सलियों में 15 लाख का इनामी मदन मोहन, मदन महतो, 5 लाख का रवि सरदार और 2 लाख की इनामी महिला नक्सली मीना शामिल है। इन इनामी माओवादियों के पास से 3 AK-47 राइफलें,

0: बरामद की गई है। जमशेदपुर पुलिस ने संकोसाई चेन छिनताई कांड का खुलासा करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटी गई सोने की चेन, 1 देसी पिस्तौल, कारतूस और 40,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि आरोपी NH-33 पर बड़ी लूट की योजना बना रहे थे।
1: उनके पास से 1 देसी पिस्तौल, 2 इंद्रावली, सोने की चेन, 1 सोने का टुकड़ा, 40,000 रुपए डोंगल और 3 एंड्रॉइड और 1 छोटा मोबाइल फोन।
0: गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव वन्ना दादेल ने रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 की तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात, पार्किंग और पेयजल जैसी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तथा उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,31,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने तत्काल चेतावनी जारी करते हुए चतरा, गढ़वा, लातेहार, पलामू, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में अगले 3 घंटों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में SIR अभियान के तहत प्रारूप मतदाता और ASDD सूची का हुआ प्रकाशन। नाम सुधारने और नए नाम जोड़ने के लिए दावा प्रतिदावा की प्रक्रिया शुरू। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से। भाजपा ने आज रांची में बुलाई पार्टी विधायक दल की बैठक। सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बड़ा आश्वासन। नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया बहुत जल्द होगी शुरू। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। सरायकेला से 22 लाख के 3 इनामी माओवादी गिरफ्तार। 3 AK-47 राइफलें बरामद। और रांची में आदिवासी महोत्सव की तैयारियां तेज। गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। सुरक्षा और सुव्यवस्थित आयोजन के दिए निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म का नाम था आशीर्वाद। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कहा जाता है कि सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो ये दर्शाता है कि हर अच्छे काम की शुरुआत में मुश्किलें और नकारात्मकता आती ही हैं। भगवान शिव द्वारा इस विष को अपने गले में रोकना ये सिखाता है कि समाज की भलाई के लिए कभी कभी कड़वी बातें भी सहनी पड़ती हैं। जो इंसान अपमान और आलोचना को झेल कर भी शांत रहता है, वही असल में महान बनता है। बहुत सुंदर।

0: हमारे श्रोता ने हमारे एक सवाल का जवाब दिया है। हमने पूछा कि क्या आपके शहर में बरसा है पानी सावन बरसा के नहीं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ गुजरात में अभी सावन नहीं आया, उत्तर पूर्व भारत में गए सोमवार के आसपास सावन शुरू हो गया है, पर पश्चिम में सावन महीना देर से आता है। इन्होंने लिखा है, अरे आपने हमारा नाम बदल दिया, मीनाक्षी जी। बड़ा सुंदर नाम रख दिया आपने हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन हमारे तीन तहसील में बारिश नहीं हुई है, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर और जामनगर में बारिश नहीं हुई। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल और आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं बरस रहा है, बहुत चिंता हो रही है। बाकी गर्मी तो कम है, मौसम बहुत सुहावना है, चारों ओर हरियाली, तालाब, जंगल से घिरा हुआ शहर है हमारा। अगर अच्छा पानी गिरता है तो शिमला मसूरी का मजा आता है। क्या बात है, हम बिल्कुल गुजारिश करते हैं भगवान से, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के शहर में पानी बरसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले महीने से मैं बारिश की गीत सुनकर थक गई थी, पर हमारे शहर में बारिश नहीं हो रही ही, पर पिछले सोमवार से हमारे शहर में रिमझिम सावन बरस रहा है। आज भी सुबह से एकदम बिल्कुल फुहार हो रही है और बहुत बढ़िया हरियाला मौसम हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है ना आपको। आप लिखती हैं कि भाई विविध भारती स्टूडियो में भी सावन आ गया है। बिल्कुल, यहां तो सावन आ गया है स्टूडियो में, और सुरीला सफर में भी तो हम निकल पड़े हैं ना, जहां सावन की बौछारें हमें भीगो रही हैं। भीगे हैं ना आप, बताइए मुझे भीगे हैं कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि कहा जाता है कि सावन मास में ही अच्छाई, तो हमने आपका विचार पढ़ दिया था, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं सलील चौधरी का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है 2 बीघा जमीन। अच्छा आप बताइएगा, हमारे श्रोता ने कहा आपके दो सवालों का क्या हुआ। नहीं नहीं, आज हम खूब सारी बातें करने वाले हैं, खूब सारे सवाल आपसे करने वाले हैं, सीधे साधे प्यारे से, जिनका जवाब आप इस सफर में चलते चलाते दे देंगे, है ना। बताइएगा आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है, बारिश, ठंडी हवा, चाय या किसी अपने का साथ।
1: जग जग जग जग जगन जगन गिन गिन रे।
0: हमारे बहुत सारे श्रोता खेत खलियान में बैठकर ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, बताइएगा कैसा लग रहा है आपको वहाँ बैठकर।

हमारे श्रोता लगातार हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम आपसे थोड़े से नाराज हैं, आप आजकल बहुत दिनों बाद आती हैं। वैसे तो हमने सोचा आज हम सुरीला सफर नहीं सुनेंगे क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो हम नहीं कर पा रहे, उसे करना बहुत जरूरी था, पर अब लगता है कि आपको हम सुनेंगे और जब सावन की बातें हैं तो हम क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर दिल ने धीरे से कहा, हो जाओ शामिल, देखो न सबने कितने प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं, तुम भी लगी हो इन सब में। बस फिर क्या था, हम लिखने लगे, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप इस तरह से इतना काम होते हुए भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और हमारे साथ इस सुरीले सफर पर निकल पड़ते हैं। एक श्रोता ने कहा है कि सावन हर साल आता है मगर हर बार कुछ नया छोड़ जाता है, कभी भीगी मिट्टी की खुशबू में कोई पुरानी याद, कभी झूले की पींग में बचपन, कभी पपीहे की पुकार में किसी का इंतजार, पेड़ों पर उतरती हरियाली जैसे धरती ने हरे रंग की चूड़ियां पहन ली हो और बादल आसमान की पेशानी पर ठहरी कोई खामोश दुआ बन गया हो। शायद इसलिए हमारे फिल्मी गीतों ने सावन को सिर्फ देखा नहीं, उसे जिया है। हर धुन में कहीं रिमझिम की बूंद है, कहीं मोर के पंखों की थिरकन, कहीं विरह की भीगी सांस तो कहीं मिलन की मुस्कान। सावन दरअसल मौसम नहीं, यादों का भीगा हुआ पन्ना है जिसे जिंदगी हर बरस फिर से खोलकर पढ़ती है। बहुत सुंदर, बहुत गहरी इबारत आपने लिखी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारत ऋतुओं की विविधता का देश है लेकिन जो आत्मीयता, रसमयता और भावुकता सावन के महीने में छिपी है वो अद्वितीय है। सावन केवल वक्त का एक महीना नहीं है, ये भारतीय जनमानस के लिए प्रेम, विरह, हरियाली और आस्था का एक जीवंत उत्सव है। सावन आते ही प्रकृति अपना सबसे सुंदर रूप धारण कर लेती है। सावन रस का महीना है, चाहे वो पानी का रस हो, संगीत का रस हो, प्रेम का रस हो या फिर भक्ति का रस हो। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना उल्लास, उमंग, खुशी और प्रकृति को भी खुशनुमा बना देता है। मोर नाचने लगते हैं, कोयल की कूक गूंजने लगती है, पानी की बूंदें धरी पर पड़ती है, सारा वातावरण खुशनुमा हो जाता है और हरियाला सावन ढोल बजाता आता है। सावन का महीना और इस तरह से हम सावन के महीने को जीते हैं। तो हमारे श्रोता लगातार लिख रहे हैं लेकिन सवालों का जवाब भेज रहे हैं कि नहीं। भाई आज तो बिल्कुल सीधे साधे सवाल आपसे किए जा रहे हैं ताकि सुरीला सफर में कहीं रुक के हमें दिमाग पर ज्यादा जोर न देना पड़े कि आज जो हमने पूछा उसका जवाब क्या हो सकता है। तो हमने आपसे सीधा साधा सवाल किया था कि आपके शहर में सावन बरसा या नहीं, आपने इसका जवाब दिया है। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि आपके आस पड़ोस में, आपके घर खेत खलिहान में या आपके आसपास झूले लगे कि नहीं, आपने झूला झूला कि नहीं, इसका जवाब शायद अभी तक नहीं मिला है। वहीं अब हम इस सुरीला सफर में आपसे जानना चाह रहे थे कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। मतलब सावन बरसता है तो बारिश का मजा लेते हैं, ठंडी हवाओं का या अदरक की चाय का, या किसी अपने के साथ उस सावन का मजा लिया जाता है, या कई लोग चाय की टपरी की ओर भी चले जाते हैं जहां हमें कुल्हड़ की चाय मिलती है। याद है आपको वो समय जब आप चाय की टपरी पर जाकर कुल्हड़ की चाय पिया करते थे? याद करिए उन दिनों को और लिख भेजिए कम से कम शब्दों में ये अपनी बात जो आपने अपनी जिंदगी में महसूस की है। ये आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है कौन है अपना। बीडी मिश्रा का लिखा गीत है और एस एन त्रिपाठी का संगीत है। बहुत कम बजता है ये गीत।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन मास का आगमन हर दिल में एक नई उमंग जगाता है, इसलिए सभी को उसका बेसब्री से इंतजार रहता है। स्वयं भगवान शिव को भी ये महीना अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि इस समय प्रकृति का कण कण उनकी कृपा से जीवंत हो उठता है। इस पावन मास में बेटियां अपने मायके लौटती हैं, घर आंगन में झूले सजते हैं, सावन के मेले लगते हैं और चारों ओर मखमली हरियाली छा जाती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने स्वयं को खुशियों के हरे रंग से सराबोर कर लिया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय लोक जीवन में सावन का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। सावन केवल बाहरी वातावरण को ही शीतल नहीं करता, बल्कि इंसान के भीतर छिपी संवेदनाओं को भी जगा देता है। कवियों और साहित्यकारों ने सावन पर अनगिनत रचनाएं लिखी। फिल्मी गीतों से लेकर शास्त्रीय संगीत के राग मेघ मल्हार तक सावन हर कलाकार की प्रेरणा रहा है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपके द्वारा साझा किए गए शब्दों में सावन की भावना जीवंत हो उठी है। सचमुच ये बहुत अच्छा अनुभव होगा, ऐसा हम समझते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना आ गया, जीना नहीं आता था लेकिन सावन का महीना आया। बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने किया है। और श्रोता लिखते हैं कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। आपने पूछा था कि आप सावन को किस तरह से बिता रहे हैं, उसका जवाब दिया है इन्होंने कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। आपने लिखा है कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। मेरे शहर में सावन की झड़ी लगी हुई है और मौसम काफी रूमानी हो गया है, क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पुणे शहर में आषाढ़ की घनघोर बरसात के साथ अब सावन वाली धूप बारिश की आंख मिचोली दिखाई दे रही है। हरी भरी प्रसन्न सृष्टि के साथ हमारा तन मन भी प्रफुल्लित हो गया है, बहुत सुंदर। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अब तो बालपन वाले झूले कहाँ मिलते हैं मंदाकिनी जी, जो पेड़ों पर लगे रहते थे अब तो पार्क में झूले होते हैं। अच्छा आज भी जब आप गांवों में जाते हैं ना तो वहां पर आपको पेड़ों पर झूले टंगे हुए मिलेंगे, है ना। गांवों में ढाणियों में जाकर देखिए, वहां खेतों में खलिहानों में पेड़ों के आसपास झूले लगते हैं और छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियां घूंघट अपने में वो अपनी पूरे पारंपरिक पोशाक में होती हैं मतलब, और झूला झूलती भी आपको मिल सकती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए आज का सुरीला सफर तो आपने सावन के नाम कर दिया है, सुन रहे हैं हम भी आपके साथ हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना भारतीय जनमानस के प्राणों में बसता है। तपती गर्मी से व्याकुल धरती जब वर्षा की पहली फुहार से तृप्त होती है तो चारों ओर मिट्टी की सौंधी महक फैल जाती है। ये समय केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं बल्कि प्रकृति के पुनर्जन्म का उत्सव है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ मखमली हरी चादर बिछ जाती है। बागों में सखियों के खिलखिलाते चेहरों के साथ पेड़ों पर झूले सजते हैं और आकाश में काले बादलों को देख पपीहे कितान और मोरों का नृत्य तेज हो जाता है। सावन का हर दिन लोकगीतों, त्योहारों और महादेव की भक्ति के रंग में डूबा रहता है, जो मानवीय संवेदनाओं, विरह और मिलन के भावों को जीवन

बंद कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये सुरीला सफर आपके साथ हम चल रहे हैं और सावन के गीतों का आनंद लेंगे। सावन का महीना ऐसा महीना होता है जहां देखो हरियाली हरियाली होती है। इस महीने में अपने आप ही मन खुश रहता है और उस सफर पर हम और हमारी कैप्टन मंदाकिनी जी हमारे साथ होंगी। नहीं भाई, हम सब मिलकर, हम सभी मित्रगण जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे दोस्त, सब मिलकर इस सुरीला सफर का आनंद आज उठा रहे हैं और आप इस सुरीला सफर में हमारे साथ हैं, ये बहुत खुशी की बात है।

जी, तो जब बात चल रही है सावन की, तो जब बादल खुलकर बरसते हैं तो कैसा लगता है? तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आनंद की वर्षा कर रही है ना? और कभी कभी सावन की इस भीड़ में मन अकेला भी तो हो जाता है, पर हम तो सुरीला सफर के इस मौके पर निकल पड़े हैं। हमारे अंदर कहीं अकेलापन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अपने अनकहे दर्द को कहना चाहते हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि सुरीला सफर की इस यात्रा में हमारे साथ आ जाइए और अपनी तन्हाई को दूर करिए इस गीत के साथ।

बरखा ने प्यार बरसाया, झूमता सावन देखो आया। बरखा

उषा खन्ना का संगीत था और गौहर कानपुरी की रचना, आवाज मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था दो खिलाड़ी। लगता है हमारे श्रोताओं को जो है पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। इसीलिए तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है हमारे सवाल के जवाब में कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। आप लिखते हैं कि गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। चलिए हम पढ़ते हैं आपके इन जज्बातों को। आप लिखते हैं, पहली बूंदों को अदरक वाली चाय, गर्म पकौड़े और सुरीले सावन गीतों के सुनते हुए अपने मनमीत के साथ मजा लेना ही बढ़िया एहसास लगता है। क्या खूब। एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत कम सुनाई देने वाले सावन गीत आ रहे हैं, धन्यवाद। वहीं एक श्रोता ने कहा है, हमें तो सावन में बारिश हो रही हो तब गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन माह में हल्की रिमझिम वर्षा के साथ गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का आनंद लेते हुए झूले पर, अच्छा टेरेस पर डाले गए झूलों पर बैठना अधिक सुहाता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी खेतों में पड़े हैं और शिव जी पर नियमित प्रातः जलाभिषेक सब पत्नीक हम कर रहे हैं। सारे माह बेटियों बहुओं ने व्रत रखने का संकल्प लिया है। एक समय भोजन करेंगे, शिव नाम का जाप होगा और अभिषेक होगा। बहुत खूब। वहीं श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी पड़े हैं और व्रत भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय और पकौड़े को तो सावन की जान माना जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की शुरुआत ने हमारे यहाँ बारिश का आनंद देना शुरू कर दिया। हम घर बैठे बारिश के साथ रेडियो पर आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं और झांसी में 15 दिन बाद पानी बरसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और क्या कहना चाहिए, बधाई ये आपके शहर में पानी बरसा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने सावन का आनंद हमेशा ही लिया है। बचपन में कागज की नाव बनाकर तैराना, कॉलेज के दिनों में भीगते हुए सावन का आनंद लेना और रेडियो पर सावन के गीतों का मजा लेना। सर्विस पीरियड में अवकाश के दिन अपनी पत्नी के साथ खिड़की के फुहारों और हरियाली का आनंद लेना। अब सेवानिवृत्त होने के बाद अदरक, काली मिर्च और इलायची शुद्ध दूध की चाय और गर्मा गर्म प्याज के पकौड़ों का, आहा, हमारा भी मन कर गया है। मजा अपनी पत्नी के साथ लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो जब भी बारिश होती है तो पतिदेव पकौड़े की फरमाइश करते हैं और फिर हम दोनों बारिश का मजा लेते हुए साथ साथ पकौड़े का भी मजा लेते हैं। बहुत सुंदर, यही तो जीवन है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन महीने की बरसात की फुहार, चाय की प्याली और पकौड़े के स्वाद कुछ अलग ही होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की बारिश में चाय और पकौड़ों की जुगलबंदी इस रूमानी एहसास को दोगुना कर देती है। गर्मा गर्म पकौड़े, कट्टी भी ठंडक और बारिश की रिमझिम के बीच प्याज, आलू और मिर्च के करारे पकौड़ों की बाइट, मन को तृप्त कर देती है। इलायची अदरक वाली चाय पकौड़ों के साथ खौलती हुई अदरक इलायची की चाय की चुस्की रूह तक सुकून पहुंचाती है। मौसम का असली मजा खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते हुए चाय पकौड़े का आनंद लेना है और सावन का सबसे खास और ये सुखद पल बन जाता है। भाई, आपके चाय और पकौड़े की बात पढ़ते पढ़ते, आपकी फीलिंग्स को महसूस करते करते हमारी भी इच्छा हो गई है कि एक गर्मा गर्म चाय और कुछ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाई जाए। अच्छा, तो हमने एक सवाल पूछना चाहा भी था आपसे कि क्या कभी आपने बारिश में कागज की नाव बनाई। हाँ, बचपन में तो जरूर बनाई होगी। हमारे एक श्रोता ने अभी जवाब भी दिया कि उन्होंने बरसात में खास तौर से कागज की नाव को तैराया है। कितना मजा आता था ना घर आंगन में, जब हम जो नाली है उसमें एक कपड़ा ठूंस देते थे ताकि पानी बाहर न जाए और कागज की नाव उस पे चलाए करते थे और हमें लगता था कि हमने जैसे असल में नाव बना ली है और हम उस पर तैर रहे हैं। अच्छा, बताइएगा कि सावन का नाम सुनते ही आपके दिल में सबसे पहली कौन सी याद ताजा हो जाती है। कम से कम शब्दों में बताना है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

हमारी एक श्रोता लिखती है कि मेरे लिए सावन की रिमझिम फुहारें, खिड़कियों पर आती ठंडी हवा की लपटे। अरे आपने तो एक अलग ही शब्द इस्तेमाल कर लिया। हाथों में अदरक इलायची वाली कड़क चाय का गर्म कप और बैकग्राउंड में बजते हुए सदाबहार रुमानी गाने, ये किसी जन्नत के एहसास से कम नहीं लगते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। और जब कोई संगीत प्रेमी इस तरह की कल्पना करता है या इस रुमानियत से जीता है तो उसकी जिंदगी क्या कहने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर वाले अपार्टमेंट के टेरेस पर मैंने झूला रखा है और शाम को उस पर बैठकर झूलते हुए हरियाली देखता हूं और ठंडी हवा का आनंद उठाता हूं। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन में दोस्ती यारों के साथ चाय की दुकान पर मिलाप बढ़ जाता है और वार्तालाप और हंसी मजाक से समय बिताना कुछ अलग ही मजा देता है। बिल्कुल। एक श्रोता ने कहा है कि सुबह से दीदी बनारस में बारिश हो रही है, मेरा फेवरेट आनंद लेने की जगह वही होती है, बारिश में बस कुल्हड़ वाली सौंधी खुशबूदार चाय पीता हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर में बारिश काफी कम हुई है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। एक श्रोता कहते हैं कि फिलहाल तो हमारे जबलपुर में बारिश नहीं हो रही है, गर्मी तपन भी है, ना ही ऐसा कोई बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, सिर्फ विविध भारती का सहारा है जो हमें ठंडी ठंडी फुहार वाले गीत सुना रहा है, जब बारिश होगी तो पकौड़े और अदरक वाली चाय मिलेगी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में अपनी व्यस्तता बढ़ जाती है क्योंकि भोले भंडारी को खुश भी करना है, घर के ही मंदिर में शिव जी को जलाभिषेक करना, बेलपत्र और फूलों से पूजा करना दैनिक गतिविधियों का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है, साथ ही सोमवार को फलाहार वाला व्रत रखकर तन और मन को डिटॉक्स भी करना होता है, हाथों को हरी चूड़ियों और मेहंदी से सजाना भी सावन के महीने की विशेषता है, उस पर से बारिश की ठंडी फुहारें आसपास के वातावरण को और खुशनुमा बना देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के

शानदार गीत। आज तो मैं और मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको, शानदार सुरीला सफर का कार्यक्रम। बारिश और भी तेज हो रही है मेरे शहर में, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सभी को सावन का मौसम दुख और सुख दोनों का मिलन है। पहले सावन में मायके जाते थे, झूला झूलते थे, सखियों से मिलते थे, अब वो सब नहीं हो पाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, मैंने उनको सिर्फ इस गाने की दो लाइनें लिखी थी कि तेरी दो टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए रे, क्या बात है। बस फिर क्या था, उनको पता चला और उन्होंने छुट्टी दे दी और मेरा ये सावन का अनुभव हर साल सावन में याद आता है। वाह, अब तो ना मायके से कोई आता है ना ही कोई बुलाता है, पुरानी यादों को याद करके ये सावन बीत जाता है। यही जिंदगी है ना, जिंदगी में हर पल एक से नहीं होते हैं, कभी खुशी कभी गम होते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की पहली फुहार में आज काशी नगरी भीग गई है, मौसम बहुत सुहावना हो गया है। जहां बारिश अभी तक नहीं पहुंची थी वहां भी सावन की वर्षा पहुंच चुकी है। बाबा विश्वनाथ जी के से प्रार्थना करती हूँ कि अभी सावन की सुंदर छटा चलती रहे। वही एक श्रोता ने लिखा है कि अरे आपने तो मंदाकिनी शब्द के अलग अलग अक्षरों का अर्थ लिख दिया है, बहुत लंबा खत आपने लिखा है, बहुत लंबा संदेश, चलिए फिर कभी इसको पढ़ेंगे। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इबारत को पढ़कर मालूम हुआ कि सावन के महीने की क्या विशेषता है और सावन के ऊपर आज मधुर और कर्णप्रिय गीत सुनने को मिलने वाले हैं, तो हम इसके लिए आपके साथ सुरीला सफर में चलने को तैयार है। भाई अब तो हम अंतिम सोपान तक पहुंच चुके हैं, तो चलिए सुनते हैं प्रीति सागर की आवाज में, इनका साथ दे रहे हैं भूपेंद्र, फिल्म का नाम है भूमिका।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जो काम इंसान यूं ही नहीं करता वो काम बारिश करवा देती है। भवन की सफाई, पेड़ पौधों को साफ करना, पीने का पानी, पशुओं का चारे की व्यवस्था, ये बरसात ही तो करती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि कटक उड़ीसा में सावन आया, आकर भिगो भी गया, बारिश हुई, ऊपर छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश हुई, हीराकुंड डैम से पानी भी निष्कासित हो रहा है, नदी नाले पानी से भरे हुए हैं। बहुत दिनों के बाद बारिश आई, लेकिन खुशी के साथ दुख भी दिया, कई जिलों में बाढ़ आने से बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम ऐसे प्रकृति को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि

हमारे ही लोग इस अतिवृष्टि से कितने परेशान हैं और जानमाल को जब नुकसान होता है तो वाकई मन रो पड़ता है। जी अब तो मिलने मिलाने का वक्त खत्म हो गया है और अब आपको हमें यानी मंदाकिनी जोशी को इजाजत देनी होगी कार्यक्रम सुरीला सफर से। तो हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है भोर या सवेरा पर। साथियों, भोर प्रकृति की वो मुस्कान है जो धीरे धीरे खिलती जाती है और रात के घने अंधकार के घमंड को अपनी मुस्कुराहट के सौंदर्य से समाप्त कर देती है। ये केवल दिन की शुरुआत भर नहीं बल्कि आशा, ऊर्जा और नव जीवन का सुंदरतम उत्सव है। जब पूर्व दिशा में उषा अपनी सुनहरी चुनर फैलाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश स्वयं पर इठला रहा हो, मानो आकाश की झोली से भोर हाथ भर भर के सोना उछाल कर धरती पर बिखेर रही हो। रात भर चंद्रमा और तारों की छत्र छाया में विश्राम करती धरती भोर की पहली किरण के साथ अंगड़ाई लेकर जाग उठती है।

घास की पत्तियों पर सजी ओस की बूंदें मोतियों की तरह दमकने लगती हैं। मंद मंद बहती शीतल हवा फूलों की सुगंध को अपने साथ बहाकर पूरे वातावरण में बिखेर देती है। वृक्षों की डालियों पर बैठे पक्षी अपने मधुर कलरव से प्रकृति के इस जागरण का स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण सृष्टि किसी अदृश्य संगीत की लय पर थिरक रही हो। भोर जीवन का वो संदेश है जो कहता है कि कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होता। कितनी ही लंबी और भयावह रात क्यों ना हो, लेकिन अंत में उसे उजाले के सामने झुकना ही पड़ता है। यही कारण है कि सवेरा मानव जीवन में आशा और विश्वास का प्रतीक माना गया है। ये हमें प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों और निराशाओं के बीच भी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हर संघर्ष के बाद सफलता का सूर्योदय अवश्य होता है।

भोर हमें ये भी सिखाती है कि हर नया दिन एक नया अवसर है। बीते हुए कल की असफलताओं और दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर। जैसे सूर्य प्रतिदिन बिना थके अपनी किरणों से संसार को आलोकित करता है, वैसे ही मनुष्य को भी निरंतर कर्म करते हुए अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहिए। सच तो ये है कि भोर प्रकृति द्वारा रचित सबसे सुंदर काव्य है। इसकी हर किरण में उम्मीद का गीत है, हर हवा के झोंके में नव जीवन का संदेश है और हर उगते सूरज में अनंत संभावनाओं का प्रकाश है। भोर हमें याद दिलाती है कि जीवन रुकने का नहीं, बल्कि हर दिन नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए सवेरा केवल समय का परिवर्तन नहीं, बल्कि मन और आत्मा के जागरण का उत्सव है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के

0: सात साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
1: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुँच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
2: After a detailed assessment of the evolving
1: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
0: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
2: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
1: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है, हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
2: As projected earlier.
0: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए RBI ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
2: रियल GDP ग्रोथ फॉर दिस ईयर,
1: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
2: Q4 at 6.8%।
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए

0: प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
2: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, के लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
3: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ

0: तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारू मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी की बोल, मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम वक्त।

0: क्यों करती हो हम पे तुम भी मरती हो, बहाने क्यों करती हो हम पे तुम भी मरती हो, अभी तो नया साथ है आज हंसी तो कल भी हंसोगी।
1: किशोर कुमार की आवाज में आपने श्रीमान फंटूश का गीत सुना। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे।
0: बहाने

तुमको अगर नाज है, हमें इंतजार पर दिले बेकरार पर, हमें अपने प्यार पर तुमसे बड़ा नाज है। अजी ये गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अजी ये गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अभी तो नया आजाद है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है रिश्ते नाते। गीत रचना हजरत जयपुरी की है और धुन मदन मोहन की।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है दो बदन। शब्दकार शकील बदायूनी है और धुन रवि की है।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा और धुन कल्याण जी आनंद जी ने दी।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब

0: अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, आवाजी मोहम्मद रफी और शारदा की, फिल्म का नाम है गुमनाम।
4: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज लोक भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। इस दौरान श्री सोरेन ने राज्यपाल को जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं तथा इसके विरोध में रांची में चल रहे छात्र आंदोलन से अवगत कराया। इस मौके पर राज्यपाल ने छात्र हित को सर्वोपरि बताते हुए परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और युवाओं के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री सोरेन ने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। आंदोलन को धार देने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर्स और अन्य बुद्धिजीवी वर्ग सहानुभूति जताते हुए उन्हें समर्थन देने रांची पहुंच रहे हैं। वहीं नियुक्ति घोटाले की परतें भी खुल रही हैं। कई अभ्यर्थियों ने 9 से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। अब सभी पीड़ित तथा प्रभावित अभ्यर्थी इस विषय पर लामबंद होते दिख रहे हैं, जिससे सरकार और परीक्षा एजेंसियां घेरे में हैं।
5: हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो भी रणनीतियां हमारी बन रही हैं, हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुने, क्योंकि अब बच्चों के पास उतनी हिम्मत नहीं रही है। सारी चीजों हम लोगों ने करके देख लिया, एकमात्र आखिरी रास्ता हमारा ये अनशन बचा हुआ था, तो हम लोगों ने अन्न त्याग दिया है। अब हम चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को सुन ले। आप गार्जियन है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हम देखना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, आप किस तरह से अपनी गार्जियनशिप को निभाते हैं।
4: राज्य में आज एसआईआर अभियान के तहत प्रारूप मतदाता और एएसडीडी सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वे फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची में किसी भी सुधार या नाम हटाने को लेकर आज से दावा प्रतिदावा दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसे लेकर आज रांची में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी जेपीएससी परीक्षा, धांधली, युवाओं के रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे ज्वलंत मुद्दों पर हेमंत सोरेन सरकार को सदन के भीतर घेरने की आक्रामक रणनीति तैयार करेगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने आज रांची के मोराबादी मैदान में होने वाले झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 की तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात, पार्किंग और पेयजल जैसी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तथा उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। उम्मीदवार 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन और शाम 6 बजे तक शुल्क भुगतान कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
6: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट

0: आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावां से प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के 3 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इनमें 15 लाख रुपए का इनामी मदन महतो, 5 लाख रुपए का रवि सरदार और 2 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली मीना शामिल है। इनके पास से 3 AK-47 राइफलें बरामद की गई है। और राज्य के कई इलाकों में आगामी 8 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चतरा, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार और सिमडेगा जिलों में अगले 3 घंटों के दौरान गरज और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी नमस्कार और जरा माफ कीजिएगा।
2: ममता जी पहले तो आपको नमस्कार, सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाई माफी किस बात की?
1: बस यही तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपने पूछा ही नहीं माफी किस बात की। बस माफी मांग ली, अब कुछ भी गलती हुई हो तो आप माफ कर दीजिए।
2: नहीं भाई ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ गलती की है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ कारण है इसलिए आप कह रही है।
1: दरअसल ये जो बात है ना इसलिए कह रही हूँ, माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है।
2: ये तो बहुत सही है
1: ना। अब चाहे कोई छोटा हो उम्र में चाहे बड़ा हो, अगर आपने कोई गलती की है या आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती की है तो माफी मांग लेनी चाहिए, भले ही आपकी गलती ना हो। लेकिन इतनी विनम्रता भी ना हो कि आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको अनायास माफी मांगने का खामियाजा भुगतना पड़े, वो भी नहीं होना चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं से आज ये जानना चाहते हैं किन मौकों पर उनको माफी मांगनी पड़ी, क्षमा करना पड़ा, और किन मौकों पर उन्होंने अपने छोटों को क्षमा दी और किन मौकों पर उन्होंने क्षमा किया, तो वो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
2: बहुत छोटा सा शब्द है पर उसका बहुत गहरा अर्थ है। तो हमारे श्रोता लिख कर भेजे, उन्होंने ये तो बहुत लिख कर भेजा है कि क्षमा कर देना चाहिए क्षमा नहीं करना चाहिए, पर आपके जीवन से जुड़े कुछ अगर अनुभव है तो वो हमसे साझा।
1: अच्छा तो आप बताइए आप किन मौकों पर क्षमा करती
2: हैं? मैं तो बहुत बार मांग लेती हूँ, क्षमा मांग लेती हूँ और क्षमा कर भी देती हूँ, तभी हम जिंदगी को ना बड़े आनंद से गुजार सकते हैं जिंदगी। अगर हम दिल में किसी के प्रति ऐसा गांठ रख के चले ना तो उसमें क्या होता है हमारा भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
1: बिल्कुल सही कह रही है। और हम अपने घर में अपने बच्चों को तो रोजाना कुछ न कुछ किसी न किसी बात पे क्षमा करते हैं, अगर क्षमा नहीं करेंगे तो बच्चों के मन में गांठ पड़ जाएगी।

0: और वो फिर कैसे सीखेंगे। तो ये हम अपने श्रोताओं से यही कह रहे हैं कि अपने अनुभव हमें बताएं कि उन्होंने कोई ऐसी यादगार घटना भी हमें संक्षेप में बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और वो टिप्पणी हम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। और बताइए और किन
1: बातों साथ ही एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है ममता जी जो हर घर घर में होता है, जो माता पिता की लड़ाई में बच्चों पर बुरा असर, यानी इस बात में भी ये है कि पति पत्नी ने भी एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए समय समय पर, जब भी जरूरत पड़े सॉरी बोल दिया, क्षमा मांग ली, तो ये काम जो है बहुत अच्छी तरह सुलझ सकता है, क्योंकि माता पिता की लड़ाई से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनका मानसिक जो है ना स्तर बहुत बहुत गिर जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे,
0: उन पर विषय पर भी तनाव बहुत होता है
1: जी।
0: और अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे तो उनकी पढ़ाई पर असर होता है, सबसे ज्यादा उनकी शिक्षा बाधित होती है, क्योंकि वो माता पिता के झगड़ों को मन में कहीं उनके भीतर चलता रहता है, और माता पिता झगड़ के कई बार वो भूल भी जाते हैं, एक हो जाते हैं और कई बार अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं, जैसे दफ्तर में काम कर रहे हैं तो वो लोग अपने दफ्तर के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन बच्चे के कोमल मन पर उस झगड़े का बहुत गलत असर पड़ता है।
1: स्कूल में भी उनका मन नहीं लगेगा कि देखिए हमारे मम्मी पापा के बीच कैसी लड़ाई हो गई, अंदर ही अंदर वे परेशान रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी बच्चे पर ना आए, इस तरह से क्या किया जाए, यानी कि जब भी ऐसे कुछ हो तो बंद कमरे में बातचीत करके सुलह कर देना चाहिए। इस विषय पर भी आप लिखिए कि आप ऐसा करते हैं या फिर आप बिल्कुल इन बातों से दूर रहते हैं।
0: और इसमें भी अपने अनुभव हमारे श्रोता साझा कर सकते हैं, और जो भी टिप्पणी अभी आएगी उन टिप्पणियों को हम उन तक पहुंचाएंगे। और क्षमा के बारे में हमने बता दिया, और साड़ियों का संसार वृहद है, बहुत विराट है
1: जी,
0: और तरह तरह की साड़ियां होती हैं, और महिलाओं की तो खास शौक है पहनने की, लेकिन तोहफे में पाना भी महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है। साड़ी अगर आपने खरीदी तो ठीक है, लेकिन वही साड़ी अगर कोई आपके रिश्तेदार या कोई भाई बहन पिता और दोस्त मित्र पति दे दे खास मौके पर, तो वो जैसे लिख उठता है कि फला मौके पर फला ने ये साड़ी
1: दी थी। तो माहेश्वरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की शान है उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, हमारे सखियों ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए हैं, अपने मैसेजेस लिखना शुरू कर दिया है। और व्यंजन यानी हम शब्दों के माध्यम से तो चटनी बनाते ही हैं अगर हम
0: और ये जो मौसम है ना, बारिश का मौसम, इसमें जब भजिए पकौड़े बनते हैं तो उसके साथ चटनी जरूरी होती है, और चटनी ऐसी चीज है कि चाहे पकौड़े के साथ खाइए या पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ, हर चीज के साथ फिट हो जाती है,
1: वो खाने का जायका बढ़ा देती है,
0: और गाना भी जायका बढ़ाता है हमारे प्रोग्राम का। सुनते हैं ये गाना।

0: हाँ तो सोनाली जी, हम बात कर रहे थे साड़ियों की और माहेश्वर साड़ी के बारे में हम बताने वाले थे अपने सखियों को। भारत की हस्तकरघा परंपरा विश्व भर में अपनी उत्कृष्ट और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं अनुपम धरोहरों में माहेश्वरी साड़ी का बहुत बड़ा योगदान है और इसका स्थान भी है। मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर बसे महेश्वर नगर में निर्मित ये साड़ी अपनी हल्की बनावट, आकर्षक किनारे, मनमोहक पल्लू और राजसी गरिमा के लिए जानी जाती है।
1: और ममता जी, ये केवल एक परिधान नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और बुनकरों की अद्भुत कला का जीवंत प्रतीक है। और माहेश्वरी साड़ी का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर में ये स्थापित की थी। उन्होंने गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुशल बुनकरों को महेश्वर बुलाकर उन्हें बसाया। उनके संरक्षण में ऐसी साड़ी तैयार की गई जो राज परिवार की गरिमा के अनुरूप होने के साथ साथ हल्की, सुंदर और उपयोगी भी थी।
0: बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और तभी से माहेश्वरी साड़ी की परंपरा आगे बढ़ती रही। माहेश्वरी साड़ी हस्तकरघे पर बहुत सावधानी और धैर्य से बुनी जाती है। इसमें सूती और रेशमी धागों का सुंदर संयोजन भी किया जाता है। पहले धागों की रंगाई होती है, फिर उन्हें करघे पर चढ़ाकर पारंपरिक तकनीक से बुनाई की जाती है। एक उत्कृष्ट माहेश्वरी साड़ी तैयार करने में कई दिन और जटिल डिजाइन होने पर कई सप्ताह तक का भी समय लग जाता है।
1: और ममता जी, ये साड़ियां ना वजन में बहुत ज्यादा हल्की और पहनने में आरामदायक होती है। सूती और रेशमी धागों का संतुलित मिश्रण होता है। दोनों ओर से समान दिखाई देने वाली रिवर्सिबल बॉर्डर इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और पल्लू पर सामान्यतः 5 समानांतर धारियां बनाई जाती है और गर्मियों में भी सहजता से पहनी जाती है। सादगी और शाही गरिमा का ये साड़ियां सुंदर मेल है।
0: और ये भी बता दें कि माहेश्वरी साड़ियों के डिजाइन महेश्वर किले, नर्मदा नदी की लहरों, मंदिरों की नक्काशी और प्रकृति से प्रेरित होते हैं। इनमें चटाई, लहरिया, हीरा, ईंट, चमेली, रूपमती, नर्मदा लहर वगैरह वगैरह पारंपरिक पैटर्न बहुत लोकप्रिय हैं।
1: और रंगों की अगर बात की जाए, रंगों में लाल, हरा, बैंगनी, नीला, काला, गुलाबी, सुनहरा, फिरोजी, मैरून, दोहरे रंगों का भी आकर्षक संयोजन देखने को मिलता है। और इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे नीम सिल्क, शुद्ध सिल्क, सूती माहेश्वरी, टिश्यू माहेश्वरी और कतान माहेश्वरी ये प्रसिद्ध है।
0: और चेक्स और स्ट्रिप डिजाइन वाली साड़ियां भी होती हैं। हर तरह की साड़ी का अपना एक अलग सौंदर्य है और उपयोग भी है। और महेश्वर के हजारों बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। और सोनाली जी, एक बात और है कि इस जो साड़ी की ये परंपरा है, इससे कितने लोगों को रोजगार मुहैया होता है। जो बुनकर होते हैं अपनी कुशलता से जब साड़ी तैयार करते हैं तो उनकी आय का जरिया भी यही होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये कार्य करते हैं और उनकी मेहनत, धैर्य और सृजनशीलता ही माहेश्वरी साड़ी की वास्तविक पहचान है। ये हस्तशिल्प न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराती बल्कि ये एक उद्योग के रूप में काम करती है। समाज और देश तक इसकी पहुंच है
1: जी। और माहेश्वरी साड़ी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि इस साड़ी की विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता माहेश्वर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। GI टैग नकली उत्पादों पर रोक लगाने, बुनकरों के अधिकारों की रक्षा करने और इस पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

0: और ये साड़ियां जो है देश ही नहीं विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। विवाह, फिर धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी आयोजन और औपचारिक अवसरों पर इसे विशेष पसंद किया जाता है। आधुनिक फैशन डिजाइनरों ने भी पारंपरिक डिजाइनों को नए रंगों और शैली के साथ प्रस्तुत कर इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाया है।
1: महेश्वरी साड़ी केवल रेशम और सूत का ताना बाना नहीं बल्कि नर्मदा की निर्मल धारा, महेश्वर के किले की भव्यता और बुनकरों के स्वप्नों से बुनी हुई भारतीय संस्कृति की अनुपम चादर है। इसे ओढ़ना, इसे पहनना मानो इतिहास, परंपरा और सौंदर्य को एक साथ आत्मसात करना है।
0: और माहेश्वरी साड़ी भारतीय हथकरघा परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। इसमें इतिहास की गरिमा, संस्कृति की सुगंध है और बुनकरों के श्रम का अनुपम सौंदर्य समाहित है। और ये साड़ी हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ साथ स्वदेशी हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा भी देती है।
1: और हम इस समय प्रेरणा पा रहे हैं ये गाना सुनवाने के लिए। सुनते हैं ये गाना, फिर और बातें करते हैं।

0: भाई सोनाली जी, एक बात बताइए कि लड़ाई झगड़े का असर तो मन पर होता है, पर आप बताइए कि जरा आप जब झगड़ कराती हैं, झगड़ लेती हैं अपने पतिदेव से, तो उसका असर कितनी देर तक रहता है?
1: उसका असर तो बहुत देर तक रहता है ममता जी, और भूलने के सिवा कोई चारा नहीं होता है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके साथ कैसे होता है?
0: मैं तो झगड़ती नहीं।
1: ऐसा नहीं हो सकता।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं,
1: ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई पति पत्नी नहीं होते कि जिनके बीच लड़ाई नहीं होती।
0: हम तो पति पत्नी के बीच तो झगड़ते ही हैं सोनाली जी। हमने भाई बहनों में बहुत झगड़े किए हैं, और परिवार में कौन ऐसा है जिससे हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन वो झगड़ा ना बहुत क्षण के लिए होता है, और थोड़ी देर बाद झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं कि झगड़ा किस बात पे हुआ था। जैसे जब दो बहनें हम झगड़ा करते थे, तो बाद में सोचते थे कि आखिर झगड़े का मुद्दा क्या था। घर वाले पूछते थे बात किस बात, झगड़ा किससे शुरू कैसे हुआ। कभी बैठने की जगह को लेकर कि हम यहाँ बैठेंगे, कभी सोने को लेकर कि यहाँ हम सोएंगे और इस बिस्तर पर

0: तो पहले हम जाएंगे या पहले हम ये किताब पहले हम पढ़ेंगे, ये मैगजीन पहले हम पढ़ेंगे, इस पर हमारे भाई बहनों में ज्यादा झगड़ा हुआ। और तो और रेडियो सुनने के लिए कि कोई तेज आवाज में सुनना चाहता है, कोई धीमी आवाज में, तो उस पर बहुत जम के झगड़े हुए। तो ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं ना, ये कभी कभी यादगार हो जाते हैं, ये प्रेमिल झगड़े हैं, स्नेहिल झगड़े
1: हैं, ये घर घर की कहानी होती है। पर भले ही झगड़े में मतभेद हो जाए पर मनभेद नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमारे श्रोताओं ने बहुत सफाई से, प्यार से इस बात को छुपा लिया है, अपनी बात उजागर नहीं की। अब हमने
1: डर गए होंगे ना
0: कि पत्नी से डांट खानी पड़ेगी,
1: क्यों ना आपने वहां लिख दिया, सबको पता चल गई घर की बात
0: तो हमने तो इसलिए बता दिया और आपने भी बता दिया कि हम तो झगड़ते हैं बाकायदा,
1: ये तो बहुत ही तो सामान्य सी बात है।
0: हाँ, लेकिन झगड़े का असर जब घर पर होता है, बच्चों पर पड़ता है, तब फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए। वहां पर झगड़े पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लड़ाई झगड़ों का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, फिर बच्चों का हृदय तो बहुत कोमल होता है, ऐसे माहौल में वे हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। घरेलू तनाव के कारण बच्चे डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, उनका मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर हिंसक और दूसरों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वे अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते।
1: एक हमारे साथी ने यह भी लिखा है ममता जी, कि अभिभावकों की लड़ाई में बच्चों पर असर, मतभेद तो सभी परिवार में चलते ही रहते, लेकिन मन का भेद कभी नहीं होना चाहिए। 31 तारीख को मेरी सहेली के बेटे बहू ने तलाक लिया, नन्ही सी बेटी 4 साल की है, उसे माता पिता दोनों चाहिए, वीडियो कॉल करती है और पापा के पास जाने की जिद भी करती है। माता पिता तो अपने निजी कारण से अलग हो ही गए, सोचती हूँ कि अब उस बच्चे की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आएंगे और वे उन सबको किस तरह लगी। इन्हीं बात कितनी, यानी कह लीजिए कि भावनात्मक रूप से वो बच्ची जो है थोड़ी सी परेशान भी होगी, कि वो पापा के पास भी जाना चाहती है और मम्मी के पास भी रहना चाहती है।
0: बिल्कुल।
1: पर किसी कारणवश दो अलग अलग हो गए हैं, पर ये विचार करके ही हमें तकलीफ हो रही है, तो उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये हमारी जो श्रोता है इन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही है। ऐसे अखबार में एक घटना हमने पढ़ी थी, जिसमें निचोड़ ये था उस घटना का, कि पति पत्नी ने तलाक लिया और कोर्ट से बाहर आ रहे हैं पति पत्नी, और छोटी बच्ची है वो जिद कर रही है अपने माता पिता के पास जाने के लिए। पिता उसे रखने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका लालन पालन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, उसकी मेरी नौकरी है। और माँ ये कह रही है कि इसका भरण पोषण मैं कैसे करूंगी, क्योंकि अभी तक उसको गुजारा भत्ता नहीं मिला है और वो कहाँ से इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करेगी। तो दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं और बच्ची जार जार आंसू रो रही है कि वो कहाँ जाए, उसे चाहिए माँ का साथ, पिता का साथ। तो ये जो स्थिति होती है और दयनीय स्थिति है, ऐसी नौबत आने नहीं देना चाहिए। कई बार माता पिता के बीच जो टकराव होता है, अब हम सभी ये भी कहते हैं कि जब घर में तनाव ज्यादा हो जाए, लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंच जाए, तो अलग होना बेहतर होता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो ये नहीं सोचते कि इस अलगाव का आने वाली पीढ़ी पर क्या असर होने वाला है, बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा, बच्चा किसके पास जाना चाहेगा, क्यों वो माँ के पास अकेले रहना चाहेगा, क्यों वो पिता के पास अकेले रहना चाहेगा। उसे तो दोनों चाहिए ना, उसे माता पिता का घर भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, और माता पिता के घर मतलब नानी का घर भी चाहिए, दादी का घर भी चाहिए। तो दोनों जब छूटते हैं, दो में से कोई छूटता है, तो बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि बाल मन बहुत कोमल होता है, माता पिता क्या किसी भी लड़ाई का असर उनके मन पर बहुत ज्यादा होता है। वही एक साथी लिखते हैं कि माता पिता के बीच होने वाले लगातार झगड़ों और मन मुटाव से बच्चों के कोमल मन पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। इससे बच्चों में असुरक्षा की भावना, मानसिक तनाव और पढ़ाई में एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है, मानसिक और भावनात्मक असर डालती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों पर ही पड़ता है, माता पिता पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे परिवार में ऐसा हुआ है, ये तो अच्छा है कि परिवार के लोगों को संभालने से बहुत कुछ अनहोनी नहीं हो सका, पर एक परिवार का टूटना तो दुखद ही रहा।
0: बिल्कुल सही है, और कभी भी टूटना या तोड़ना अच्छा नहीं होता है, तो चीजों को टूटने से बचाना चाहिए। चीजें भी टूटती हैं तो भी बुरा ही लगता है, लेकिन कई बार स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, तब उस ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब नियमित लगातार घर में हिंसा होने लगती है, शारीरिक हिंसा और पटक फोड़ होने लगता है, बर्तन पटकना, ये सब जब स्थिति जरूरत से आगे बढ़ जाती है, तब फिर ऐसे में अलगाव बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक चीज और है, अब जमाना बदल गया है, अब हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं इन चीजों की, लड़ाई झगड़ों के लिए काउंसलिंग होता है, पति पत्नी के अलग काउंसलिंग होती है और काउंसलर्स मतलब दोनों के बातों को सीक्रेट रखते हैं, और इस मामले में आपके पास सर्च करने के लिए जरिया है बहुत सारा, लोगों से पूछ सकते हैं, अखबार है, गूगल है, जहां से आप सर्च कर सकते हैं। तो झगड़ों को अवॉइड करें, चाहे उसके लिए आपको जो करना हो, काउंसलिंग करना हो, सलाह लेना हो, दोस्तों मित्रों या परिवार वालों से सलाह लेनी चाहिए, उनको बीच में लाना चाहिए ताकि आपके झगड़े कम हो, क्योंकि उसका असर निश्चित रूप से बच्चों पर पड़ता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का घर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है, जब इस सुरक्षित जगह पर ही लगातार तनाव और कलह बनी रहे तो बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जिन घर में रोज झगड़े होते हैं वहां के बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अभिभावकों को ये समझना होगा कि बच्चों के सामने लड़ना उनके बचपन को छीनने जैसा है, यदि मतभेद हो भी तो उन्हें बच्चों के सामने लाकर बंद कमरे में शांति से सुलझाना चाहिए। और बच्चों की सिर्फ यही इतनी नहीं होती है खामियां, आगे चलकर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, अंतर्मुखी हो जाते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा हिंसक भी हो जाते हैं। और सोनाली जी, हम आपको बताएं कि एक कपल के बारे में उन्होंने हमें बताया कि उनके बीच झगड़े होते थे, तो जब झगड़े शुरू हो तो कमरा बंद कर लेते थे और म्यूजिक चला देते थे, रेडियो या कोई भी गाना, ताकि झगड़ने की आवाज बाहर ना जाए, और फिर जम के झगड़ा करके फिर बाहर आते थे। तो ये भी एक तरीका है झगड़ने का,
1: यानी बच्चों को पता ही नहीं चला कि अंदर क्या हुआ, अंदर तो डांस कर रहे थे या गाना गा रहे थे मम्मी पापा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जो जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे वैसे ही उसका अनुसरण करते हैं, तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि बच्चों के सामने बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े ना।
0: जब झगड़े की नौबत आए तो एक प्यारा सा गाना गुनगुना लेना चाहिए एक दूसरे के लिए, तो झगड़े टल तो जाते हैं। सुनते हैं ये गाना।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली।
1: ममता जी, आपने कहा था ना कि रेडियो धीमा सुनना है या तेज आवाज में सुनना है, इस पर से आपके बीच में लड़ाई होती थी।
0: हमारी बहनों, दो बहनों की बहुत लड़ाई होती थी।
1: तो ऐसे ही इसी तरह का एक कमेंट हमारी सखी ने लिखा, ये कहते कि रेडियो तेज सुनना, इस पर हमारा आज भी झगड़ा होता है, पर वो तो मस्ती में फिर हम रेडियो लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते, फिर वही मस्ती वाली बातें। कितनी अच्छी बात है।
0: बिल्कुल। और ये भी होता था कि मतलब होता होगा हमारे श्रोताओं के बीच कि ये रेडियो तो तब उस समय एक ही रेडियो हुआ करता था।
1: हाँ।
0: अब तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जो कई कई सेट होते हैं घरों में। आप एक किचन में सुन लो, एक दूसरे कमरे में,
1: मोबाइल से भी सुनते हैं,
0: मोबाइल पे भी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे श्रोता बताते रहते हैं। हमारे तो एक श्रोता है जिन्होंने बताया था कि उनके पास 11 रेडियो सेट है और वो सब बड़े वाले रेडियो सेट। तो अभी शौक भी है, अगर रेडियो से इतना प्यार है तो लोग इस तरह से रेडियो रखते हैं। बहरहाल, बात लड़ाई झगड़े की चल रही थी और तकरार चल रही थी। तो एक श्रोता ने लिखा है कि लेखिका शिवानी जी के उपन्यास में पढ़ी थी मैंने, गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होता है उतना ही हमारे प्यार की दीवार मजबूत होती है। मतलब जितनी लड़ाई हो उतनी दीवार मजबूत होती है, इसलिए पति से खूब लड़िए थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं ना कि मियां बीबी के झगड़ा दूध में पड़ी मलाई के समान होना चाहिए और मलाई तुरंत हट जानी

0: चाहिए।
1: तो यानी लड़ाई झगड़ा तब होगा जब हम आपस में बातचीत करेंगे, हम अगर हम किसी से हेल्प लेंगे, हम किसी की मदद करेंगे तभी तो बातचीत करेंगे। यानी उस बातचीत के पीछे घर में जो है ना, पति पत्नी एक दूसरे की मदद भी करेंगे, तो फिर थोड़ी बहुत मन मुटाव होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। पर ये मन मुटाव बहुत बड़ी लड़ाई में परिवर्तित ना हो जाए और इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर ना पड़े, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक साथी ने हमारे लिखा है कि लड़ाई किसी के भी बीच हो, चाहे वो बच्चे या अभिभावक हो या हमारे पड़ोसी हो, सभी पर बुरा असर पड़ता है। लगातार हो रहे झगड़े का मानसिक और भावनात्मक असर बच्चों पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे जरूर होते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में मन के कच्चे बनने में जरा देर नहीं लगती। घर के माहौल को देख स्कूल में या बाहर किसी के साथ भी आक्रामक बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ने लगता है, उनका ग्रेड कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे बड़ी बात पति पत्नी को झगड़ना ही क्यों है। अब ये तो सवाल बहुत बड़ा है, क्यों झगड़ना है, मुद्दा क्या होता है?
1: जानबूझ के कोई लड़ता नहीं।
0: मुद्दे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, घरेलू झगड़े तो बहुत ही छोटे छोटी बातों पर, कि तुमने ऐसा कहा, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, अरे तुमने मुझे इस बात के लिए याद नहीं दिलाया, देखो ये तौलिया यहाँ पर रख दी, चादर गीली तौलिया रख दी,
1: सब्जी लाने के लिए बोला था तुमने एक ही तरह की सब्जियां लेके आ गए, सारी हरी वाली हरी पत्तेदार सब्जी लेके आ गए, अभी मुझे साफ करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लड़ने के लिए कोई
0: खास बड़ा कारण नहीं होता, बहुत छोटे कारण होते हैं जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं, और पति पत्नी के बीच, या फिर कई बार जब व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तो बड़े झगड़े भी होते हैं, तो दीवार खड़ी हो जाती है। मान लीजिए कई बार संबंधों की बात आती है, संबंधों में दरार जब पैदा होती है, तो फिर उन झगड़ों को बचाना ही बेहतर होता है। और वो कहा भी जाता है ना कि बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है, बच्चे तो भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि कई बच्चों का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और पढ़ाई ऐसी उनकी चौपट हो जाती है कि वो फिर आगे उनका करियर ही नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
1: बस हमें सामंजस्य रखना चाहिए रिश्ते के बीच में, कि भाई बहुत ज्यादा उसे किसी भी चीज को ना बहुत अधिक हम महत्व देते हैं, कि वही बात, ताने मारना, बार बार आलोचना करना।
0: वैसे एक बात बताइए सोनाली जी, जब आपके पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो आप क्या करती हैं, कैसे निपटारा करती हैं?
1: भाई मैं तो ऐसे करती हूँ, पैर में चप्पल पहनती हूँ, निकल जाती हूँ।
0: पति महोदय सुन रहे होंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ी देर बाद एक दूसरे से जिसने जो भी सोचे कि हम समझौता कर ले, एक चाय का ऑफर, एक कॉफी का ऑफर, कुछ खाने के लिए, चाय पीनी है क्या,
1: मैं बना रहा हूँ तुम पियोगी क्या,
0: हाँ ये वाला, उसके बाद मुझे लगता है कि झगड़े खत्म हो जाते हैं। या कोई मीठी सी चीज रखी है घर में, तो मैं तो ये खाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, दोनों को करना चाहिए, तो आपको भी खाना है, या फिर चलो यहाँ घूमना चाहते हैं, चलना है क्या तुम्हें मॉर्निंग, मतलब सुबह की सैर के लिए, शाम को घूमने, या चलो पिक्चर देखने चलते हैं।
1: अरे बहुत सारे हैं उसके, तो बहुत सारे की साड़ी ला दी, गिफ्ट ला दी, चलिए ये साड़ी खरीदना,
0: ये तुम्हारे लिए ले आए,
1: या फिर क्षमा कर देना सबसे जरूरी।
0: लेकिन वहां पर ईगो आ जाता है ना, बीच में जो अहम नाम की दीवार है,
1: बहुत मोटी दीवार होती है,
0: वो ऐसा करने नहीं देती है। चाय बनाने तो जा रहे हैं, मन कर रहा है कि पूछ लेते हैं, नहीं नहीं इसने तो मुझे बहुत बुरा बुरा बोला था, नहीं पूछते हैं, छोड़ो
1: आज तो पूछूंगा ही नहीं, आज तो पूछूंगी ही नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं तो बात करने ही नहीं वाली।
0: तो सबसे जरूरी है ये जो अहम की दीवार है इसे तोड़ देना। और हमारे लिए इस समय क्या जरूरी है,
1: गाना सुनना,
0: सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये।

0: माफ करिए सोनाली जी, जरा कमेंट्स जो पढ़ रही है ना, धीरे धीरे चुपके चुपके जरा जोर से पढ़ के सुनाइए।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि भाई,
0: अरे मैंने आपसे माफी मांगी, आपने कुछ कहा ही नहीं।
1: ममता जी
0: ये होता है माफी का असर कि इतनी खिलखिलाहट खिल जाती है
1: और इतने प्यारे अंदाज में कोई बोलेगा ना तो
0: दिल आ जाता है। क्या लिखा है?
1: एक हमारे सखी ने कहा है कि ये जो है ना, ये क्षमा करने का, यानी ये कहने का कि भाई मैं चाय बनाऊं क्या, नहीं आपने जो बोला था तो इसमें ना मन में होता है कि ऐसा बोल दे कि चलो मैं चाय पर मन, वो जो दिल की बात है ना, जुबा तक ही नहीं आती है।
0: हाँ भाई, अहम की दीवार जो होती है ना, तो उस अहम की दीवार को तोड़ना है, और जब वो टूट जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज हम लोगों की बातों से जितने झगड़े हुए होंगे सुलट के जाएंगे,
1: वो बिल्कुल सुलझने वाले हैं
0: शाम तक चाय के साथ।
1: कोई तो भी चाय बनाएगा, कोई पकौड़े बनाएगा, है ना।
0: हाँ बिल्कुल, और कोई चटनी भी बनाएगा। अभी चटनी की रेसिपी भी बतानी।
1: बहुत सारी रेसिपीज आई है, हमारे बहुत सारी सखियों ने अलग अलग तरह की रेसिपीज लिख कर भेजी है, जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतने अच्छी अच्छी चटनियां भी बन सकती है। शब्दों की चटनी बहुत बनी है आज।
0: लेकिन क्षमा के बारे में हमारे श्रोताओं ने जो लिखा वो भी हम एक एक करके पहुंचा देते हैं उन तक। एक हमारी सखी है जो नियमित रूप से लिखती है, इन्होंने लिखा है कि क्षमा के धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय पर ग्लानी की अनुभूति होती हो, लेकिन हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और इसका दर्द भी हम यदा कदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, क्षमा मांगने और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। पर यकीनन क्षमा करने में स्वयं को बहुत हल्कापन हो जाता है और बड़े भारी मानसिक बोझ से हम बरी हो जाते हैं। हमने इसको खुद आजमाया है। क्या बात है।
0: कई बार क्षमा मांगकर दुख भी होता है, अगर गलत बात के लिए क्षमा मांगनी पड़े, जैसे कई बार जबरदस्ती आपको माफी मांगनी पड़ जाती है दबाव के चलते, परिवार में, समाज में, दफ्तर में, या कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थल पर आपको जबरदस्ती सॉरी कहना पड़ता है, तो वहाँ आपका

0: जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान वहां जाता है, हाँ, चोटिल होता है, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी के दबाव में आकर माफी ना मांगे।
1: जी बिल्कुल। वैसे एक साथी ने लिखा है कि पहले मेरा स्वभाव था गलती चाहे हो ना हो मैं क्षमा मांग के बात को खत्म कर देना ही पसंद करती थी, पर जब देखा कि इसका भी गलत ही लोग फायदा उठा रहे हैं तब मैंने कुछ अपने को रिजर्व करा और थोड़ा सा चुप रहकर निग्लेक्ट करना मुझे बेहतर ऑप्शन लगा। ये भी ऑप्शन अच्छा है कि भाई आप थोड़ी सी दूरी बना ले तो फिर इन सब समस्याओं से थोड़ा बहुत छुटकारा तो हम पा सकते हैं।
0: अब क्षमा के जब हम टिप्पणियां पढ़ रहे हैं तो एक टिप्पणी हमें मिल गई है जो झगड़े वाली जो क्षमा के साथ मैच हो रही है। इन्होंने लिखा है, हमारी सखी है, हमारा और हमारे घर में झगड़ा होता है कि साहब जी को टीवी देखना पसंद है और मुझे रेडियो सुनना, तो मैं कमरे में जब रेडियो चलाती हूँ और वो टीवी चलाते हैं मैं तो मैं दूसरे रूम में फोन लेकर चली जाती हूँ। उनका कहना है कि रहो भी कमरे में, फिर भी मैं टीवी तो चलने देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ और अपना रेडियो चलता रहता है। हम लोग दोनों रेडियो सुनते हैं और वो टीवी देखते हैं।
1: आप कान में हेडफोन लगा लीजिए ना।
0: हाँ, वो भी एक तरीका है,
1: ऑप्शन अच्छा है।
0: हाँ, और ये भी तरीका है कि अपनी मतलब कि रेडियो सुनवा देती हैं जबरदस्ती है। मतलब चित्र दिख रहा है और रेडियो सुना जा रहा है, ये भी एक तरीका है। और
1: एक साथी ने लिखा है, क्षमा बड़न को चाहिए चोटन को उत्पात, क्षमा बड़प्पन की निशानी है, क्षमाशीलता कमजोरों का नहीं बलवानों का गुण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि आत्मा को शुद्ध करती है और रिश्तों में जहर घोलने वाली नकारात्मकता को समाप्त करती है।
0: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और भी तो कुछ
1: एक साथ लिखते हैं कि क्षमा धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय पर ग्लानी की अनुभूति होती हो, किंतु हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और इसका दर्द भी हम यदा कदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
0: क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि क्षमा मांगने में और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। दरअसल क्षमा करने वाला ज्यादा बड़ा कहलाता है क्षमा मांगने वाले से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्थिति ऐसी बन जाती है कि जहां माफी के लायक वो काम नहीं होता है तो वहां पर जिसने माफ किया वो बड़ा हो जाता है।
1: पर एक बात ये भी है ममता जी कि जो रिश्ता होता है ना कांच की तरह होता है, कि अगर कांच चटक जाए तो फिर उसे जुड़ता नहीं। इस रिश्ते में दरार हमेशा के लिए रहती है, बस कोशिश हो कि उसे टूटने से बिखरने से बचा दिया जाए। एक साथी कहते हैं कि सिर्फ दो अक्षरों का शब्द है लेकिन उस दो अक्षरों के शब्द में अपार शक्ति है। क्षमा, जिसे विरास से भूषणम कहा जाता है, किसी से क्षमा मांगना ये अपनी निर्बलता नहीं है। क्षमा स्वतंत्र रूप से उपचार करने वाली, सुख और शांति के द्वार खोलने वाली कुंजी है जो सबसे बड़ा उपहार है।
0: क्या बात है। अब सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हुए सुनते हैं ये गाना।

0: सोनाली जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी बात बहुत छोटी होती है और हम ये सोचते हैं कि वो माफी मांगे, और वो सोचते हैं पहले हम बोले, पर किसी को बढ़कर बात कर तो लेनी चाहिए।
1: यही तो बात आपने कही थी ममता जी, कि उसके बीच में अहंकार की मोटी सी दीवार होती है, पर बात कर वो दीवार को तोड़ देना चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक पल आपका आत्मसम्मान चोटिल होता है, लेकिन जैसे ही झगड़े खत्म होते एकदम नॉर्मल सा हो जाता है माहौल, तो इसलिए वो नॉर्मल कर लेने में ही भलाई है
1: सभी अगर... की, और खासकर बच्चों की भलाई है।
0: हाँ बिल्कुल। और एक श्रोता के कई श्रोता आज लिख रहे हैं कि आपका ये जो डिस्कशन है प्रोग्राम में वो बहुत अच्छा है, और जो विषय आपने चुना है बहुत अच्छा है, ऐसा लिखा है।
1: और एक साथी ने लिखा है कि हमारी भी लड़ाई खत्म हो गई है और अच्छा, अब हम चाय पीने वाले हैं।
0: क्या बात है भाई। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और सोनाली, हमारा तो उद्देश्य यही होता है कि हमारी बात दूर तक पहुंचे और देर तक असर करे। तो अगर किसी श्रोता ने ये लिखा है तो हम सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप में से किसी से झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है, तो बस एक प्याला चाय बनाइए एक दूसरे के लिए और
1: मिटा दीजिए,
0: माफी मांगिए और खत्म कर दीजिए झगड़ा।
1: एक अब चटनी की ओर बढ़े।
0: हाँ, चटनी भी बना सकते हैं,
1: अमरूद की चटनी। इसके लिए एक मध्यम आकार का अमरूद है पका हुआ, एक कप धनिया, दो तीन हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार सफेद नमक, एक नींबू का रस और दो तीन चम्मच पानी। चटनी बनाने की विधि, अमरूद को अच्छे से धोकर पोंछ ले, इसके आगे पीछे का हिस्सा काट दे, अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े करे और इसके कड़े बीज बाहर निकाल कर रख दे। मिक्सी के जार में कटे हुए अमरूद, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डाले। अब इसमें जीरा पाउडर, काला नमक, सफेद नमक और नींबू का रस मिलाए और जरूरत के अनुसार दो तीन चम्मच पानी डालकर इसे दरदरा या अपनी पसंद अनुसार पीस ले, और आपकी स्वादिष्ट और चटपटी अमरूद की चटनी तैयार है। इसे पराठे या भोजन के साथ परोसे।
0: क्या बात है भाई, श्रोता हमारे ये आजमाएंगे। अब एक चटनी की रेसिपी बहुत लंबी सी लिखी है तो कहने को चटनी जो बहुत छोटी मात्रा में परोसी जाती है, लेकिन रेसिपी बहुत लंबी है। देखते हैं क्या लिखा है। तिल और सूखे धने की चटनी। ये चटनी मेरी नानी बनाया करती थी। सामग्री इस तरह से है कि सफेद तिल आधा कप, साबुत धनिया दो बड़े चम्मच, सूखी लाल मिर्च चार से पांच, लहसुन की कलियां और जीरा एक छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता और हींग एक चुटकी, नमक स्वाद के अनुसार। बनाने की विधि, एक भारी कढ़ाई में तिल को धीमी आंच पर हल्का चटकने तक भून ले, इसे एक प्लेट में निकाल ले, उसी कढ़ाई में साबुत धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालें। इन्हें धीमी आंच पर तब तक भूने जब तक कि मसालों से अच्छी खुशबू न आने लगे। इन्हें भी तिल वाली प्लेट में निकाल लें। अब लहसुन को सूखा भून लें, सारी सामग्री को ठंडा होने दें, फिर इसमें नमक हींग डालकर दरदरा पीस लें। स्वादिष्ट चटनी तैयार है। ये काफी समय तक खराब नहीं होती और इसे आप बाजरे या मक्के की रोटी, थेपला या गरम पराठे के साथ खा सकते हैं।
1: एक सखी ने करौंदे की चटनी लिखकर भेजी है। ये करौंदे को काटकर उसके बीज निकाल दीजिए, उसमें लहसुन हरी मिर्च डालकर पीस ले, ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल मिला दे, स्वादिष्ट चटनी तैयार होती है। और कदम्ब को काटकर सूखी भुनी लाल मिर्च, भुना जीरा, धनिया, काला नमक और थोड़ा गुड़ के साथ पीस ले, इसमें लहसुन नहीं डालते, आपकी इच्छा हो तो आप डाल दे। ये खट्टी मीठी चटनी रोटी और पराठे के साथ अब बहुत अच्छी लगती है। करौंदी की चटनी में आप धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, पर बरसात के दिनों में हम पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कम करते हैं। करौंदा लहसुन मिर्च के साथ थोड़ा मोटा मोटा पीसा जाता है। ज्यादातर लोग इसे पकाए हुए भुट्टे के साथ खाते हैं। और एक ने लिखा है कि चटनी बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है। चटनी खाने में आजकल प्रमुख है। चटनी कई प्रकार की बनाई जाती है, टमाटर की, हरी मिर्च।

0: लहसुन की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वैसे चटनी पुदीने की बनती है। धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी अदरक, टमाटर, लहसुन सबको मिलाकर बारीक काट कर मिक्सी में पीस लिए चटनी तैयार होगी। गरम गरम पराठे या रोटी के साथ खाओ तो बहुत मजा आएगा। सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब भी सब्जी से बोर हो जाओ घर में चटनी बना लो, मजा आ जाएगा।
1: क्या बात है। तो आज सोनाली जी, जो आज ये तकरार वाली चाय बनेगी उसके साथ थोड़े पकौड़े और ये चटनी,
0: चटनी है ना? क्या बात है। तो ये ऐसी तकरार बार बार होनी चाहिए
1: कि उसके बाद चाय पकौड़े मिले।
0: मिल जाए।
1: तो चलिए अब प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं।

0: भाई इस प्रोग्राम से जाने का मन कभी नहीं करता है और लगता है कि प्रोग्राम का समय कम पड़ गया है।
1: मुझे लगता है श्रोताओं का भी यही हाल होगा,
0: उन्हीं की बात पे कह रही हूँ क्योंकि वही लिख रहे हैं कि जल्दी से बीत जाता है ये एक घंटा। हमारे लिए भी ऐसा ही एहसास होता है, लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाए या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: ये कार्यक्रम
1: आज ही केंद्र है, आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज लोकभवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। इस दौरान श्री सोरेन ने राज्यपाल को जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं तथा इसके विरोध में रांची में चल रहे छात्र आंदोलन से अवगत कराया। इस मौके पर राज्यपाल ने छात्र हित को सर्वोपरि बताते हुए परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और युवाओं के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री सोरेन ने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में जेपीएससी में कथित अनियमितता को लेकर छात्र संगठनों ने आज प्रदर्शन किया। राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी है। कई अभ्यर्थियों ने 9वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के सफल, सुचारू और गरिमापूर्ण संचालन को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बैठक में मॉनसून सत्र के दौरान सदन के सुचारू संचालन को लेकर सभी दलों से सकारात्मक सहयोग का आग्रह किया गया। और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाभियान को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नशे को स्वास्थ्य, परिवार और समाज के लिए गंभीर समस्या बताया तथा जागरूकता पर जोर दिया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: शुरुआत में जो आपातकालीन उद्घोषक होते थे उनको रात की ड्यूटी मिलती थी।
4: बिल्कुल।
3: तो 3 रातें मैंने
4: ओवरनाइट ट्रांजिशन
3: बिताई हैं।
4: सही है। लेकिन चूंकि बचपन को याद किया तो बचपन जो है आलोक आपका वो कॉमिक से जुड़ा हुआ है, ये चस्का कहां से लगा था?
3: बचपन बड़ा मजेदार है मेरा। बचपन असल में कॉमिक्स और रेडियो दोनों से जुड़ा हुआ था।
4: बिल्कुल।
3: तो क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और मेरी जो माता जी हैं उनको रसोई संभालनी पड़ती थी, दुनिया भर के मेहमान होते थे घर में, तो सबको संभालना पड़ता था। और मेरे ख्याल से मैं शायद 5 या 6 महीने का रहा हूँगा तो एक छोटा रेडियो था, वो मेरे बगल में वो चला दिया करती थी और मैं वो रेडियो सुन के मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। तो मेरे ख्याल से रेडियो मेरे जीवन में पहले आया, फिर कॉमिक्स आई मेरे जीवन में। कॉमिक्स इस वजह से आई कि माता जी को कॉमिक्स भी बहुत पसंद थी।
4: अच्छा।
3: हाँ, वो इंद्रजाल कॉमिक्स बहुत पढ़ा करती थी, फैंटम की बहुत बड़ी फैन थी। तो उनको फैंटम पसंद था, उनके पास अपना कलेक्शन था, तो ये कलेक्शन के साथ ही मैं बड़ा हुआ। और इसके साथ घर में ननिहाल में बहुत कॉमिक्स थी। तो जब भी हम ननिहाल जाते थे, मैं जो भी 2-3 साल का रहा हूँगा, तो कॉमिक्स के जो किरदार थे वो मुझे तब से पता थे। चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी, फैंटम जिसको वेताल बोलते थे उस समय में,
4: बिल्कुल,
3: मैंड्रेक, फ्लैश गॉर्डन, बहादुर, तो इन सबके साथ मैं बड़ा हुआ एक तरीके से कह सकते हैं।
4: बिल्कुल। ये वो दौर था जब कॉमिक्स किराए पर भी मिल जाती थी और दोस्तों से अदला बदली करके पढ़ी जा सकती थी।
3: वो दौर मेरे जीवन में थोड़ा बाद में आया क्योंकि मेरे ननिहाल में इतनी किताबें थी कि मुझे किराए पे
4: बाहर से लेने जाने की जरूरत ही नहीं थी।
3: क्योंकि उस समय में बाल पत्रिकाएं भी बहुत होती थी, पराग, नंदन, चंदा मामा, गुड़िया,
4: बाल भारती,
3: राजा भैया, कई किताबें,
4: ढेर।
3: और पराग तो मैं अभी भी कहता हूँ कि पराग का बंद होना मेरे ख्याल से हमारी जो पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। पराग, धर्मयुग, जो वो सारी किताबें आ रही थी, तो ये सारी किताबें जो साप्ताहिक थी वो हफ्ते के हफ्ते ननिहाल आती थी। इंद्रजाल कॉमिक्स मेरे ख्याल से पाक्षिक और पाक्षिक के बाद साप्ताहिक हो गई थी, मासिक किताबें आ रही थी, तो किताबों का एक पूरा पुलंदा था वहां पे। जब भी जाओ तो सब मिल जाता था। और मेरे नाना जी डॉक्टर थे, मगर वहां एक आजादी थी उस घर में, तो ऐसा नहीं कि फिल्मी पत्रिकाओं को नीची निगाह से देखा जाए। तो वहां मायापुरी भी थी, वहां माधुरी भी थी, वहां फिल्मफेयर भी थी, हर तरह की किताबें थी और उन किताबों के बीच मेरा बचपन गुजरा। तो जो मुझे पसंद आती थी मैं वहां से उठा के ले आता था मेरे पास, और मैंने पढ़ना, सीखना और

0: कॉमिक्स पढ़ना सीखना दोनों मेरा एक साथ हो रहा था, तो शिक्षा और कॉमिक्स दोनों साथ में चल रही थी।
1: बिल्कुल। तो ये जो कॉमिक्स का चस्का है, इसका सबसे मजेदार बात यह है कि घर पर कोई विरोध नहीं था।
0: पूरा ये नहीं कहूंगा कि पूरा विरोध नहीं था क्योंकि थोड़ा होता है ना कि आप जुनूनी पाठक बन जाते हैं एक टाइम, फिर आप खाना पीना छोड़ के पढ़ने लगते हैं, सुबह छोड़ के पढ़ने लगते हैं,
1: कोर्स की किताब के अंदर,
0: कॉमिक्स रख के पढ़ने लगते हैं। तो ये तो हुआ और ये इस हद तक चला गया वो जुनून के, फिर तो घर पे थोड़ा विरोध होना स्वाभाविक था क्योंकि फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं लगे हैं। तो ये एक मैं कहूंगा कि बाकी दुनिया में अगर ये 100% हो रहा था तो मेरे साथ 30% हो रहा था, मगर हो रहा था
1: जरूरी तौर,
0: हाँ,
1: पर
0: हाँ, जरूरी तौर पे हो रहा था कि और कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉमिक्स पढ़ रहा है पूरे समय। तो ये हुआ, मगर बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा विरोध नहीं था।
1: पापा जी को थोड़ा बहुत था। बच्चे जो कुछ पढ़ रहे थे आप उससे कुछ अलग पढ़ रहे थे या आप भी सेम चीजें पढ़ रहे थे?
0: नहीं, मैं मेरे ख्याल से उनसे काफी अलग चीजें पढ़ रहा था क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के पाठक हैं वो आमतौर पे मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स वाले पाठक रहे हैं। मैं क्योंकि वो चीजें भी पढ़ रहा था जो मेरे मामा या मौसियां पढ़ रहे थे, मेरे से एक पीढ़ी ऊपर, तो उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स भी थी,
1: बिल्कुल,
0: उसमें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया थी, धर्मयुग में बच्चों का कोना था, कार्टून कोना डब्बू जी था, जो मेरी जनरेशन के, मेरी पीढ़ी के लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन मैं वो पढ़ रहा था। इसके अलावा भी क्योंकि मैं भिलाई में पला बढ़ा, औद्योगिक नगर है छत्तीसगढ़ का, पहले वो मध्य प्रदेश था, तो भिलाई में इंडो रशिया कोलैबोरेशन में ये स्टील प्लांट बना था, तो रूस और भारत के लोग वहां रहते थे शहर में,
1: बिल्कुल,
0: तो हमें बहुत सारी इंटरनेशनल कॉमिक्स भी मिल जाती थी, तो मार्वल, डीसी, एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स, टिनटिन, ये भी उपलब्ध थी हमें पढ़ने के लिए। बहुत लोग नहीं पढ़ते थे लेकिन मुझे इनका भी चस्का उसी समय से लग गया था।
1: बल्कि रशियन किताबें भी जो लोग कथाएं में हिंदी अनुवाद आया करते थे वो भी मौजूद रहे होंगे।
0: हाँ, यूक्रेनी लोक कथाएं,
1: बिल्कुल,
0: रूसी लोक कथाएं, गोरकी की कहानियां,
1: बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन,
0: मुल्ला नसरुद्दीन था एक बहुत अच्छा,
1: राधुका प्रकाशन,
0: हाँ, राधुका प्रकाशन, और उसमें कैरेक्टर होता था नाजानू, हाँ, नाजानू की कहानियां, और एक मैगजीन आती थी मीशा, तो मीशा में एक कैरेक्टर होता था, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, वो दलिया खाता था और उसको ताकत आ जाती थी तो ऑलमोस्ट पोपाई के जैसा था, मगर काफी मजेदार कैरेक्टर्स थे ये, तो इनकी भी उपलब्धता थी और उस समय तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में थी।
1: क्या बात
0: तो
1: है?
0: मतलब मीशा तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है, मेरे
1: सबने पढ़ी, बिल्कुल। तो इस दौर को याद करते हुए एक गाना सुनते हैं फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: तो कौन सा गाना होना चाहिए?
0: बचपन के दिन भी क्या दिन थे।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: बचपन के दिनों की सैर कर रहे हैं और इतनी तरह की कॉमिक्स की हम बात करें, जब ये कॉमिक्स आप पढ़ते थे आलोक, तो कल्पनाओं की वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे और क्या अपने लिए कुछ सोचते थे इन कॉमिक्स से जुड़ा हुआ?
1: तो इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे घर में पहला टीवी जब आया तो मैं 26 साल का था।
0: मतलब बहुत ही लेट आया।
1: बहुत ही लेट आया। तो ऐसा नहीं है कि टीवी पता नहीं था, टीवी पड़ोस में था, हम देख लेते थे वहां जाके। तो मेरे ख्याल से 1985 का साल था, टीवी पे संडे की फिल्म आ रही थी, कब क्यों और कहां। उसमें प्राण साहब का एक खतरनाक रोल था जिसमें वो मुर्दे का रोल करते हैं, उनकी आंखें बल्ज होके बाहर निकली हुई। तो वो देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया।
0: अरे
1: हाँ, उसके बाद प्राण नाम से मुझे दहशत हो गई।
0: लेकिन ये प्राण नाम दो जगह चलता था।
1: हाँ, ये मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर मुझे मेरे मन से प्राण नाम की दहशत हटानी है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चाचा चौधरी है, मेरा सबसे प्रिय किरदार, उसके सर्जक भी प्राण है, उनका नाम भी प्राण है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो PRA-01 लिखा होता है कॉमिक्स के ऊपर में, वो प्राण है।
0: हाँ।
1: और जो चाचा चौधरी बनाते हैं उनका नाम भी प्राण है। मैं 4 या 5 साल का रहूंगा उस समय, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक खांचा बन गया कि वो जो प्राण है फिल्मों में वही चाचा चौधरी भी बनाते हैं।
0: वाह,
1: बहुत लंबे समय तक, करीब 1-1.5 साल तक। और बाद में वो फोटो भी, जो प्राण की फोटो आती थी कॉमिक्स के पीछे, प्राण का जन्म कसूर ब्रैकेट में अब पाकिस्तान में हाँ, में हुआ था। तो वो जो पूरा, तो मैं उस तरह से कॉमिक्स पढ़ता था, मैं वहां से पढ़ता था, प्रकाशक मुद्रक तक पढ़ता था मैं कॉमिक्स।
0: बिल्कुल।
1: तो वो उनका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था 85 के आसपास, वो थोड़ा सा प्राण, जो अभिनेता प्राण है, उनके जैसा ही दिखता था वो।
0: नहीं,
1: मुझे ऐसा लगता था।
0: ये तो जैसा आप देख रहे हो वैसा,
1: जैसा वो, हाँ, जैसी जिसकी नजर। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कार्टूनिंग के कोर्सेज किए थे, वो कार्टून बनाते थे।
0: ओके।
1: हाँ, पारिवारिक व्यापार के क्षेत्र में वो आ गए थे, लेकिन उनका दिल जो था वो कार्टूनिंग में था। तो मुझे ये जरूर पता था कि ये कार्टून्स हैं और इनको कोई बनाता है। और ये जो प्राण वाली कहानी हुई, उसके बाद एक आदत बैठ गई कि अगर मैं कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं जानना चाहता था इसको लिखा किसने है, इसको बनाया किसने है। कल्पना की उड़ान जरूर थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इन्हें कोई बनाते हैं, लोग बनाते हैं।
0: तो उस दौर ये कौन कौन से नामों से आप परिचित हुए?
1: अब बहुत सारे असल में। तो जैसे मुझे 5-6 साल की उम्र से पता था ली फॉक फैंटम लिखते हैं और साइबरी उसको ड्रॉ करते हैं, हालांकि उनसे पहले विल्सन मैकॉय और बहुत सारे लोग थे।
0: पहले ही बॉक्स में नाम आता था।
1: हाँ, पहले बॉक्स में नाम आता था ली फॉक साइबरी करके, फॉक एंड बेरी लिखा होता था। तो मुझे पता था ये फैंटम भी लिखते हैं, ये मैंड्रेक भी लिखते हैं। फ्लैश गॉर्डन जो है वो एलेक्स रेमंड बनाते हैं। रिप कर्बी बहुत सारा एलेक्स रेमंड बनाते हैं। बहादुर जो है वो आबिल सुरती लिखते हैं, गोविंद ब्राह्मणिया ड्रॉ करते हैं। ये उस 5-6 साल की उम्र में मैंने ये नाम रट लिए थे, क्योंकि मेरे लिए ये भी जरूरी था, चाहे जितनी भी किताबें उस समय आ रही हों, एक सीमा रहती थी इन किताबों की ना, आपको 3 मिलेगी 4 मिलेगी 5 मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनका काम आपको बहुत पसंद है। तो बजाय एक किरदार को फॉलो करने के, आप उनके क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं कि उनके जो सर्जक हैं, कि अगर मुझे आबिद सुरती का काम पसंद है तो मैं आबिद सुरती का और काम ढूंढूंगा, अगर मुझे प्राण का काम पसंद है तो फिर शायद मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी खत्म करने के बाद जाब और दाबू भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक क्वालिटी आ रही है उनके काम की। तो ये उस समय की ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से, जो अभी तक है। मैं अभी भी कोई कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, मैं जनरली क्रिएटर फॉलो करता हूं।
0: बहुत बढ़िया बात है। तो कॉमिक्स की ये दुनिया आपको क्या करियर की किसी दुनिया की तरफ ले जा रही थी, या तब कुछ और सोच रखा था जब मम्मी पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है?
1: नहीं, अच्छी चीज ये थी कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया बड़े होके क्या बनना है, तो वो प्रेशर था नहीं सर पे। दूसरी चीज ये थी कि मैं कार्टून

0: बनाने लग गया था बहुत बहुत यंग एज में, 4-5 साल का रहूंगा, तो मैंने जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत महान ड्राइंग्स नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मुझे शेहाब की ड्राइंग्स बहुत पसंद आती थी। शेहाब साहब छोटू लंबू किया करते थे और मुझे लगता है कि वो अपने समय की नहीं अभी के भी सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में एक हैं। तो शेहाब साहब की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी, उनको मैं काफी कॉपी करता था। कार्टूनिस्ट प्राण को कॉपी करना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत कम लाइंस में वो बहुत सारी चीजें निकाल लेते थे। तो मुझे ये था कि मैं कार्टून्स बनाना चाहता हूं, लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई क्लैरिटी ऐसी थी नहीं मेरे मन में। कार्टून मैं स्वांता सुखाए अपने लिए बना रहा था। एक और चीज ये थी कि पिताजी का काम ऐसा था कि हमारे ट्रांसफर्स होते थे बहुत, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हर बार नई स्कूल होगी, नई क्लासेस होंगी, नए सहपाठी होंगे, अब फिर से नए दोस्त बनाने हैं, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, हर 2-3 साल में स्कूल बदल रहा है, फिर से नए दोस्त बनाने हैं। तो अपने आप में वो काफी प्रेशर वाला काम होता है उस उम्र में। और उस उम्र में अगर मैं अब वापस पलट के देखता हूं, तो ये जो कॉमिक्स के किरदार थे ये मेरे परमानेंट दोस्त थे, ये शहर दर शहर मेरे साथ चलते आ रहे थे। तो इनके साथ मेरा जो जुड़ाव था वो किसी असल दोस्त से ज्यादा हो चुका था जब तक मैं अपने टीनेज में या किशोर वय जिसको बोलते हैं वहां पहुंचा। तो ये एक चीज थी जिससे मेरा जो अटैचमेंट बोलते हैं वो कॉमिक से बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का रहूंगा तब मुझे लगा कि मैं कार्टून्स बना सकता हूं और मैं ये भेज सकता हूं छपने के लिए। कॉन्फिडेंस रैंडमली आ गया था और घर में प्रेशर था पढ़ाई को लेकर और बाकी चीजों को लेकर भी, लेकिन ये मनाही नहीं थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बस उसका फायदा मिला, मैंने कार्टून्स बना के भेजना शुरू किया, संपादक के खेत सहित सारे कार्टून्स वापस आने शुरू हुए। लिफाफा भेजता था, वो तो भेजना पड़ता था, जवाबी लिफाफा टिकट लगा हुआ, वो तो नियम ही था
1: जी।
0: तो शुरू में कार्टून्स नहीं बनाए थे, शुरू में मैंने सोचा कि मैं बहुत आलेख वगैरह लिखूंगा, मतलब वो उस उम्र में ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ, तो कुछ भी कर सकते हैं और वो रहना चाहिए। मुझे लगता है वो बाल सुलभ कॉन्फिडेंस सब में पूरी उम्र रहना चाहिए, ता उम्र रहना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है पहला जो मैंने लेख लिखा था वो था डोडो पर, और वो मैंने भेजा था सुमन सौरभ में, और अच्छा। सुमन सौरभ से वो रिजेक्ट होके आ गया था, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे संकोच शर्म नहीं आई थी। मैंने ठीक है दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ड्रॉइंग्स बेहतर करता हूं लिखने से। तो हमारे शहर में एक कार्टून मैगजीन निकला करती थी, अभी भी निकलती है, 30 साल से निकल रही है वो मैगजीन, कार्टून वॉच नाम है उसका। तो कार्टून वॉच मेरे हाथ लगी किसी के दोस्त के घर पे और मैंने उसमें कार्टून्स देखे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग तरीके का था, तो वो देख के लगा ये अगर ये छप रहे हैं तो मैं तो छप ही जाऊंगा। हाँ, और वो जो संपादक थे त्रिम्बक शर्मा, उनको मैं त्रिम्बक भैया बोलता हूँ अब, तो त्रिम्बक भैया असल में सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना निहायत ही घटिया कार्टून हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो छप जाते थे कार्टून। तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ, एंड बनाया मैंने कार्टून्स, 2-3 बनाए और दोनों तीनों छप गए पहली बार में। मतलब कार्टूनिंग में मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ, कार्टूनिंग में मुझे लगा कि यहाँ तो चंडीगढ़ गए पहले ही दिन, पहले ही कार्टून गए और 15 दिन में छपके आ गए, किताब आ गई घर पे, उस किताब को लेके मैं घूमता रहा कई महीनों तक, लेकिन हर महीने उसके बाद मैं नियम से कार्टून बनाता रहा। तो इस तरीके से कार्टूनिंग के करियर की शुरुआत हुई मेरी जब मैं शायद 13 या 14 साल का था।
1: और वो भी भिलाई में,
0: भिलाई में, तो उसके थोड़े से पैसे मिलते थे, 100 रुपए चाहे जितने भी कार्टून, तो ऐसा नहीं था कि पर कार्टून मिलेगा क्योंकि मैगजीन भी छोटी थी, तो 100 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, 100 रुपए में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे।
1: यस,
0: हाँ, तो और कॉमिक्स तो खरीद ही सकते थे, अब मतलब कॉमिक्स के लिए घर में बोलना या यहाँ वहां भागना पड़ना नहीं करना पड़ता था। मुझे याद है 56 रुपए का सेट आता था,
1: दो सेट में, और वो बड़ा महंगा लगता था,
0: 56 रुपए बहुत महंगा था, लेकिन मुझे 100 रुपए मिल रहा था महीने, तो मैं 2 सेट खरीद सकता था। तो इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की।
1: क्या बात है, लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से देने लगे।
0: मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही नहीं कि मैं किराए पे कॉमिक्स पढ़ूंगा, मुझे मेरी कॉमिक्स मेरे पास चाहिए थी।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए मैं मतलब एक समय था 2-3 साल जब किराए से पढ़ी किताबें, मगर मुझे लगता था इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो मेरी होनी चाहिए।
1: अपनी बड़ी होनी चाहिए।
0: एक दशमेश लाइब्रेरी करके हमारे शहर में लाइब्रेरी हुआ करती थी भिलाई में, गोल मार्केट में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और मेरा लाइफ का

0: मेरे मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो चाहिए, इससे छोटी नहीं चलेगी। तो फिर मैंने मतलब दशमेश तो बंद हो गई और हमने अपनी लाइब्रेरी शुरू की और बहुत अच्छी तरह से रन की। मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं अंचल, हमारे अंचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी जो हम लोग रन कर रहे थे।
1: कितने साल चलाई?
0: वो हमने चलाई करीब 4 साल।
1: अच्छा, और किताबें सब वापस आईं सही सलामत?
0: हाँ, मतलब देखिए जब ये व्यवसाय बन जाता है ना तो थोड़ा नफा नुकसान तो होता है। तो नफा नुकसान होता था, लोग चुरा के ले जाते थे, फिर
1: यस,
0: हमको ढूंढने जाते थे उनके मोहल्ले में, तो वो एक अपने आप में एक
1: अलग कहानी
0: अलग
1: है।
0: कहानियां हैं। वो एक अलग, मेरे ख्याल से वो हमारा मालगुड़ी डेज है।
1: बहुत सही बात है, बहुत मजेदार बात। लेकिन क्या कार्टूनिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई या ऐसा कोई मौका आया?
0: अब लगता है कि ले लेनी चाहिए थी, और लेकिन तब कॉन्फिडेंस उस जगह पे था कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा था, जो बना रहे हैं सब छप रहा है। और फिर उन मैगजीन्स में भी छपने लगा जो मैगजीन्स में पढ़ रहा था, तो मेरा काम चंपक में आने लग गया, बाल भारती में आने लग गया, बाल हंस में आने लग गया। उस समय की करीब करीब हर मैगजीन में काम आने लग गया था और पैसे भी मिलते थे उसके।
1: तब तो
0: तो
1: अच्छे
0: मजे की बात ये
1: पैसे।
0: थी कि पैसे भी आ रहे हैं और वो ठीक ठाक पैसे थे। मतलब उस समय में एक 15-16 साल का लड़का अगर 500 रुपए भी महीने के बना ले रहा है
1: बहुत ज्यादा
0: तो
1: रकम थी
0: बहुत
1: ये तो।
0: बड़ी रकम हो जाती है वो। तो वो पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक लाइब्रेरी भी चल रही ठीक ठाक, और
1: हाँ,
0: आप कार्टून्स भी बना रहे हैं, तो फिर
1: तो
0: पढ़ाई कौन
1: सेट था
0: करेगा,
1: मामला।
0: पढ़ाई कौन करेगा।
1: अच्छा, फिर?
0: फिर मैं 9वीं में फेल हो गया।
1: अरे बाप,
0: हाँ,
1: मतलब ये तो बम गिर गया।
0: तबाह हो गया मैं।
1: अच्छा,
0: तो 9वीं में मैं फेल हो गया, मुझे समझ
1: इसकी
0: नहीं
1: आगे की
0: आया।
1: कहानी सुनेंगे आप, ब्रेक लगाते हैं, एक गाना सुनते हैं, कहां तक ये मन को
0: सोचना
1: अंधेरे
0: पड़ेगा,
1: चलेंगे
0: चलिए
1: कहां।

0: नवी में आप फेल हो गए?
1: नवी में मैं फेल हो गया।
0: ये इसकी उम्मीद थी कि नहीं थी?
1: उम्मीद तो कोई नहीं रखता है।
0: हाँ, कि फेल हो जाऊंगा।
1: फेल हो जाऊंगा
0: मतलब पढ़े नहीं थे कुछ?
1: नहीं, मुझे समझ में नहीं आया पूरा नवी कैसे गया, मुझे नहीं पता है।
0: वैसे नवी होता भी फिसलदार मैदान ही है।
1: नवी को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा दसवीं में अच्छे स्कोर करे और स्कूल का एक स्कोर बना रहे, तो स्कूल का स्कोर बनाने के लिए मुझे लगता है नवी को टफ बना दिया।
0: नहीं, और ये समझाना कि भाई मिडिल स्कूल पीछे छूट गया,
1: छूट गया,
0: होश में आ जाओ।
1: नहीं, वो तो आप हाफ पेंट से फुल पेंट पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मिडिल स्कूल तक हाफ पेंट था, फिर फुल पेंट आया, तो फुल पेंट आई मतलब आप जिम्मेदार हो जाओ। मैं नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत थी ना, मतलब आप एक तरफ लाइब्रेरी भी चल रही है, आप कार्टून्स भी बना रहे हो, स्कूल में टीचर्स भी आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि इसके तो कार्टून्स छप रहे हैं। तब तक मेरे लेख वगैरह भी छपने लग गए थे। तो मतलब क्लास नाइन्थ का एक लड़का है जिसका हर महीने
0: कहीं ना
1: कहीं वो छप रहा है, तो वो अपने आप में एक अंदर से तो अपने आप में एक रॉकस्टार वाली फीलिंग रहती है कि हम ही हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: भले बाकी सारी चीजों में आप शून्य हो, लेकिन एक वो जगह है जहां आमतौर पर कोई पहुंचता नहीं है, वहां जाके आपने अपना आसन जमा रखा है। तो डांट पड़ती थी स्कूल में कि ये सब करते रहोगे, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये है वो है। मुझे लगा था निकल जाएगा, नहीं निकला। अब नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात मैं बताऊंगा आपको कि जो नवी में मैं फेल हुआ, उस दिन तो मौत थी मेरी। मतलब लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है वो। क्योंकि आपके सारे दोस्त आपसे एक साल आगे चले गए, अब आपके साथ बच्चे पढ़ेंगे। उस समय में तो ये लगता है एक साल छोटा तो बच्चा ही है, अभी तो 5 साल छोटे भी बराबर के लगते हैं। लेकिन वो था, मोहल्ले वालों को आप क्या जवाब देंगे? सबको पता है आप नाइन्थ में थे, पूरे मोहल्ले को अगर पता चला कि आप दसवीं नहीं गए, आप वापस नाइन्थ रिपीट कर रहे हो, तो क्या होगा? एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार हो जाता है जो बच्चा फेल होता है उसका। उसमें बच्चे की गलती है नहीं है,
0: हमारे यहाँ वो तो सोचा ही नहीं जाता। वो जो एक्सेप्टेंस वाली बात है
1: ना, तो स्टिग्मा आ जाता है वो। तो स्टिग्मा तो आ गया था, और आप अपनी नजरों में तो गिर ही चुके हो। तो एक आप अपनी नजरों में गिरे हो, एक आप अपने पेरेंट्स की नजर में गिरे हो, फिर छोटे भाई बहन है उनकी नजरों में भी गिरे हो, क्योंकि अभी तक आप रोल मॉडल थे और आपने मतलब काफी कुछ अच्छा किया हुआ है, अभी तक आप उनकी नजर में भी गिर गए हैं। मोहल्ले वालों को किसको सच बताएं, किसको ना बताएं, पता तो सबको चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं। अब उनसे झूठ बोलेंगे आप या सच बोलेंगे, आप फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं? फिर आपके जो दोस्त हैं वो एक क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं,
0: नजरें कैसे मिलाएंगे?
1: हाँ। उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें।
0: हाँ।
1: तो ये जो पूरा एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है, उससे मैं गुजरा पूरे एक साल। देखिए, बाकी लोग तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आप वो अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं वो फेलियर को, और वो फेलियर ताजा ही।
0: घर वालों का एटीट्यूड क्या था?
1: कुछ खास ऐसा, मतलब पिताजी ने बोला कि अब चलो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा शुरू तुमको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा कुछ होने वाला है। तो मैंने उनके साथ काम करना भी शुरू किया।
0: क्या काम था वो?
1: मेरे फादर चॉकलेट्स वगैरह ये करते थे, होलसेल में चॉकलेट्स किराने दुकान वालों को सप्लाई करते थे। तो फिर उन्होंने पूरा भिलाई शहर का जो सप्लाई है मुझे दे दिया। भिलाई शहर मतलब ऐसा बहुत शहर नहीं, कुछ 25-30 दुकानें जो हम रेगुलरली जहां सामान सप्लाई किया करते थे, तो वो मुझे दे दिया उन्होंने कि ये तुम करोगे अब। तो मैंने वो शुरू किया। लाइब्रेरी फिर भी चल रही थी, कार्टून फिर भी बन रहे थे।
0: अच्छा, हाँ, ये सब चल रहा था।
1: और ये सब चल रहा था, उसके साथ में मैंने फादर को हेल्प करना भी शुरू किया। वो भी मेरे ख्याल से 48 साल के तो हो गए थे तब तक मेरे फादर। तो वो शुरू किया मैंने, मुझे ये लगा कि मुझे ये भी समझ में आया कि बिजनेस कैसे होता है। मैं आमतौर पर लोगों से बात करने में कतराता था, तो मेरी जो शर्म थी जो मोहल्ले में और लोगों के बीच थी, वो खत्म होने लगी, वो झिझक हटने लगी मेरी। मुझे पता नहीं अगर इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट आया मेरे अंदर उससे। बहुत बाद में, करीब मेरे ख्याल से उसके 30 साल बाद, मैंने एक शो लिखा, और उस शो को लिखते समय मैंने जो लीड कैरेक्टर है उसका, शो का, उसको क्लास 9th में फेल करवाया। इसलिए नहीं कि ये रेवेंज था, इसलिए कि मुझे बहुत मन था कि मैं दुनिया को बताऊं कि
0: फेल्योर
1: बच्चा फेल होता है
0: उस बच्चे तो के ऊपर
1: अपने अपने आप में वो एक मौत से गुजर रहा होता है।
0: Correct.
1: उसके ऊपर नई चीजें मत ला दो, क्योंकि वो खुद अपनी नजरों में गिरा हुआ है। तो उसकी जितनी

0: हेल्प कर सको कर दो, हेल्प नहीं कर सकते तो नया गड्ढा मत खोदो उसके। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए।
1: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी ने। लिखते हैं,
0: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
1: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओ, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता
0: जी।
1: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
0: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया, कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
0: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
0: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
0: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए, कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
1: विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
0: बिल्कुल सही कहा जी जी। अब तो लोग क्या, विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
1: जी, बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देखकर ही उठते हैं।
0: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
1: जी, वो तो है,
0: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है
0: जी,
1: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे
0: जी।
1: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
0: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा एक महीने बाद है, विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है, मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए जी जी क्या होगा।
1: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
0: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे, पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं
1: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
0: देखते देखते एक घंटा क्या, कई घंटे गायब हो गए
1: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
0: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
1: और नोटिफिकेशन भी बंद।
0: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा।
1: क्या बोलेगा?
0: मुझे भी देख लो।
1: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ

0: तो विमलेश जी, इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
1: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
0: वो कैसे?
1: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें। वहां आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं। इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
0: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
1: जी,
0: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
1: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
0: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
1: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
0: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं, और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
1: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
0: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
1: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ, मिलेंगे फिर एक
1: नई जानकारी के साथ।
0: श्रोताओ, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCRT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोता, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है परीक्षा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
3: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
4: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
3: जी महाराज।
5: महाराज,
4: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
5: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
4: दीवान साहब।
5: महाराज,
4: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।

0: दीजिए महाराज, कैसी शर्त?
1: शर्त ये है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
0: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
2: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत, अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप, श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आँखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
3: ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो।
4: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
3: लगता है खुद ही गोल करके मानेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे।
2: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
5: आज खेल में बड़ा मजा,
6: बहुत मजा आ गया। क्या गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
7: हाँ, पर गोल हो गया किसी का,
2: दिल खुश हो गया। कि तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी, उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
8: फंस गई।
9: ए, इधर क्या देख रहे हो?
0: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
8: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
9: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
10: चलो
0: भाई, लेकिन
8: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
2: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
11: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस
10: थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
0: ठीक है,
10: कोशिश करते हैं।
0: हाँ,
2: और हुआ भी यही। युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
0: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
12: जी बाबा।
0: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
12: तो क्या इनाम देते हो?
0: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
2: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है। राज दरबार सजाया गया।
12: भाई पूरा एक महीना हो गया है। आज फैसला हो।
13: तुम्हें क्या लगता है?
12: महाराज आ रहे
13: हैं। अरे अरे, सुजान सिंह जी भी आ गए।
2: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
0: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ साह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ।
14: बधाई हो, बधाई हो पंडित जी। बहुत बहुत बहुत।
0: जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
12: सही बात है।
0: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
12: बिल्कुल सही कहा,
0: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
2: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
12: अच्छा इंसान है, हमेशा सही काम करेगा।
2: बिल्कुल। और देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ साह को बधाई दे रहे थे।
14: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित जी। बहुत खूब चुनाव किया।
9: महाराज की
15: जय हो।
9: महाराज की
15: जय हो।
9: महाराज की
15: जय हो।
9: महाराज की
15: जय हो।
2: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
16: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
17: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
18: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।

घर जाता, सारी खबरें लेकर आता, काम काम कर गाना गाता, सबके मन को

0: शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
0: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
1: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो।
0: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था, उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूँ। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते। हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
1: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है। वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं। तुम हमारी चिंता न करो।
0: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा, जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए?
2: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ।

0: हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो। साहस और एकता से बड़ी से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो।
0: हाँ ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
2: कबूतरों ने ऐसा ही किया, सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
1: चूहे भाई, चूहे भाई।
3: क्या?
1: तुम्हारा मित्र कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस गया है।
3: कहाँ है मेरा मित्र? मुझे अभी उसके पास ले चलो।
1: चूहे भाई, वो देखो, वहाँ सामने वो एक जाल में फंसा हुआ है। उसके साथी कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
3: तो चलो कौवे भाई, उनके पास चलें। मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
1: हाँ हाँ, चलो
3: चलो चलो कौवे भाई,
1: चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो।
2: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुँचे।
0: चूहे भाई, जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो। शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
3: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
0: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
2: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया, सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया। फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया, कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुबह कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के सफल, सुचारू और गरिमापूर्ण संचालन को लेकर

0: आज विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बैठक में सदन की कार्यवाही लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप संचालित करने पर चर्चा हुई तथा सभी दलों से सकारात्मक सहयोग का आग्रह किया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में जेपीएससी में कथित अनियमितता को लेकर छात्र संगठनों ने आज प्रदर्शन किया। राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 12वें दिन भी विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी रहा। आंदोलन को धार देने के लिए कई अभ्यर्थी और विद्यार्थी भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज लोकभवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। इस दौरान श्री सोरेन ने राज्यपाल को जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं तथा इसके विरोध में रांची में चल रहे छात्र आंदोलन से अवगत कराया। इस मौके पर श्री सोरेन ने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में आज मानव श्रृंखला बनाकर आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के तहत संघ के सभी सदस्य कल काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। संघ की मांगों में कैडर रिव्यू और प्रोन्नति का मुद्दा शामिल है। और हजारीबाग में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने 30 नए चार पहिया वाहन उपलब्ध कराए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि इन वाहनों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग मिलेगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म ये जवानी है दीवानी से, आवाजें अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की।

0: और भाई ये सुनते हैं सुखविंदर सिंह और दिव्य कुमार को, फिल्म का नाम है जीरो। लेकिन इस गीत से पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अदिति शर्मा और जुनीता गांधी को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था टोटल धमाल। और इसी के साथ कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है 102.1 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बारी।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनहार सब ग्रामीण भाई बहन के प्रसाद के देने से जोहार और सब गोटे के कार्यक्रम में स्वागत हो ग्रामीण भाई बहन। आज देखा कि मौसम बहुत बढ़िया कर ले है, पानी झिमिर झिमिर पड़ रहा है और ऐसा में है जब पानी झिमिर झिमिर पड़ो है तो समझ लें उत्साह है से मन में है से उठो लागू है कि भाई आज पानी पड़ रहा है तो कल बढ़िया से खेत बाड़ी में लग जाबे ताकि है जो बचल खुचल है जो रोपनी है चाहे खेत तैयार करे के है वो सब है से काम पूरा हो जाते। तो एक ये हम इनके एक अवसर आ जाए है कि पानी जब पड़ो है तो हम इनके खेत में जो पानी रोके के देखबा के बहुत सा किसान भाई बहन से अपन कोड़ी कुदाल लेकर के सब चल जाती खेत बाड़ी में जहां पर ऐसे आर पागार में जनी से कहीं पर छू चूहा के छेद है या फिर ऐसे टूटल है मेढ़ तो ओकरा बनवे खातिर ऐसे चाहे सांझे भी है हरे एकदम ऐसे अंधेरे एकदम कूदो लागो थी। तो थोड़ा सा एकर में सावधानी बरतना है कि भाई पानी तो पड़ रहा है तो एकर तैयारी हम इनके पहले दिमाग में सोच लेवे चाहिए कि पानी अगर पड़ रहा है तो ओकर से पहले भी हम इनके आरी पगारी करे के समय मिलो है ताकि ऐसे हम इन्हें ऐसे अंधेरे पर आते या फिर ऐसे दिन सगरे ऐसे हम इन्हें ऐसे आरी पगार के ठीक कर दिए ताकि ऐसे पानी अगर पड़े रातों में पड़े तो वो पानी ऐसे इनके खेत में बनल रहे और हम इनके खेत के लाभ पहुँचावे। दूसर बात ये भी करना है कि भाई बरसाती खेती है हम इनके ये जब खेत बाड़ी में तो हर ऐसे बहुत तरह के सब्जी लगल है बैंगन है मरचाय है बिलौती है कोबी है खीरा है कद्दू है बोदी है भिंडी है तो ये सब के लेल है से हम इनके कम से कम जहाँ पर बारी झारी लगवो ही या फिर है टाँड टुकुर में जहाँ पर हम इन खेती बाड़ी कर लीए आपन खाए खातिर तो बारी झारी तक ले सीमित रहो है किसान लेकिन जहाँ पर व्यवसायिक तौर पर जब खेती बाड़ी करेला शुरू कर दे थी तो वैसन में देखबा कि बड़ा बड़ा टाँड बड़ा बड़ा जगह जे लीज के जमीन पर खेती कर लेते हुआ पर ऐसे पूरा व्यवस्था के साथ ऐसे कि बरसात में खेती करो थी। तो बरसात में खेती करे के पीछे कारण है कि जितना ऐसे नगदी आमदनी है से किसान भाई के मिलते रहे और बढ़िया मात्रा मिले। कहे कि बरसात के समय में सब्जी हर जगह ना हुए और बरसात में उगल सब्जी के दाम ज्यादा मिलो है ये खतील है ओकर पर ध्यान देना है कि बरसात के समय में अगर हम इन सब्जी लगा रहिए तो सबसे पहला चीज है कि ओकर में पानी जमे के ओकर में बिल्कुल ना देवे के ओकर निकास के बहुत बढ़िया रास्ता अगर बना के रखना है ताकि ऐसे ओकर जब पानी के निकास ओकर में हो तो समझ ला कि एक तरह से है से पैदावार बढ़िया हो तो ओकर में पौधा के सड़े गले के तोरा है से फल के खराब होए के शिकायत है से बिल्कुल ना रह तो ई खतील है कि हम इनके पानी निकास के है से व्यवस्था बढ़िया रखना है और दवाई बीरो के है से देखते रहना है कि जैसे कीड़ा लग रहा है या बीमारी लग रहा है तो दवाई बीरो से छिड़काव करना है खास करके ऐसा मौसम में जखनी पानी नहीं पड़ रहा है बढ़िया है ऐसे थोड़ा सा रुख सुख कर ले है वैसन में दवाई देवे से हम इनके पौधा के ऐसे फायदा पहुंचते कीड़ा मकोड़ा ऐसे नष्ट होते नहीं तो का होते कि देखबा कि बदरी लड़कल हो वैसन में छिड़काव करवा तो वैसन में तो हर से पानी में धोवा के दवाई भी रोह से चल जाते कहीं यार सारा एकदम है ऐसे पैसा नुकसानी हो जाते तो ऐसन में है कि हम इनके देख ऐसे तनि समझ करके ऐसे कीटनाशक के ऐसे छिड़काव करना है और बढ़िया काम ये कर सका है कि अपन जैविक कीटनाशक के ज्यादा से ज्यादा तो प्रयोग कर सका है भाई कि नीम के तेल के जे ओकर छिड़काव अगर करल जाए हमरिन के ऐसे सब्जी वाला खेत में बारी में तो वो ज्यादा कारगर हो है। कहे कि एगो सबसे पहला चीज हो कि जहाँ पर है से बढ़िया ताजा ताजा पत्ता निकलता तो वहाँ वो पत्ता के खाए वाला कीट भी पनप जाए तो वैसन में है कि अगर नीम के है से ओकर में है से तेल के छिड़काव करल जाए तो ओकर में पूरा तरह से एक परत के रूप में छा जेते और वैसन में है कि जे कीट जे है ओकरा है से वो खाना है से बिल्कुल पसंद ना आते और वो है से खायल वो चीज बंद कर देते और जब वो खायल बंद कर देते एक तरह से समझ लिया कि भूखे प्यासे वहां से भाग भी सको है या फिर वो नष्ट हो सको है। तो एक चीज हो कि नीम के जो जैविक जो कीटनाशक है ओकरा है से किसान भाई बहन ज्यादा से ज्यादा उपयोग करती ओकरा ज्यादा है से किसान भाई बहन के फायदा मिलता है। कहे कि जैविक कीटनाशक के जो है से दाम है से कम लगो है और घर दुरा में ही आराम से बन भी जाए।

जैविक कीटनाशक बनवे के लिए बहुत ज्यादा की जरूरत ना है। खैनी पानी यानी कि खैनी के सड़ा करके है जे डंटियर हो ओकरा सड़ा करके बना सके, थेथर के पत्ते भे गेले, रसुन के जे है से पूरा डंटिया ओकरा है से ओकर में सड़ा करके, और जे जानवर सब जे कि पत्ते ना खेती ओकरा ऐसे पूरा ऐसे गौमूत्र में ओकरा गाय के है से जे पेशाब रहो ओकरा में से रख करके कुछ दिन सड़ा देवल जाए और ओकर बाद ओकर छिड़काव करल जाए तो एक तरह से कीटनाशक ओकरा में तैयार हो जाए, कारगर कीटनाशक। और वो कीटनाशक है से हम इनके पौधा के लिए है से बहुत फायदेमंद रहो है और कीट सब के लिए भी ज्यादा वो हार्ड भी ना रहे। हम इनके फल जो खाइए ओकर कभी कभार देखो कि बारी झारी में गलथू एक तोड़ल थू और खा लगल थू तो ओकरो ले से बहुत ज्यादा नुकसानी ना हो तो, लेकिन कीट सब ओकर से भाग जेतु और ई है उसे तुहरा है से फ्री फ्री में तुहरा घर में कीटनाशक तैयार हो जाओ। तो किसान भाई बहन जैविक कीटनाशक के तरफ ज्यादा ध्यान देती और ओकर अलावे की देखबा की एक चीज आर है कि हम इनके बारी में जैविक खाद के भी प्रयोग हुआ है, गोबर के प्रयोग हुआ है। तो जब जैविक खाद और गोबर के हम इन प्रयोग कर रही है तो ओकर फायदा देखल जाए बहुत लंबा समय तक। सबसे बड़ा चीज है कि अगर तू रासायनिक खाद के इस्तेमाल कर रहा है तो माटी हार्ड हो रहा हो, हम इनके है से पैर के लिए हाथ के लिए यानी कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए है से बिल्कुल वो है से नुकसानदेह है। दूसर बात हो जाए कि हम इनके माटी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे है से बिल्कुल कम हो जाए। तो रासायनिक है से खाद के इस्तेमाल है से कम करे खातिर हम इनके जैविक खाद के ज्यादा से ज्यादा अपनावे पड़ते और गोबर खाद के प्रयोग ऐसे ज्यादा से ज्यादा जैसे हम इन परंपरागत ऐसे रूप से करते आ रहे लिए आज भी ऐसे बढ़ चढ़ के गोबर खाद के इस्तेमाल एक खेत में करे पड़ते। किसान भाई बहन कर भी है थी लेकिन एक ऐसे देख रहा थी कि जल्दीबाजी में ऐसे गोबर खाद के प्रयोग कम और जल्दीबाजी में ऐसे यूरिया हो गए DAP ऐसे ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करो थी जेकर से ऐसे इनके खर्चा के भार ऐसे पूरा पॉकेट पर ज्यादा पड़ जाए तो आमदनी पर भी प्रभाव पड़ो है एकर। तो ई खातिर है कि आमदनी हम इनके बढ़िया रहे और माटी के स्वास्थ्य बढ़िया रहे, पैदावार बढ़िया हुए लंबा समय तक, तो ऊ के लेल हम इनके जैविक खाद और गोबर खाद के इस्तेमाल पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देवे पड़ते और ओकर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे पड़ते। ग्रामीण भाई बहन हम इन्हें अपन कार्यक्रम में आगे भी बढ़ल रहे, अब धैर्य से सुनवो ही एक जरूरी संदेश।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: तो देखा गीतनाद भी सुन लिए और जरूरी संदेश, ओकर बाद फिर अपन जानकारी देने आवो ये भाई कि अधर बरसात के समय है, तो बरसात में है से हम पशुधन के है से चारा पर विशेष ध्यान देना हो कि हरा चारा है से अगर 10 किलो तू दे है तो 10 किलो में 6 किलो हरा चारा रहे चाहिए और 4 किलो है से सूखा चारा अगर जानवर कर देवल जाए तो एक संतुलित मात्रा बनो है। ओकर अलावे है से उ चारा में है से मिनरल मिक्सचर जो है से सब किसान भाई बहन जानो थी एक मात्रा में देना है ताकि है से पशुधन के है से ओकरा है से पूरा तरह से खनिज लवण ओकरा मिलते रहे ताकि ओकर हड्डी मजबूत रहे, स्वस्थ रहे शरीर और ताकत से भरपूर रहे, दूध देवे के क्षमता ओकर में ज्यादा से ज्यादा बनल रहे। तो ई खातिर है से ओकन के मिनरल मिक्सन देना जरूरी हो ताकि है से संतुलित भोजन से बीमारी से लड़े के क्षमता है से शरीर में बनल रहो है और सही ओकर है से बढ़वार हो है। तो एकर पर जरूर है अपन किसान भाई बहन जरूर ध्यान देती और हरा चारा अगर कहती कि पूरा है से 100% जानी के है दिन भर संगर चरा करके और जानवर के स्वस्थ रखिए तो ओकर में है से एक भारी चूक है, कहे कि अगर दिन भर है से जानवर के छोड़ दिया जाए तो हरा चारा है से वो है से बिना सोचले समझले जितना है से चरे के ताकत है जहां तक नजर रहते वो चरते रहतु और चरे के बाद ही हो तो कि ओखिन के डायरिया की शिकायत शुरू हो जातो। और हरा चारा में देखा कि नवा नवा है से कोपल फुटो है, नवा नवा पत्ता आओ है तो ओकर में है से कीड़ा मकोड़ा भी बहुत ज्यादा से पनपल रोती। ये खतिल है कि एक समय के अनुसार है सबके चौरक देवे के चाहिए। ओकर अलावे है से भोजन के व्यवस्था ओकरा है से सूखा और जे हरा है दोनों मिला करके मिनरल मिक्सर के साथ करे के चाहिए, एकर पर जरूर ध्यान रखती। और अब तनी चलो ये किसान भाई बहन से एक बात करे ले, किसान है थी राजेश प्रसाद जो बातचीत कर लेती बरसात के समय में बैगन मिर्चा टमाटर गोभी के खेती कर ले थी वो कैसे कर रहे थे उकर बारे में अपन अनुभव तो सुनल जाए ये जानकारी।
1: किसान भाइयों हम आज आए हुए हैं दारू प्रखंड में, दारू प्रखंड के दारू गांव में हम आए हुए हैं और हमारे सामने एक युवा किसान है, बहुत मेहनती है, जुझारू है, इनके खेत देखने से पता चल रहा है कि इन्हें खेती का काफी अनुभव है और बहुत ही सफलतापूर्वक ये खेती कर रहे हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इनसे इनका परिचय। जी आपका नाम?
2: मेरा नाम राजेश प्रसाद।
1: राजेश प्रसाद आप कितने दिनों से खेती कर रहे हैं?
2: 10 साल से।
1: 10 साल से आप खेती करते आ रहे हैं। आप हमें ये बताएंगे कि मुख्यतः किन किन फसलों की खेती करते हैं आप?
2: हम अभी के बरसात के समय में धान तो है ये मुख्य खेती जी। किसान के लिए मेन खेती धान है।
1: हाँ।
2: उसके बाद टमाटर की खेती करते हैं, मिर्चा है, बैगन है
1: जी,
2: और पत्ता गोभी है।
1: पत्ता गोभी बरसात में इन सारी चीजों की खेती करते हैं। अभी आप कौन कौन सी चीज की नर्सरी कर रहे हैं?
2: अभी तो धान का नर्सरी हो चुका है
1: जी,
2: और टमाटर का भी नर्सरी किए हैं दाना का।
1: हाँ।
2: और पत्ता गोभी
1: जी,
2: बैगन
1: जी,
2: और मिर्चा,
1: इन सब चीजों की नर्सरी आप किए हुए हैं। लगता है ये नर्सरी किए हुए ये सब
2: नर्सरी आई है
1: जी। हाँ, वो धान का सामने है ना
2: जी सर।
1: इसके अलावा भी देख रहे हैं कि वो कंदा वगैरह भी आपने लगा रखा है।
2: 1.5 महीने पहले लगाए हैं।
1: ये जो आपने नर्सरी कर रखी है सबसे पहले जानेंगे कि कितने दिनों का नर्सरी है आपका?
2: ये 6 दिन का नर्सरी।
1: 6 दिन का नर्सरी है। नर्सरी की तैयारी कैसे की आपने?
2: नर्सरी का अभी बरसात में जो है सो पिंडा बना के हम लोग करते हैं
1: जी।
2: कहा कि गड्ढा रहने से पानी जमा हो जाएगा तो गल जाएगा
1: जी। हाँ जी।
2: तो उसमें भुरभुरा जो पुराना गोबर होता है
1: जी,
2: उसको डाल करके पहले तैयार करते हैं।
1: हाँ।
2: फिर लाइनिंग से 1/2 इंच 1 इंच पर लाइन करते हैं, उसमें दाना दाना गिराते हैं
1: जी,
2: जिसमें दूरी हो उसका पौधा जो मजबूत बने
1: जी। तो ये पौधा ऐसे आपका तैयार होता है ताकि निकालने में भी सुविधा हो।
2: निकालने में सुविधा होता है, मजबूत जैसा बच्चा होता है वैसा ग्रोथ भी होता है
1: जी। बढ़िया है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सब जितने भी आपने बिछड़ा किया सब हाइब्रिड का है?
2: हाँ, टोटल हाइब्रिड है।
1: ये बरसात के दिनों की किस्में हैं?
2: हाँ।
1: और अभी आपने बताया कि ये गोभी है, मिर्ची है, बैगन है और टमाटर का मैंने नर्सरी किया है। कितने दिनों में आपका ये बिछड़ा तैयार हो जाएगा?
2: ये बिछड़ा मतलब 25-30 दिन के अंदर हमको लगा देना है। हर हाल में
1: ये सारे लगा देंगे आप?
2: 6 दिन हो चुका है।
1: कितने दिनों के अंदर आपको खेत की तैयारी करनी होगी इसके लगाने की जगह पे?
2: इसे जोत कर हम तैयार कर दिए हैं।
1: हाँ।
2: इसमें के घास जो है सो घास उसमें नहीं रहे
1: जी,
2: और उसके बाद 15 दिन के अंदर उसको तैयार करके उसको लगा देंगे।
1: तो अभी तो बरसात का मौसम है, जल जमाव की संभावना इसमें

0: के समय अब यूज कर रहे हैं हरित संजीवनी का जो
1: हाँ
0: जैविक खाद आता है।
1: जी
0: तो पहले अगर गाछ में बीमारी आता था तो डालते थे दवा तो नहीं असर करता था,
1: जी
0: लेकिन जब से हरित संजीवनी जैविक खाद अगर कुछ बीमारी आ भी जाता है
1: हाँ
0: उसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जैसे जैसे बाजार का जो होता है दवा
1: हाँ
0: उसको लाते देते तो बहुत जल्दी उसको
1: फायदा करता है।
0: फायदा
1: ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब जैविक खाद का यहाँ आपका प्रभाव देखने के लिए
0: बहुत
1: मिल रहा
0: प्रभाव
1: है।
0: बहुत।
1: और हम लोग हमेशा ये जानना चाहते हैं किसान भाइयों से कि अभी का जैविक खाद जो हम लोग लौट रहे हैं जैविक खाद की तरफ, मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति हो हम लोग को बरकरार रहे, इसके लिए जैविक खाद का हमेशा किसान भाइयों को बोलते हैं कि जैविक खाद का इस्तेमाल कीजिए। और आप ये चीज कर रहे हैं, आपको फायदा मिल रहा है, देखने में आ रहा है। अब आते हैं ट्रांसप्लांट, जब पौधा लगा देते हैं तो उसके बाद क्या देख रेख करनी पड़ती है आपको, खास करके ये गोभी और बैगन का खेत में? अभी
0: बैगन और गोभी में खास करके कीड़ा का ही प्रकोप होता है
1: जी
0: और उसमें कीटनाशक दवा मारते हैं जो हम लोग जैसे फेम के नाम से आता था पहले,
1: हाँ
0: 160 रुपये में हमको 10 ML मिलता था,
1: जी
0: वो 30 लीटर पानी में जो है सो घोलना पड़ता था।
1: जी हाँ
0: और 10 ML मतलब कि 1 ML 1 लीटर पानी 2.5 लीटर पानी में,
1: हाँ
0: समझे ना। लेकिन अभी उससे हमको लगता है कि नुकसान ही करता था,
1: जी हाँ
0: लेकिन अभी एक थोड़ा रैपिड नाम का आया है दवा,
1: जी हाँ
0: वो जो मित्र कीटों को मारता नहीं है दूसरे कीट को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है,
1: जी हाँ
0: वो रैपिड जो ऐसे डालने के बाद दूसरा जो कीड़ा जैसे बगान में घुसेगा ही नहीं,
1: वो उसमें इतना प्रभाव
0: हाँ
1: है।
0: प्रभाव है
1: और जो कीड़ा है उसको वैसा ही भूखा मार देता है।
0: हाँ।
1: इसका इस्तेमाल कितना स्टेप में आप करते हैं, कब कब करते हैं?
0: जैसे पौधा लगाने के बाद 8 दिन 10 दिन के बाद
1: जी
0: हाँ फर्स्ट स्टेप करते हैं,
1: जी हाँ
0: और रैपिड जो आए पहले तो वैसे करते थे 10 ML 30 लीटर पानी में, 3 लीटर में 1 ML करते थे उसको,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन अभी जो है सो 2 ML कर रहे हैं रैपिड, इसमें हम लोग को मतलब पैसा भी कम लगता है।
1: जी
0: अभी 250 ML का रैपिड आता है,
1: जी हाँ
0: उसका कीमत 700 रुपया 650 रुपया है,
1: जी
0: और 250 ML,
1: जी
0: और इसका 10 ML का अभी जो है सो 160 रुपये दाम है, तो ऐसे 100 ML का दाम 1600 होता है,
1: जी हाँ।
0: लेकिन 250 ML रैपिड जो है
1: जी
0: तो 700 रुपये में हो रहा है मात्र 700 में, और बहुत मतलब अच्छा हाँ कारगर है।
1: अब आते हैं आप नर्सरी से जाकर ट्रांसप्लांट हो गया, वहां पौधे लगा दिए, कीटनाशक का इस्तेमाल कर दिए, आते खरपतवार की, बरसात के दिनों में खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ता है, तो खरपतवार का आप प्रबंधन कैसे करते हो, कैसे व्यवस्था करते हैं उसको निकासी का?
0: ऐसे जैसे हम लोग अभी जैसे तैयार कर दिए जमीन,
1: हाँ
0: घास तो नहीं है, हल्का फुल्का होता है विकास
1: जी,
0: तो लगाने के बाद जो 8 दिन के 10 दिन के बाद हम लोग उसको चाल देते हैं,
1: खुरपाई करते हैं,
0: तो उसका
1: तो खुरपाई करने का मतलब
0: घास
1: मिल जाता है, धूप मिलता है,
0: हाँ हाँ जो टाण रहता है टाण में लगाते हैं, आजकल का फसल जो है सो अक्सर टाण में ही लगाया जाता है, पानी वाला जगह नहीं,
1: जी
0: इसलिए एक दिन भी पानी जाएगा तो तुरंत उसको कुड़ाई कर देते हैं हम लोग, तो खरपतवार तो होता ही नहीं है,
1: जी हाँ।
0: और दूसरा स्टेप 10 दिन में, दूसरा तीसरा स्टेप जो है सो दूसरा स्टेप जो 20 दिन में करते हैं,
1: अच्छा
0: तो उससे घास उस नहीं होता तब तक गाछ जो है सो बड़ा हो जाता है,
1: यानी कि निराई गुड़ाई की व्यवस्था करते हैं जहाँ पे आप बताए कि खास करके टाण जमीन में आप इन सब चीजों की खेती करेंगे। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहला स्टेप आपने तैयार कर लिया, आगे अब दूसरा स्टेप में क्या आता है, कितने दिनों के बाद कुड़ाई करते हैं?
0: 8 से 10 दिन के बाद,
1: 8 से 10 दिन के लगाने के बाद 8 से 10 दिन के बाद इसमें खुरपाई कर देते हैं, खुरपाई करने के समय
0: जैविक खाद देते हैं,
1: उस समय भी जैविक खाद
0: डालते हैं, जी जैविक खाद वो जो अगर पहला वाला जो नहीं दिए तो दूसरा वाला जिसमें खुरपाई करते हैं उस समय दे देते हैं,
1: जी
0: नहीं तो फिर वही रासायनिक खाद हम लोग DAP या पावर प्लस जो यूज करते हैं
1: हाँ उसका इस्तेमाल करते हैं,
0: इसमें यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते टमाटर,
1: जी अब इसमें ऊपर का पानी इतना पड़ता है कि आपको सिंचाई की आवश्यकता तो पड़ती
0: नहीं
1: है, और सिंचाई बहुत ज्यादा बारिश हो भी होता है तो टाण जमीन में उतना नुकसान नहीं होता है क्योंकि समूचा ढाल होता है वहां से पानी निकल जाता है। अब आते हैं कि बरसाती फसल में कीड़ों का प्रकोप भी होता है, जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं पत्ते वगैरह पूरा बढ़ते हैं तो उसमें कीड़ों का भी आकर्षण उसमें बढ़ जाता है, कीड़े आने लगते हैं, बीमारियां आती है, तो इन पौधों में बैगन गोभी टमाटर मिर्ची में कौन कौन सी बीमारियां आती है जिससे आपको लड़ना पड़ता है?
0: जैसे अभी बैगन है, बैगन में जो डंठल में होता है कीड़ा हो जाता है आपसे,
1: जी
0: तो उसमें अभी रैपिड मार रहे हैं
1: जी,
0: उससे भी सुन रहा है मेरा मित्र का कीट जो है जिंदा रह रहा है,
1: हाँ।
0: ऐसे तो मित्र कीट जब नहीं मरेगा
1: हाँ।
0: तो आधा बीमारी मेरा ऐसे साफ हो गया, इसलिए मित्र कीट जैसे केचुआ हुआ
1: हाँ।
0: बेंग हुआ
1: जी
0: साफ हुआ
1: हाँ।
0: तो ये सब जो कीड़ा अगर हुआ तो बेंग जो खासा
1: लाभकारी है,
0: तो उस जो है रैपिड जो है
1: हाँ।
0: जैसे फूल लग रहा है गाछ में जिस समय शहरी संजीवनी जो आया है
1: हाँ।
0: जैविक खाद आया है तो टॉनिक मारने की भी जरूरत नहीं, इसका 4 स्टेप में आता है खाद
1: जी,
0: फर्स्ट तो वो हो गया
1: हाँ।
0: दूसरा 25 दिन के बाद जिस तरह का उसमें सब खाद में तो लिस्ट बना

0: दिया हुआ है,
1: जी हाँ
0: पेपर दिया हुआ है, उसमें सारा कौन सा फसल में कितना दिन में पहला, कितना दिन में दूसरा, कितना दिन में तीसरा, कितना दिन में चौथा देना है,
1: हाँ।
0: वो सब उसमें बना करके दिया हुआ है
1: जी।
0: तो फर्स्ट स्टेप तो फर्स्ट स्टेप में दिए, नहीं तो 7-8 दिन के बाद दे दिए
1: जी।
0: दूसरा स्टेप 25 से 30 दिन के अंदर देना है
1: जी हाँ।
0: और तीसरा स्टेप देना है जब फूलना स्टार्ट करे,
1: अच्छा।
0: उससे तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप जैसे प्रकाश संश्लेषण का क्रिया तेज करना, तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया तेज होगा तो पत्ता का अति होगा, खाना बनाने में पौधा को ज्यादा अति होगा,
1: हाँ,
0: मिलेगा
1: हाँ।
0: तो उससे जो दूसरा स्टेप काम करता है
1: जी।
0: तीसरा स्टेप जो है एक तरह से समझिए कि
1: हाँ,
0: उस सब उस प्रकार से मिर्चा है, चाहे बैंगन है, चाहे गोभी है, चाहे टमाटर जो भी है, तो उसके लिए वो वैज्ञानिक बहुत अच्छा से बना के भेजा है कि उसका वो जो चीज है वो पूरा करता है।
1: ये फूलने के समय
0: हाँ,
1: फूल को झड़ने से रोकता है, फूल को मजबूती प्रदान करता
0: हाँ,
1: है,
0: मादा फूल को जो है ज्यादा अति करता है, और जैसे पांझा फूल कैसे कहते हैं
1: हाँ,
0: कि चीची वाला फूल
1: हाँ,
0: चाहे पांझा फूल
1: हाँ,
0: तो पांझा फूल मतलब बहुत कम आएगा, मतलब चीची लगने वाला ज्यादा
1: फूल ज्यादा आता है। ये जैविक खाद का इस्तेमाल करने से आपको फायदा है। कितने दिनों में आपका ये सब गोभी बैंगन वगैरह फसल जो है तैयार हो जाएगा, निकलने लगेगा खेत से?
0: टमाटर तो 60 से 70 दिन के बाद निकलना स्टार्ट, लगाने के बाद
1: जी
0: 60 से 70 दिन में निकलना स्टार्ट हो जाएगा
1: जी।
0: और बैंगन तो 50 दिन में तैयार हो, मतलब कि निकलना स्टार्ट हो जाएगा
1: जी।
0: और गोभी जो है वो 80 से 90 दिन लगता है।
1: अभी बरसात के समय में बता सकते हैं कि कौन कौन किस्में आपने लगाए हैं?
0: हाँ, अभी तो हम जो है जो बैंगन लगाए हैं
1: सहाना बैंगन हाँ। और ये टमाटर
0: है US का 430।
1: और ये मिर्ची
0: है अंकुर का।
1: चलिए, ये सब आप हैं सो इन बीजों का, किस्मों का अभी बरसात के मौसम के लिए आपने है सो नर्सरी तैयार कर रखी है जी। तो आपने हमसे बातें की और अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखा अब धैर्य से जानकारी सुन लिए बरसाती बैगन मिर्चर टमाटर की खेती के बारे में। अब तनी चलो ये मौसम की जानकारी देने। किसान भाई बहन, आज ये मौसम में तापमान रहा है, आज 28 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 28 डिग्री सेल्सियस कम से कम रहा है। मौसम में आर्द्रता 82% रहा है। और चलते चलते आज के बाजार भाव बता दिए। लाल आलू 18 से 20 रुपये प्रति किलो, सफ़ेद आलू 10 से 15 रुपये प्रति किलो, प्याज 30 से 35 रुपये प्रति किलो, फूलगोभी 30 से 40 रुपये प्रति किलो, पत्ता गोभी 30 से 35 रुपये प्रति किलो, पटल 20 से 30 रुपये प्रति किलो, भिंडी 15 से 20 रुपये प्रति किलो, नेनुआ 25 से 30 रुपये प्रति किलो, कद्दू 25 से 30 रुपये प्रति किलो, हरा मिर्च 100 से 120 रुपये प्रति किलो, शिमला मिर्च 50 से 60 रुपये प्रति किलो, गाजर 30 से 35 रुपये प्रति किलो, बीट 30 से 35 रुपये प्रति किलो, बोदी 20 से 30 रुपये प्रति किलो, मूली 25 से 30 रुपये प्रति किलो, धनिया पत्ता 160 रुपये से 180 रुपये प्रति किलो, आदि 120 रुपये से 140 रुपये प्रति किलो, खीरा 20 से 30 रुपये प्रति किलो, टमाटर 25 से 30 रुपये प्रति किलो, लाल साग और पालक साग 25 से 30 रुपये प्रति किलो रह लो। तो यह जानकारी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब हमारा प्रशांत की विदा, जोहार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के सफल, सुचारू और गरिमापूर्ण संचालन को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बैठक में सदन की कार्यवाही लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप संचालित करने पर चर्चा हुई तथा सभी दलों से सकारात्मक सहयोग का आग्रह किया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में जेपीएससी में कथित अनियमितता को लेकर छात्र संगठनों

0: उन्होंने आज प्रदर्शन किया। राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 12वें दिन भी विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी रहा। आंदोलन को धार देने के लिए कई अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों ने भूख हड़ताल रखी है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। रांची सदर अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से जारी नोटिस के विरोध में आज दूसरे दिन सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से दूर रहने का निर्णय लिया। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय विद्रोही ने बताया कि कल आम सभा में लिए गए निर्णय का पालन करेंगे। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत नवाडीह प्रखंड में आज एक दिल दहला देने वाली ट्रिपल मर्डर की घटना सामने आई। इसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आज मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाली स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा हुई। इस दौरान संबंधित विभागों को समारोह की सफलतापूर्वक तैयारी और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 6:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

0: कार्यक्रम युवानी सुन रहे सभी युवा साथियों को प्रेमेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं और इस बारिश के मौसम में भी जहां एक ओर कुछ लोग इस वर्षा का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं तो वहीं कुछ जगहों पर अत्यधिक वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। इस जीवन के भी श्रोताओं दो पहलू हैं, सुख और दुख। इसके बीच एक संतुलन स्थापित करके जीवन को सुखद और व्यवहारिक बनाया जा सकता है। विद्यार्थीगण भी कभी कभी परीक्षा में कम अंक आने से निराश हो जाते हैं तो कुछ विद्यार्थी पिछली गलतियों से सीख लेकर आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। युवा साथियों, बातें तो आपसे आगे और भी होगी लेकिन फिलहाल एक गीत का आनंद हम सभी मिलकर लेते हैं, उसके बाद हम जानकारी की बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: युवा साथियों, अगर दिल में जुनून और जज्बा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है, उसे हासिल की जा सकती है। आज हम आपसे बातें करेंगे कि युवा कैसे चुने अपना भविष्य। युवा साथियों, मित्रों, सबसे पहले अपने मजबूत पक्षों को रखिए, साथ ही अपनी रुचियां, अपने मूल्य को समझिए। जिन चीजों में आप को स्वाभाविक रूप से उत्साह आता है, उन्हें नोट कर लें। फिर अलग अलग क्षेत्रों को, जैसे इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट इत्यादि क्षेत्रों में अपने कार्यों को आजमाकर आप देखें। उन दोस्तों और सीनियर्स से भी बातें करें उन क्षेत्रों में काम कर रहे हों, तो फिर अपनी पसंद, स्किल्स और बाजार की जरूरतों को आप जरूर समझें। और ऐसी स्थिति में एक दिन ऐसा जरूर आएगा साथियों, जब आप खुद का निर्णय लेने में आप सक्षम हो जाएंगे और जब आप अपने दिलचस्प विषय का चयन करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और जल्द ही एक सफल इंसान की श्रेणी में आप खुद को पाएंगे। दोस्तों, जानकारी के क्रम में आज हम आपके लिए एक भेंटवार्ता लेकर के आए हैं। विषय है फिजिक्स आसान है। भेंटवार्ताकार हैं शिक्षक मजीद सुलेमान और इनसे बातें कर रहे हैं सूरज रजक। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं, फिजिक्स के बारे में कहा जाता है कि वो एक कठिन विषय है, ये मिथक है, ये सचमुच इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। तो फिजिक्स है क्या, किस तरह का विषय है, या फिजिक्स कहिए कि ज़्यादा सरल है, ये सिर्फ भ्रम है, इन सारी चीज़ों पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं वरीय शिक्षक है, लंबा समय, करीब 33 वर्ष इन्होंने फिजिक्स पढ़ाया है। हमारे साथ है मजीद सुलेमान सर। तो स्वागत है सर आज के इस कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: पहली बात तो है कि जीवन के लिए फिजिक्स जो है सो बिल्कुल कंपल्सरी है, और फिजिक्स जो है बहुत इजी विषय है, उसको इजी तरीके से लिया जाए तो, और जीवन के लिए फिजिक्स बहुत ही कंपलसरी है, इसलिए फिजिक्स को साइंस का किंग कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है।
1: कि हमारे आसपास फिजिक्स है, अगर मजदूर की बात भी करें या कोई राजमिस्त्री काम कर रहा है तो वो फिजिक्स के ही सिद्धांतों को अमल में लाता है, भले उसका सैद्धांतिक पक्ष वो भले ना जानता हो लेकिन व्यवहार में उन चीज़ों को लाता है। तो इन चीज़ों से देखकर बच्चे सीख सकते हैं, या फिर कहे कि और दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से बच्चे फिजिक्स के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं।
2: बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसलिए कि बच्चे जो हैं आजकल जानते हैं कि बच्चे को गाड़ी चलाना सबसे कॉमन बात है बच्चों के लिए, तो स्कूटी में जो एक्सेलरेटर होता है वो त्वरण है, वो वेलोसिटी को बढ़ाता है और वो घटाता भी है, तो जब वेलोसिटी घटता है तो हम समझ जाते हैं कि एक्सेलरेशन जो है उसका घट रहा है, जब एक्सेलरेशन देते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो बच्चा इतना जरूर जान रहा है कि वो इसको घुमाए हैं तो गाड़ी बढ़ेगी, इसको घटाए हैं तो ये भी फिजिक्स है, जो किताब में आप पढ़ते हैं जिसको कहते हैं त्वरण, अंग्रेजी में उसको कहा जाता है एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर से एक्सीलरेशन बना। तो बच्चे इस चीज़ को जानते नहीं, जबकि फिजिक्स जान रहे हैं, बल्कि बिल्कुल जाहिल है, सब्जी बेच रहा है लेकिन फिर भी उसको यूज कर रहा है, डेट इज फिजिक्स, लेकिन हम वहाँ समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम फिजिक्स से सब्जेक्ट से उसको रिलेट नहीं करते हैं, सीधे किताब पढ़ रहते हैं, उधर स्कूटी पढ़ रहते हैं। ये कमी इसलिए होते हैं कि हमारे स्तर पर शिक्षकों में भी ये कमी है। शिक्षक को एजुकेशन देते समय उसको अटैच करना चाहिए, किताब को व्यवहार से अटैच कर दें तो लड़के विद्वान और साइंटिस्ट जरूर बनेंगे।
1: मतलब वैज्ञानिक सोच शिक्षक बेहतर तरीके से बिठा सके
2: यानी उसको अटैच कर दें व्यवहार से। जैसे तोरण पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को ये बताना चाहिए कि तुम तो स्कूटी जरूर चलाते हो, तो हाँ, तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो जो बढ़ाते हैं वो कैसे बढ़ता है, तो वो समझ जाए कि वो एक्सेलरेशन ये चीज़ है। तो दोनों को आप घर पर सोएगा भी तो दोनों को अटैच करेगा, तो जिससे उसके नॉलेज बूस्ट अप होगा।
1: अच्छा सर, एक बात और ये जानना चाहते हैं, जैसे कि इस वक्त जो हमारे ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, चाहे वो अभिभावक हों या बच्चे हों, तो अभिभावकों की भी कोई भूमिका हो सकती है कि उन बच्चों को जानकारी दे जो आम व्यवहार में जो सिद्धांत है वो, या फिर बच्चे किस तरह से वो जागरूकता रखें कि जब वो पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या सीख सकते हैं, तो इन दोनों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: हाँ, गार्जियन का भी इसमें बहुत बेहतरीन रोल रहता है, जैसे किचन में भी फिजिक्स है, रोड पर भी फिजिक्स है। अभी नदी किनारे बच्चे को ले जा रहे हैं तो पानी जब

0: रुका हुआ है तो बच्चे को दिखाएं कि देखो इसमें देखो शकल नजर आ रहा है, तो बच्चा देखेगा कि हाँ शकल तो मेरा नजर आ रहा है, और उसमें पत्थर मार दिया गया तो देखो अब नजर आ रहा है तो नहीं नजर आ रहा है। तो ये भी फिजिक्स है, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब हो गया, पार्टिकल जो है सो स्थिर थे, स्टैटिक्स से चला गया डायनेमिक में। तो न्यूटन का वहाँ लॉ उस पढ़ा सकते हैं कि देखो बच्चा जो पानी पहले तुम्हारा शकल नजर आ रहा था तो सभी स्थिर थे, कोई नहीं था, तो तुम उसको मैं अपना शकल देख रहे थे अपने में, लेकिन इसको डिस्टर्ब कर दिया तो सभी डिस्टर्ब हो गए, यानी वो उसको खतरा महसूस हो गया कि यहीं खतरा है, इसलिए वहाँ है। यहाँ भी फिजिक्स है जो किसी थ्योरी को हम डील कर सकते हैं। तो बच्चे का है कि जहाँ ले जाइए जंगल में ले जाइए, वहाँ भी फिजिक्स है, कहीं भी है, तो उसको जब तक कोरिलेट नहीं कीजिएगा, एक दूसरे को मैच नहीं कराइएगा, जब तक बच्चे को फिजिक्स का नॉलेज नहीं होगा।
1: और सर 3 दशक हुआ आपका, इतने लंबे समय से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसे बाल मनोविज्ञान कहिए, बच्चों के मनोविज्ञान को भी आप समझते होंगे कि बच्चे फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक है जहां अटकते हैं, तो उनका अटकने के पीछे कारण क्या है, उनसे क्या गड़बड़ियां होती है, इस बारे में कुछ बताइए, और किस तरह से वो सावधानी रखे इस बारे में बताइए।
0: हाँ, ये इसमें जो है सो फिजिक्स जो है बेसिक, जो अब आ जाइए मैथमेटिक्स में, बेसिक वह है फिजिक्स, मेजरमेंट होता है। जैसे राजमिस्त्री जो फिजिक्स जानता है वो मेजरमेंट जानता है, उसको और फिजिक्स से मतलब नहीं है, वो मेजर करता है कि कितना इंच का लगेगा, क्या लगेगा, यानी मेजरमेंट पर वो टोटली डिपेंड है। तो अर्थमेटिक्स का ज्ञान नहीं हो तो उसको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा, मेजरमेंट नहीं कर पाए, फिजिक्स जान रहा है लेकिन वो मेजर नहीं कर सकता है। जैसे गाड़ी को एक्सीलरेटर दिया लेकिन कितना देना चाहिए वो नहीं मालूम है तो एक्सीडेंट कर सकता है। तो मेजरमेंट भी बहुत जरूरी है। तो पहला है कि फंडामेंटल मैथमेटिक्स यानी अर्थमेटिक्स का ज्ञान 100% होना चाहिए, और हम सभी जानते हैं कि जितने भी कंपटीशन होते हैं उसके लिए अर्थमेटिक्स मस्ट है, यानी सब्जी भी बेचना है तो अर्थमेटिक्स जानना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर अर्थमेटिक्स का ज्ञान नहीं है तो हम समझिए अज्ञानी हैं।
1: तो बच्चे यहाँ ज्यादा फंसते हैं अर्थमेटिक्स
0: में,
1: तो किस तरह की सावधानी रखने की जरूरत है?
0: अर्थमेटिक्स उनको काफी मजबूत होनी चाहिए। जब अर्थमेटिक्स हो यानी अर्थमेटिक्स ही मेजरमेंट है, और जिनका मेजरमेंट बहुत मजबूत होगा फिजिक्स उनका बहुत ही मजबूत होगा।
1: तो अर्थमेटिक्स ज्यादा मजबूत हो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे?
0: उसको फंडामेंटल में ही हमको जोड़ घटाओ जो है उसको ठीक से, जो सिंप्लीफिकेशन है उसको अच्छी तरह से पढ़ाएं ये सब बच्चे को, और उस समय जब पढ़ाएं तो उस समय सिर्फ अर्थमेटिक्स पर ध्यान देना चाहिए, फिजिक्स को 10th तक व्यवहार से मेजर अटैच करना चाहिए और अर्थमेटिक्स को मजबूत कराना चाहिए। जैसे ही वह 11th में गया अब फिजिक्स और अर्थमेटिक्स को अटैच कर देना चाहिए, तो जिससे कि ज्ञान उसका बूस्टअप होगा,
1: मतलब ज्यादा
0: हाँ ज्ञानी होगा
1: ज्यादा।
0: और यहाँ गलती क्या होती है, फिजिक्स को हम लोग बच्चे को पहले ही अटैच कर देते हैं 9th क्लास में, जिसके कारण से न वो सही से मैथ जान सकता है, नहीं सही से फिजिक्स जान सकता है,
1: उसका सैद्धांतिक पक्ष जानता है ना, ये फिर अर्थमेटिक्स से संबंधित जो जानकारी है वो, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा अर्थमेटिक के अलावा और कहीं कोई ऐसी समस्या?
0: ज्योमेट्री, चूंकि इंजीनियर जो बनते हैं पूरा वो ज्योमेट्री है, जैसे है कहाँ कंस्ट्रक्शन करना है क्या है, ज्योमेट्री का भी है। तो जितनी भी फिजिक्स की चीज है, यूं कह लीजिए कि फिजिक्स का एडवांस रूप है ज्योमेट्री, और अर्थमेटिक्स का एडवांस रूप है फिजिक्स,
1: मतलब फिजिक्स को बेहतर तरीके से समझना है तो अर्थमेटिक्स
0: और ज्योमेट्री को जानना जरूरी है,
1: जरूरी है।
0: और हम लोग नहीं जान पाते हैं, बहुत से शिक्षक भी ये बात को नहीं जान पाते हैं कि अर्थमेटिक्स को फिजिक्स में आगे जाके स्केलर कहा जाता है और ज्योमेट्री को आगे जाके वेक्टर कहा जाता है। तो लड़के इतना बात जानते हैं कि भौतिक राशि जिसमें दिशा नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि है, और जिसमें दिशा होती है उसको हम कहते हैं सदिश राशि है। तो दिशा का मतलब है कि उसमें मेजरमेंट भी है और ज्योमेट्री है, दिशा का मतलब ज्योमेट्री और स्केलर का मतलब अर्थमेटिक्स। तो इसका ज्ञान नीचे दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि बच्चा को अगर पूछिए कि यह आम कहाँ से लाए हो, तो बच्चा कहेगा कि पेड़ आम के पेड़ से तोड़ के लाए हैं, लेकिन फैक्ट यह है कि अर्थ से है, जब तक अर्थ से कनेक्शन नहीं है तो आम कैसे फलेगा। लेकिन जितना भी चीज हमको मिलता है वो अर्थ से मिलता है, यानी कान में औरत भी झुमका पहनती है तो वो भी अर्थ है, यानी दुनिया की जितनी सारी चीज है वो अर्थ के ऊपर नहीं है, अर्थ के नीचे है। उसी टाइप से फिजिक्स स्ट्रांग तभी होगा जब हम ग्राउंड लेवल यानी टेंथ के नीचे का अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक को मजबूत कर लें, तो फिजिक्स हमारा जो है आगे जाके यानी कोई भी कंपटीशन को हम कम्पीट कर सकते हैं।
1: और जैसे 11, 12 के जो बच्चे हैं इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी करते हैं तो उनको किस तरह की सावधानी रखने की ज़रूरत है?
0: हाँ, उन लोग को है जो आपको बोला अभी कि अर्थमेटिक्स और ज्योमेट्री जिनका मजबूत है, न्यूमेरिकल पोर्शन उनका बहुत मजबूत हो जाएगा और 90% कंपटीशन में न्यूमेरिकल पूछा जाता है और न्यूमेरिकल में जनरली देखिएगा कि ज़्यादातर अर्थमेटिक्स रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है, समानुपात अनुपात और ये लाभ हानि यही सब रहता है, लॉस एंड प्रॉफिट ये सब, जिसका ज्ञान बच्चे को नहीं होता है और वही चीज़ ऊपर किया जाता है। और दूसरी बात होती है बच्चे जो राज फिजिक्स में नहीं करते हैं वो किसी सवाल को जवाब देने के लिए वो ऊपर जाते हैं, जबकि ऊपर नहीं जाना चाहिए, उनको नीचे जाना चाहिए। अब कहीं भी चले जाइए, शादी में हो चाहे कहीं भी, लड़की देखने चाहे कहीं भी, तो सवाल फ्यूचर का नहीं पूछा जाता है, सवाल बच्ची से या लड़के से पूछा जाता है कि तुम्हारे दादा का क्या नाम था, यानी बैक में जाया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब कोई सवाल बनाते हैं, कोई समस्या आता है तो नीचे ना सोच के हम लोग ऊपर सोचने लगते हैं, इसलिए प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाता है। तो बच्चे को हमेशा नीचे, शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को हमेशा प्रश्न के नीचे सीखने की है। उदाहरण के तौर पर बता देते हैं कि अगर कोई आदमी एमए पास है, कोई बच्चा जो है सो मैट्रिकुलेट किया हुआ है और उसको इंटरव्यू लेने के लिए दीजिए, छठे क्लास के बच्चे को, तो वो जो है सो मैट्रिक का क्वेश्चन बच्चा नहीं पूछेगा, वो पाँचवा का क्वेश्चन उसे पूछेगा। लेकिन तैयारी करके हम कहाँ के जाते हैं, आठवां का, तो आठवां का तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया तो कंपटीशन में हम फेलियर हो गए, क्योंकि जिस लेवल का जो पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा वो आपको ग्रेजुएट का है अपॉइंटमेंट के, ग्रेजुएट जो है सो अपॉइंट करेंगे, तो क्वेश्चन जो हमेशा सेटर सेट करता है या इंस्ट्रक्शन रहता है कि वो कोशिश कीजिएगा कि मैट्रिक से लेके नाइन्थ क्लास से लेके सेट कीजिए, अब 25% थोड़ा एडवांस कर दीजिएगा जिससे कि हम आईक्यू टेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ तक बच्चे या कोचिंग में जितने भी टीचर हैं वो हाई लेवल के पढ़ा देते हैं, इसलिए क्वांटिटी घट जाती है और बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते।
1: बड़ी अच्छी बात है कि नीचे जाने की ज्यादा
0: जरूरत है, कोई समस्या को समझने के लिए नीचे देखना,
1: नीचे देखना ज्यादा जरूरी है। और सर एक अंतिम सवाल, जैसे कि आप खुद अब जब पढ़ रहे थे और आज पढ़ा भी रहे हैं और लंबा समय भी गुजरा है, तो एक बात बताइए कि जो पाठ्य पुस्तकों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह के पाठ्यक्रम, किस तरह के पाठ्य पुस्तक, या कहें कि आज की तारीख में बहुत सारे साइड बुक्स वगैरह भी उपलब्ध है, बहुत सारे कहिए कि सोशल मीडिया में, यूट्यूब या अगर दूसरे जगहों पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाई जाती है, तो बच्चों को कहें कि फिजिक्स का सही ज्ञान विकसित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों की किस तरह की भूमिका है और कौन से पाठ्य पुस्तक उनके लिए ज़्यादा कारगर है या बेहतर है?
0: हाँ, पाठ्य पुस्तक में सबसे जो कारगर होता है वो टेक्स्ट बुक होता है, टेक्स्ट बुक एक साइड बुक, दोनों में अंतर क्या है कि टेक्स्ट बुक में थोड़ा स्टेप को गैप कर दिया जाता है, स्टेप गैप कर दिया जाता है, और साइड बुक में है कि वो स्टेप को भर दिया जाता है। तो दोनों में अंतर ये है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो टेक्स्ट बुक पढ़ते थे तो अपने थिंकिंग को बढ़ाते थे, वो भरते थे, अपने रेट ऑफ थिंकिंग को बढ़ाते थे जिससे कि जंप कर जाते थे और नॉलेज हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि वो फिल अप द ब्लैंक्स कर दिया जाता है, तो बच्चों को समझने में देना है तो उनकी रेट ऑफ थिंकिंग घट रही है।
1: बड़ी बात है,
0: रेट ऑफ थिंकिंग घट रही है, तो रेट ऑफ थिंकिंग घट गई है तो हमने सोचने की क्षमता घट गई है, तो आगे हम साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं, हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रेट ऑफ थिंकिंग को बढ़ाना, तो जैसे एनसीईआरटी बुक जो लिखी गई है उसमें इस चीज़ का ध्यान दिया गया है कि रेट ऑफ थिंकिंग बच्चे को बढ़े, तो यहाँ तो टीचर को ही उसमें स्टेप फिल अप करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो स्टूडेंट को कितनी दिक्कत होगी तो आप सोच सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाह रहा है
1: तो जिससे रेट ऑफ थिंकिंग घट रही है,
0: बिल्कुल वो घट रही है। रेट ऑफ थिंकिंग जहाँ घटेगा तो नेचुरल सी बात है, गाड़ी का रेट घटेगा तो स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी तो हम कितने पीछे जाएंगे, तो हमारा जो नॉलेज है पीछे चल जा रहा है, रेट ऑफ थिंकिंग यानी हमें वो फिलअप करने की क्षमता घट रही है। जैसे जिम करने जाते हैं, जिम करने जाने में हम लोग ने क्या करते हैं, एनर्जी की क्षमता, अपने बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हैं जिम करके, तो 10 किलो नहीं उठा सकते एक बार में, तो 5 उठाए, 10 उठाए, ये उठाए, लेकिन वहाँ हम कोशिश करते हैं।

0: लेकिन पढ़ाई में एक क्षण कोशिश करना नहीं चाहते हैं कि कैसे होगा, किसी से पूछ के करें, ये नहीं, सीधे कुंजिका और रेडीमेड पढ़ के अपने रेट ऑफ थिंकिंग को घटा लेते हैं।
1: बड़ी अच्छी बात कही, और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त हमारी बातचीत को सुन रहे होंगे उन्हें ज़रूर लाभ होगा। और इतनी अच्छी बातचीत आज आपने की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: युवा साथियों, भी आप सुन रहे थे एक भेंटवार्ता, विषय था फिजिक्स आसान। भेंटवार्ताकार थे शिक्षक मजीद सुलेमान और इनसे बातें कर रहे थे सूरज रजक। इनकी बातों को सुनकर तो लगा जैसे सचमुच फिजिक्स आसान है, बस मेहनत करने की जरूरत है। और जो मूल जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का अगर सिलसिलेवार तरीके से अगर अध्ययन किया जाए तो फिजिक्स को भी आसान बनाया जा सकता है। और दोस्तों, अब इस जानकारी के बाद एक गीत का आनंद लेते हैं।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

दोस्तों, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शंकर महादेवन और साथियों को। फिल्म का नाम है तूफान।

0: और अब दोस्तों हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तृष्णा की फिल्म के गीत को। आवाज़ें पावनी पांडे और साथियों की हैं, लेकिन इस गीत से पहले सुनते कुछ जरूरी संदेश भी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 7 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं

0: पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रांची में छात्रों के आंदोलन के बीच राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री। युवाओं के साथ न्याय का राज्यपाल को दिलाया भरोसा। विधानसभा के मॉनसून सत्र कल से। रांची में हुई सर्वदलीय बैठक। अध्यक्ष का सदन के सुचारू संचालन पर जोर। राज्य में एसआईआर के तहत प्रारूप मतदाता प्रकाशित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया 4 सितंबर तक मतदाता दर्ज करा सकते हैं दावा और आपत्ति। राज्य के कई इलाकों में 8 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी। और जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम का दमदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश को पराजित कर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लोकभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं तथा रांची में चल रहे छात्र आंदोलन की जानकारी दी। श्री सोरेन ने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। श्री सोरेन ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और सरकार सभी पहलुओं को देखकर आगे फैसला लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं।
1: आज राज्यपाल महोदय से मुलाकात किया और वर्तमान परिस्थिति पर हम लोगों ने चर्चा की। ये राष्ट्रीय समस्या का रूप दिख रहा है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है और कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है।
0: इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में जेपीएससी में कथित अनियमितता को लेकर छात्र संगठनों ने आज प्रदर्शन किया। राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 12वें दिन भी विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी रहा। आंदोलन को धार देने के लिए कई अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों ने भूख हड़ताल की है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा।
2: हम लोग को जब तक सरकार हम लोग की मांगे क्यों नहीं पूरी कर लेती तब तक हम लोग यहाँ पे अड़ी रहेंगे, अन्न त्याग देंगे। जिस दिन हम हमारी मांगे को पूरी हो जाएगी उस दिन हम अन्न ग्रहण करने का कोशिश करेंगे।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर रांची में जोरदार प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी नेताओं ने राज्य सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि छात्रों की मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
3: झारखंड में 14वें जेपीएससी को लेकर जो धांधली झारखंड सरकार के द्वारा की गई है उसको लेकर आज यहाँ पर भारतीय भर्ती विद्यार्थी परिषद आज हम लोग ने एक आक्रोश मार्च को निकाला है। और अगर जल्द से जल्द अगर झारखंड सरकार अगर राज्य में यहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए जो स्टूडेंट हैं अगर आके वहाँ नहीं बात करेंगे तो हम लोग बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आक्रोश मार्च निकालेंगे और हो सकता है कि सीएम आवास में भी हम लोग घुसने का काम करें।
0: झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के सफल, सुचारू और गरिमापूर्ण संचालन को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के दौरान सदन के सुचारू संचालन में सभी दलों से सकारात्मक सहयोग का आग्रह किया।
4: विधानसभा के सफल और सार्थक संचालन के लिए जो जो आवश्यक तैयारियां है उन तमाम आवश्यक तैयारियां विधानसभा की ओर से कर ली गई है ताकि विधानसभा के सफल संचालन में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो उसका तमाम व्यवस्था वो अपने स्तर से करेंगे।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स की स्थिति पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि रिम्स की दुर्दशा मरीजों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री को घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो सरकार मौजूदा रिम्स की व्यवस्था तक नहीं संभाल पा रही है वह आदिवासियों की जमीन छीन कर रिम्स 2 बनाने की बात कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
5: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
6: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: राज्य में आज SIR अभियान के तहत प्रारूप मतदाता और ASDD सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि मतदाता 4 सितंबर तक दावा आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
7: सभी पोलिंग स्टेशन पर ड्राफ्ट रोल का पब्लिश की गई, साथ साथ में ASDD सूची है किसका अनकलेक्टेबल इनमरेशन फॉर्म का कैटेगरी है, उनका भी सूचना सभी बूथों पर दिया हुआ। किसी में किसी का भी कोई ऑब्जेक्शन होगा, कोई क्लेम होगा, अपने फाइल कर सकते हैं। 4 सितंबर तक उनका समय है। आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है, क्लेम है, आपका फॉर्म 6A, 7A, 8A में कर सकते हैं।
0: इधर राज्य में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए आज सोशल मीडिया पर न्यू वोटर्स हैशटैग चलाया गया और सभी पात्र वोटरों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि इस वर्ष 1 अक्टूबर को जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष पूरी हो जाएगी वे अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते हैं। मौसम, राज्य के कई क्षेत्रों में 8 अगस्त तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और सरायकेला खरसावां तथा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज भारी बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने उत्तर प्रदेश को 4-3 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आज के क्वार्टर फाइनल मैच में झारखंड की टीम बराबरी पर रही लेकिन टाई ब्रेकर में मैच जीत लिया। कोयला प्रक्षेत्र का 3 दिवसीय क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट आज से धनबाद पुलिस केंद्र में शुरू हुआ। 7 अगस्त तक चलने वाले इस पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन बोकारो प्रक्षेत्र के IG शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने किया। इस प्रतियोगिता में चयनित पुलिसकर्मी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार, रांची में छात्रों के आंदोलन के बीच राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री, युवाओं के साथ न्याय का राज्यपाल को दिलाया भरोसा, विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से, रांची में हुई सर्वदलीय बैठक, अध्यक्ष का सदन के सुचारू संचालन पर जोर, राज्य में SIR के तहत प्रारूप मतदाता प्रकाशित, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया 4 सितंबर तक मतदाता दर्ज करा सकते हैं दावा और आपत्ति, राज्य के कई इलाकों में 8 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान, आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी और जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम का दमदार प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश को पराजित कर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
1: पलामू के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में रहस्यमयी बीमारी से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि ऑर्जीमोन मिला सरसों तेल खाने से ये घटना हुई है।
2: सरसों तेल उनके खेत में ही उगाया हुआ था और नहीं करवाए थे हम लोग, तो हो सकता है कि जहाँ पर सरसों की खेती कर रहे हैं वहीं पर यह अर्जुमोन बायल प्लांट भी होगा और उसमें कटाई करते हैं तो एक दो पौधा गलती से या उसका दाना सीड में मिल गया होगा।
1: पलामू के चैनपुर प्रखंड के रामपुर गोलीकांड में हुई सिकंदर चौधरी की हत्या मामले में कथित प्रशासनिक विफलता को लेकर समाहरणालय में प्रदर्शन हुआ। विकासशील इंसाफ पार्टी ने प्रदर्शन आयोजित किया। यहां वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सह बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी उपस्थित थे। यहां उन्होंने कहा कि न्याय और अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करना होगा।
3: बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जब वोट लेने का समय आता है तो गरीब पिछड़ा दलित के दरवाजे से लोग जाते हैं और जब उनके घर पे घटना होता है, हत्या होता है, मर्डर होता है तो उसके घर पे नहीं जाते हैं। तो ये तो यहाँ के स्थानीय जो वोटर है उनको समझने की आवश्यकता है कि आप कैसे जनप्रतिनिधि को जिताए हैं, सांसद बनाए, विधायक बनाए, जो आपके दुख सुख में आपके बीच में नहीं आ रहे, तो इससे उन सभी को सीखने की आवश्यकता है। उनको किसी जात को देख के नहीं काम करना चाहिए, समाज के चाहे जिस जाति धर्म का कोई अपराधी जो है वो उसका कोई जाति नहीं होता।
1: पलामू पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में करीब 320 किलो गांजा लदा ट्रक जब्त किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख करोड़ बताई जा रही है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिव्यांश शुक्ल ने बताया कि
4: करीब रात को 12:30 के आसपास हम लोग चेकिंग लगवाए गमरिया गांव के सामने छतरपुर मेन रोड पर, जहां एक ट्रक जो जिसका नंबर संदिग्ध था उसको रोका गया। पूछताछ करके क्रम में पता चला कि उसमें बड़ी मात्रा में गांजा लेके जाया जा रहा है छतरपुर की तरफ।
1: नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री रोकने को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पलामू पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में पंजाब तस्करी से पहले डाल्टनगंज रेलवे कॉलोनी से 3 तस्करों को 3 किलो अफीम के साथ दबोच लिया गया। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने पूरी जानकारी दी।
5: तहत पलामू पुलिस का ऑपरेशन प्रहार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाया जा रहा है। हमारी जो पहल है इसके तहत कल डाउन थाना अंतर्गत 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि तीनों व्यक्ति मनातू थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से लगभग 3.25 केजी अफीम जब्त हुई है। ये तीनों व्यक्ति अफीम की तस्करी करने के लिए अपने क्षेत्र से लेके ट्रेन के माध्यम से पंजाब लेने की इनकी योजना थी। पुलिस को प्राप्त हुई गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग मेघा घोटाले की जांच अब पलामू तक पहुंच गई है। सोमवार को सीआईडी और पलामू पुलिस के संयुक्त टीम ने जिले के 2 आरोपितों संतोष कुमार सिंह एवं रविशंकर कुमार के ठिकानों पर छापामारी की और कई दस्तावेज साक्ष्य के साथ जब्त किए। फॉरेंसिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
0: अभी आप सुन रहे थे पलामू जिले की ताजा

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है पेमेक 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:17 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम झनकार। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सबसे पहले स्वदेश फिल्म के गीत को, जिसे गाया है ए आर रहमान और साथियों ने।

दोस्तों खेत, ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। आइए सुनते हैं सुल्तान फिल्म के इस गीत को, जिसे गाया है नूरान सिस्टर और विशाल दादलानी ने।

और दोस्तों कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं बिल्लू बार्बर के इस गीत को, आवाजें तुलसी कुमार और नीरज श्रीधर की हैं।

बिल्लू बार्बर फिल्म के संगीत के साथ कार्यक्रम जानकार यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

0: सिंह की फिल्म के संगीत के साथ। दोस्तों कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी सलाह। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक भेंटवार्ता, विषय है कामकाजी महिलाओं के कानूनी अधिकार। भेंटवार्ताकार हैं अधिवक्ता रीना वर्मा और इनसे बातें कर रहे हैं सूरज रजक। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी सलाह।
1: श्रोताओं, स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला अधिकारों के प्रति बहुत सारे काम किए गए हैं और महिलाएं बाहर निकलकर काम करने लगी हैं। कामकाजी महिलाओं का एक बड़ा तबका उभर कर सामने आया है, साथ ही कई तरह की चुनौतियां भी सामने आई है। इन चुनौतियों से सरकार किस तरह से निपटी है, उनके लिए कानूनी प्रावधान क्या क्या है, इन तमाम चीजों पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ है वरीय अधिवक्ता रीना वर्मा जी। तो आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहले कामकाजी महिला की परिभाषा बताइए कि कौन कौन सी महिलाएं कामकाजी महिलाएं मानी जाती हैं।
2: देखिए, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि हर औरत जो है कहीं ना कहीं काम करती है। वो घर का काम तो करती ही है, अक्सर वो पैसा कमाने के लिए घर के बाहर भी काम करती है। काम करने वाली औरतों को मालूम होना चाहिए कि उनके कुछ मूल अधिकार बनते हैं। ये मूल अधिकार सरकार ने कानून बनाकर तय किए हैं। ये कौन से अधिकार है? पहली बात, हर काम करने वाले को काम के लिए वेतन या मजदूरी मिलनी चाहिए, चाहे वो आदमी हो या औरत। दूसरी बात, ये वेतन या तनख्वाह कम से कम उतनी होनी चाहिए जितनी सरकार ने तय की हो, यानी न्यूनतम वेतन हर हाल में मिलना चाहिए। तीसरी बात, बराबर के काम के लिए बराबर पैसा मिलना चाहिए, यानी एक ही काम के लिए एक काम के लिए औरत को पुरुष के बराबर ही पैसे मिलने चाहिए, न कि कम। चौथी बात, औरतों को गर्भावस्था प्रसूति से संबंधित कुछ खास अधिकार दिए गए।
1: प्रसूति अधिकार कुछ विशेष महिलाओं को मिले हुए हैं, तो ये किस तरह के अधिकार हैं और इसका कितना फायदा समाज को मिलता है?
2: देखिए, प्रसूति के लिए महिलाओं को आप देखेंगे कि बहुत सी महिलाएं हैं जो फैक्ट्री में काम करती हैं, और कोई महिला है जो ठेकेदार के अंतर्गत में काम करती हैं, और आप देखते होंगे या हमारे श्रोता देखते होंगे कि वो गर्भावस्था के दौरान भी काम करती हैं। तो प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 बनाया गया, जिसमें गर्भावस्था के दौरान जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कानून बच्चा पैदा होने के बाद और मातृत्व की शुरुआत के दिनों में जो महीनों में दी जाती है सुरक्षा, उसकी सुविधाओं के लिए ये कानून बनाया गया। कामकाजी महिलाओं को 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। ये छुट्टी पूरी वेतन के साथ होनी चाहिए, ये नहीं कि छुट्टी मिल गई और वेतन नहीं मिला, ऐसा नहीं है।
1: 12 हफ्ते
2: की छुट्टी मिलेगी जो गर्भावस्था के दौरान होती है। यदि महिला शादीशुदा न हो तो भी उसे प्रसूति की छुट्टियां लेने का अधिकार है। ये छुट्टियां वह महिला
1: इस छुट्टी पर किसी तरह की कटौती नहीं की
2: किसी तरह की कटौती और किसी तरह का एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता कि आप

0: शादीशुदा नहीं है तो प्रसूति का आपको छुट्टी कैसे मिलेगा? कभी कभी कुछ ऐसे हालात होते हैं समाज के कि जिस दौरान माँ कुंवारी माँ भी बन जाती हैं और वो काम करती हैं, माने बहुत सी महिलाएं स्वतंत्र हैं, अलग
1: कारण वो छुपाती भी हैं,
0: छुपाती भी हैं, या फिर कोई मेडिकल तरीके से सिंगल मदर ही बनना चाहती हैं, तो उनको भी प्रसूति की छुट्टी मिलनी चाहिए। ये कानून है, कुछ दिन प्रसूति के पहले और कुछ दिन प्रसूति के बाद ले सकती हैं, अगर पूरी छुट्टी प्रसूति के बाद भी ले सकती हैं, मतलब 12 हफ्ते की जो छुट्टी है वो चाहे तो 9 महीने के दौरान या फिर 9 महीने के बाद जब बच्चे का जन्म होता है तब 12 हफ्ते की छुट्टी ले सकती हैं। जो महिलाएं सरकारी नौकरी कर रही हैं उन्हें प्रसूति के लिए 135 दिन की छुट्टियां मिलती हैं।
1: अच्छा।
0: अब सरकारी कार्यालयों में और निजी कामों में बच्चे के पिता को भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिल सकती है ताकि वो पत्नी और बच्चे को भी देखरेख कर सके।
1: पिता को भी छुट्टी मिले?
0: हाँ, पिता को भी छुट्टी मिलती है। किसी स्त्री को प्रसूति के 6 हफ्ते पहले काम पर नहीं रखा जा सकता, मतलब जैसे गर्भावस्था पूर्ण होने वाला है और 6 हफ्ता पहले कोई जबरदस्ती काम कर रहा है तो ये कानूनन अपराध है। स्त्री में प्रसूति के 6 हफ्ते बाद तक भी काम लेना कानूनी अपराध है। यदि मालिक प्रसूति से पहले और प्रसूति के बाद आवश्यक डॉक्टरी चिकित्सा सुविधाएं नहीं दे सकता तो उसे 250 रुपए मेडिकल बोनस यानी डॉक्टरी चिकित्सा का खर्च भी देना होगा। गर्भावस्था में काम के आखिरी 1 महीने के दौरान स्त्री से कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया जा सकता जो स्त्री के शरीर को थका दे। कोई ऐसा काम भी नहीं करवाया जा सकता जिसमें स्त्री को लंबे समय के लिए खड़ा रहना पड़े या भारी वजन उठाना पड़े। आप बकायदा ऐसा काम करने के लिए इनकार कर सकती हैं। जो भी महिलाएं श्रोता सुन रही हैं जिसमें पेट से में पल रहे बच्चे को किसी भी प्रकार का खतरा हो, यदि बच्चा गिर जाता है तो स्त्री को बच्चा गिरने के बाद 6 महीने का छुट्टी मिलना चाहिए। जो महिलाएं सरकारी नौकरी कर रही हैं उन्हें 45 दिन की छुट्टियां मिलनी चाहिए। यदि कोई स्त्री गर्भावस्था के कारण बच्चा गिर जाने के कारण प्रसूति के कारण 9 महीने से पहले बच्चा हो जाने के कारण बीमार पड़ती है तो उसे 1 महीने की अधिक छुट्टी पूरी वेतन के साथ दी जाएगी, यानी कुल मिलाकर 6 हफ्ते और 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। बच्चे का जन्म हो जाने के बाद स्त्री काम पर लौटती है तब बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसे दिन में 2 बार समय दिया जाना चाहिए। बच्चा 15 महीने का होने पर माँ की यह सुविधा मिलनी चाहिए कि 2 बार दिया जाने वाला समय आमतौर से दिए जाने वाले आराम के समय के अलावा दिया जाता है। अगर बच्चा पेट में या पैदा होने के बाद मर जाता है तब भी माँ को यह सुविधाएं मिलेगी। मतलब कहने का तात्पर्य कि गर्भावस्था के दौरान अगर कभी होता है कि कुछ कारणवश बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो भी प्रसूति के बाद की छुट्टी उन्हें मिलनी चाहिए आराम करने के लिए। यदि बच्चा होने के बाद माँ की मौत हो जाती है तब भी प्रसूति के 6 हफ्तों का वेतन दिया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान अगर काम कर रही है, माँ का डेथ हो गया तो वो पैसा जो है उसके पति को मिलना चाहिए बच्चे के लिए।
1: अच्छा, एक बात और, जैसे कि 6 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, 12 हफ्ते की कहीं छुट्टी मिल रही है तो ये सवैतनिक छुट्टी होती है ना?
0: जी जी, ये मैंने बताया ना कि ये वेतन के सहित छुट्टी है, वेतन की कटौती नहीं होनी चाहिए। और अगर माँ का डेथ हो गया तो 6 हफ्तों का वेतन जो है वारिस को दिया जाएगा, जैसे उसके बच्चे को, पति को या उसके माता पिता को भी दिया जा सकता है। स्त्री चाहे तो अपने नोटिस के पत्र में किसी का भी नाम दे सकती है जिसके उसके मरने के बाद का पैसा दिया जाए। परंतु यदि माँ के साथ बच्चे की मौत हो जाती है तो केवल बच्चे के मरण दिन तक का वेतन दिया जाएगा। ये सुविधाएं प्राप्त करने के लिए वेतन में काम करने वाली स्त्री अपने प्रसूति के पहले 12 महीनों से उस मालिक के पास कम से कम 80 दिन काम किया हो, मतलब
1: ये एक शर्त है,
0: ये एक शर्त है कि 12 महीने में 80 दिन वो काम की हो वहाँ पर कम से कम। स्त्री को चाहिए कि वो मालिक को अपनी गर्भावस्था की सूचना दे, सूचना लिखित रूप से देना ठीक रहता है। इस नोटिस के स्त्री को अपनी प्रसूति संबंधित तारीख और छुट्टी में जाने की तारीख लिखनी चाहिए। उसे यह भी लिखना चाहिए कि छुट्टी के दौरान कहीं और काम नहीं करेगी। अगर कोई स्त्री पहले से नोटिस नहीं दे सकती तो उसे प्रसूति के बाद यह सूचना दे देनी चाहिए कि प्रसूति के पहले की छुट्टी के पैसे और जाने के बाद मिल जाने चाहिए। प्रसूति 6 हफ्ते के बाद यह सुविधा आपको प्रसूति की सूचना देने के 48 घंटे के अंदर मिलनी चाहिए।
1: अच्छा, जैसे कि ये सरकारी और गैर सरकारी सभी जगह नियोजित महिलाओं के लिए है?
0: जी, ये दोनों जगह लागू होता है। मैंने बताया ना कि फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं और सरकारी दोनों के लिए लागू होता है।
1: तो अगर गैर सरकारी क्षेत्र में है तो वहाँ संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र की महिलाएं हैं, तो इस बारे में कुछ अलग अलग प्रावधान हो तो इस बारे में कुछ बताइए।
0: नहीं, वैसा संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए सेम प्रावधान ही नियम बनाए गए हैं, और अगर ऐसा उनके साथ नहीं

0: चाहिए और सफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं होनी चाहिए। महिलाओं से निश्चित वजन से ज्यादा वजन नहीं उठवाया जाना चाहिए। महिलाओं से किसी भी चलती मशीन को साफ करवाना या तेल लगवाना मना है। महिलाओं से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं करवाना चाहिए। फैक्ट्री में ओवर टाइम का काम नहीं लिया जा सकता है। हफ्ते में एक दिन का अवकाश और छुट्टी जरूर मिलनी चाहिए। 5 घंटों से अधिक लगातार काम महिलाओं से नहीं करवाना है। काम सिर्फ सुबह 6 बजे से और रात के 7 बजे के बीच ही करवाना है। तो ये फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को, जैसे असंगठित क्षेत्र के अंदर ये किया गया है, कानून बनाया गया कि जो भी महिलाएं हैं, श्रोता हैं, सुन रहे हैं, जो फैक्ट्री में या ईट भट्टों में कहीं भी काम करती हैं, तो ये सब अगर कानून का पालन वहां के मालिक नहीं करते हैं तो वो जाकर शिकायत श्रम अधिकारी के पास दर्ज कर सकती है।
1: आज इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी बात, जैसे कि जब कामकाजी महिलाएं होती हैं, ऐसे समाज में देखने को मिलता है कि अलग अलग वेतन दिया जाता है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है?
0: अलग अलग वेतन जो दिया जाता है उसके लिए सरकार ने कानून बनाया है, समान प्रासर्मिक अधिनियम 1976। ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि एक तरह के काम के लिए स्त्री और पुरुषों को एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। अधिकतर ऐसा होता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही एक ही तरह के काम में लगे रहते हैं, पर पुरुष को ज्यादा पैसे मिलते हैं। ये गलत है। ये जरूरी नहीं कि काम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, या एक या समान कार्य उससे कहेंगे जो मिलते जुलते हों, जिनमें करीब करीब एक जैसी मेहनत लगती हो। जिस काम के लिए पुरुषों को भर्ती किया जाए, उस काम के लिए स्त्री को भी भर्ती होने का हक है, अगर वे उस काम को काबिल से कर सकती है।
1: मतलब अगर नियोजन के दौरान किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए,
0: और काम में लगाने वाला व्यक्ति यानी मालिक किसी भी स्त्री के कामगार से वेतन में, भर्ती में, बढ़ोतरी में, तरक्की में, बदली में भेदभाव अगर करता है तो वो कानूनन अपराध है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपको इसलिए काम पर रखने के लिए तैयार नहीं है कि आप स्त्री हैं, तो उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। मालिक अगर भेदभाव करके समान वेतन नहीं देता है तो उसको 2 साल की सजा और कम से कम 10,000 रूपए से लेकर के 20,000 रूपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
1: रीना वर्मा जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कार्यस्थल पर बहुत तरह के ऐसे अवांछित व्यवहार भी महिलाओं के साथ होते हैं जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो इसके लिए कानून में क्या प्रावधान है?
0: ये भी आपने बहुत ही अच्छा शीर्षक उठाया है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो होता है, अक्सर कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में उनको समझ नहीं आता है कि वो दोषी के खिलाफ क्या और कैसे कदम उठाए। इस तरह से व्यवहार कानूनन अपराध तो है ही, लेकिन रोजमर्रा की बात थाने तक ले जाना कई महिलाओं के लिए संभव नहीं होता है। इस परेशानी को देखते हुए 1997 में हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार के कुछ मामले को निर्देश दिया, जिसमें क्या था, यौन उत्पीड़न। अगर कोई भी आपका कलीग शारीरिक स्पर्श या यौन मित्रता की कोशिश की मांग करता है तो ये गलत है। यौन संबंध स्थापित करने का अनुरोध करता है तो भी गलत है। यौन संबंधी टिप्पणी या मजाक करता है तो भी गलत है। अश्लील पुस्तक या चित्र दिखाता है ये भी गलत है। किसी भी तरह का यौन संबंधी अनचाहा व्यवहार करता है तो ये गलत है। तब महिलाएं जो हमारी श्रोता है वो क्या करें, वो ये करें कि उन यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए उन्हें ये करना है कि मनाही, जहाँ पर यौन उत्पीड़न की मनाही यथोचित तरीकों से प्रकाशित की गई है, सूचित या वितरित की गई, जैसे कोई पोस्टर वगैरह है जिसमें न्यूड फोटो वगैरह है, या फिर सरकारी या पब्लिक क्षेत्र में कर्मचारियों पर लागू होने वाले नीति नियम निर्देश में यौन उत्पीड़न की मनाही और दंड प्रावधान दिए जाएंगे। मतलब वहाँ चिपकाना होता है कागज जो विशाखा कमेटी के अंतर्गत बनाए गए हैं, तो जहाँ वो काम करती हैं तो वहाँ जरूर से वहाँ के जो फैक्ट्री के मालिक हैं या जो भी है, उनका ये बनता है कि सूचना जैसे हर जगह चिपकाते हैं ना, जैसे कृपया शांति बनाए रखें, तो उस तरह से एक पोस्टर चिपका देना चाहिए। निजी संस्थानों में स्टैंडिंग ऑर्डर का प्रावधान होना चाहिए कि यहाँ पर देख लीजिए भाई, आप काम करे तो यहाँ गलत हरकत नहीं होने चाहिए।
1: अरिना जी, जैसे कि एक बात और देखते हैं, जैसे अभी है कि ये ऑनलाइन का जमाना है और मोबाइल फोन ज्यादा चलता है, स्मार्टफोन का, तो वो भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है, कई शिकायतें इस तरह की आती हैं, तो ये सारे प्रावधान वहाँ भी लागू होंगे?
0: बिल्कुल, वहाँ भी लागू होंगे। महिलाओं को अगर कोई व्हाट्सएप पे कुछ गलत करता है तो ये सब प्रावधान वहाँ भी लागू होंगे। वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर, और वो विशाखा कमेटी, हर एक कार्यस्थल पर एक विशाखा कमेटी होनी चाहिए जिसमें कि एक सदस्य वहीं के जो फैक्ट्री है या जो संस्थान है वहाँ के एक होंगे, एक बाहरी सदस्य होंगे और एक पुलिस अधिकारी होते हैं वहाँ पर। इसमें क्या होता है ना कि अगर कोई तथाकथित व्यक्ति अपने कलीग के साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो वो महिला जागरूक होकर वहाँ पहले आवेदन देगी और वो तथाकथित व्यक्ति को नोटिस करवाएगी। नोटिस करवाने के बाद अगर वो व्यक्ति नहीं आता है तो फिर उसको नौकरी से संबंधित बर्खास्त किया जा सकता है या डिसमिस किया जा सकता है।

0: अगर वो आता है और अगर माफी मांग लेता है तो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने का एफिडेविट उसे लिया जा सकता है। तो ये हो गया कि अपने कार्यस्थल की बात कार्यस्थल तक रह गई, बदनामी नहीं हुई, मामला वहीं शांत हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं सुधर रहा है तो फिर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो धाराएं लगती हैं 354, 354 बी या उससे ज्यादा कोई अपराध हो रहा है 376 के अंतर्गत में, तो महिलाएं फिर थाना की ओर कदम बढ़ा सकती हैं। लेकिन कार्यस्थल के लिए कानून बनाए गए हैं कि विशाखा कमेटी के अंतर्गत किसी भी महिला के साथ कुछ ऐसा होता है तो महिलाएं एक तो ये कर सकती हैं कि चार पांच महिलाएं एक साथ हैं तो वो जागरूक रखे, एक संगठन के रूप में रहे ताकि कोई भी पुरुष उनको परेशान ना कर सके। दूसरा, वो अपने कार्यस्थल में जहां काम कर रही हैं वहां एक पोस्टर चिपका के रख सकती हैं कि कृपया यहां गलत सलत बातें या जो पोस्टर वगैरह ये ना किए जाए। तो इस तरह से वो अपना रक्षा और अपना बचाव कर सकती है।
1: चलिए, बड़ी अच्छी बात हुई। और बोला था कामकाजी महिलाओं के संबंधित सारे अधिकारों की चर्चा आज हमने इस बातचीत में हम सभी ने की, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों से महिलाओं को लाभ होगा, कामकाजी महिलाओं को लाभ होगा जो इस तरह की समस्याओं से अक्सर जिन्हें सामना करना होता है।
0: जी, जी,
1: तो रीना वर्मा जी अपने बातचीत की इतनी अच्छी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कानून एवं समाज के विभिन्न पहलुओं पर आधारित कार्यक्रम कानूनी सलाह। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे कि भेंटवार्ता विषय था कामकाजी महिलाओं के कानूनी अधिकार। भेंटवार्ताकार थे अधिवक्ता रीना वर्मा और इनसे बातें कर रहे थे सूरज रजक। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 MHz पर। अब सब कुछ ही देर में आप सुनेंगे संसद समीक्षा, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल के मसौदे पर विचार किया गया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी की समृद्ध विरासत और कला को प्रदर्शित करने के तरीकों पर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने रामजस कॉलेज में शोध फाउंडेशन द्वारा आयोजित अन्वेषण 2.0 के समापन सत्र को संबोधित किया। लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने रोहिणी सेक्टर 20 और 21 की सीवर व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। अब आप सर फिरोजी से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले तक बैठक बार बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर 2.5 घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलंब होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम

कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारी की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत, रोहतक एवं हिसार को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। शून्यकाल में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉ एम थंबीदुरई ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस के विवेक तनखा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनबदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंताकायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्ज्वल निकम आदि ने भाग लिया। करीब ढाई घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
मेघवाल।

ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलना देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल है, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एनके प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे, हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के

ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंक कार्य बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका, हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया। सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 8:15 और 6 सेकेंड्स हुए हैं। आइए सुनते हैं फार्मेसी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही स्वीकार करें परमेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से सप्रेम नमस्कार भी। आज इस कार्यक्रम में आपके उन तमाम खतों को शामिल किया जाएगा जिन खतों के माध्यम से आपने गीतों को सुनने की ख्वाहिश की है।

कार्यक्रम का आगाज करते हैं कर्ज फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने और इस गीत को सुना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। सिमरा रेस चौक बड़का गौ रोड हजारीबाग से आप हैं मानसी राज, ज्ञानसी राज, मिताली राज, प्रांजल राज।

अर्पित राज और राजवीर राज, साथ ही विमल गुप्ता, वंदना गुप्ता और उनके साथियों ने इस गीत को सुनना चाहा है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, आदर्श नगर मलोट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। पंचपंती रोड हजारीबाग से आप हैं कलाम अहमद आजू, निलोफर परवीन आजू, एहसान अहमद आजू, हबीबा खातून आजू, इरफान अहमद आजू, सबाना परवीन आजू, फिरोज अहमद आजू और शमा परवीन आजू। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण जीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश भट्टा। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है आप हैं छत्तीसगढ़ भाटपाड़ा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा।

दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम जो गीत आपको सुनाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म सौतन से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। शांति आश्रम बड़कागांव रोड हजारीबाग से आप हैं राजेश साव, अजीत, शैलेंद्र, रंजीत, छोटू और राजेश कुमार श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ तंतरेगी से आप हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से आप हैं विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से आप हैं दुर्गा राम साहू। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासुमुंद से वलीउल्ला फकीर, डब्लू उल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से आप हैं बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साहिर राही और महराज जहां। सरू चौक अमरावती महाराष्ट्र से आप हैं कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान पोतरा, मुजताबा खान पुत्री, आफिया खान, रऊफ भाई और शहीद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर।

दोस्तों, इस कार्यक्रम में कई श्रोता जुड़ चुके हैं और कुछ नए श्रोता भी इस कार्यक्रम में अपने खतों के माध्यम से शामिल हुए हैं। अगर आप भी अपने गीतों को शामिल करना चाहते हैं इस कार्यक्रम में तो हमें खत अवश्य लिख भेजें। कार्यक्रम का पता हम इस गीत के बाद कार्यक्रम के आखिर में बताएंगे। बहरहाल कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं और हम आप जो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म सरगम से। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। बेरडी से आप हैं हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर और तनु करमकर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। किशन टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से आप हैं नाना डोंगर दीवे, रमाताई डोंगर दीवे, सीमाताई डोंगर दीवे, रिमाताई डोंगर दीवे, दीक्षाताई डोंगर दीवे और राहुल डोंगर दीवे। इंदिरा विहार रायगढ़ से आप हैं वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां और अल्लाह अकरम नूरजहां। राजनांदगांव से आप हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से आप हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिपा तिवारी। पटेल नगर मलोट पंजाब से आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बीबी आरजू जाजोरिया।

और दोस्तों, अब हम कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आज का गुंडा राज फिल्म के गीत। आवाज़ अभिजीत और साधना सरगम की है, सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। मगनपुर से आप हैं अमजद अली और अब्बास आलम। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जय तेग विरक और मीका विरक। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और धनक्ष आरु साहू। मलरोट कैंप पंजाब से आप हैं सतीश मिकलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण कोरवर और रमेश मिकलानी।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम का समापन भी हो चला है। जाते जाते कार्यक्रम का पता आप नोट कर लीजिएगा। कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम आपकी चाहत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग, पिन संख्या 825301। इसी पते पर आपके खतों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त परमेंद्र को दीजिए कार्यक्रम आपकी चाहत से इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, News@9 और स्पोर्टलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके ठीक बाद आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को, जिसे हम रिले करेंगे अपने मुंबई केंद्र से। इन सब के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
3: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
4: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
5: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश हैं।

0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम ए इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
1: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहां उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी के एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहां भी ये जाके आए 8 लोग और वहां इनको लोकल एक स्पोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ता गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
2: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नैरेटिव यहां एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई 2 दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एलमुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

उनके अभिनय, उनकी खूबसूरती पर भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं। फिल्मी पर्दे पर इनकी अदाएं और अभिनय की तारीफ के लिए चांद सितारों के उपमान भी फीके पड़ जाते हैं।

5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके कुशल अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था।

काजोल को अभिनय की तालीम तो विरासत में मिली। काजोल की नानी शोभना समर्थ मूक फिल्मों के जमाने से समर्थ अभिनेत्री थीं। बाद के दिनों में उन्होंने कई सशक्त फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। शोभना समर्थ की दोनों बेटियां तनुजा और नूतन अपने अभिनय कौशल में माहिर थीं और उन्होंने अपने अभिनय कौशल से लोगों को मोहित किया। माँ तनुजा और मौसी नूतन से काजोल को अभिनय की बारीकियां खुद ब खुद सीखने को मिल गईं।

काजोल की नानी, उनकी माँ और मौसी तो फिल्मी दुनिया की विशिष्ट अदाकारा तो थी ही, उनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी गजब के कलाकार थे। उनके खानदान में और भी एक्टर्स थे, रानी मुखर्जी, मुनीश बहल, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म बनाने वाले अयान मुखर्जी। परिवार में इतने सारे फिल्मी कलाकारों का जमावड़ा, फिल्मी परिवार के बीच बड़ी चुलबुली और शरारती सी काजोल पढ़ाई में अपना मन लगा रही थी। दोस्तों, काजोल के माता पिता ने पहाड़ों के गोद में बसी जगह पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलवा दिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय का चस्का लग गया। पढ़ाई के दिनों में ही काजोल को साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। वे साहित्यिक किताबें पढ़ती थीं और बहुत सारी कहानियां पढ़ती थीं। एक बार वे कॉलेज से, पंचगनी से मुंबई आई। वहां राहुल रवेल की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां उन्होंने कैमरे के सामने कुछ परफॉर्म किया। बस वहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 1992 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेखुदी में उन्हें एक बड़ा ही सुंदर किरदार मिल गया निभाने के लिए।

और उनके साथ थे नवोदित अभिनेता कमल सदाना और उनकी माँ तनुजा भी इस फिल्म में साथ थीं। काजोल ने इस फिल्म में राधिका का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास साबित नहीं हुई, लेकिन काजोल के अभिनय की बहुत बहुत सराहना हुई। और उसके बाद अब्बास मस्तान की क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजीगर में उन्हें रोल मिला, जिसमें उनके साथी कलाकार थे शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी।

अभिनय की बारीकियों के कारण काजल को बहुत जल्द बेहतरीन रोल मिलने लगे और काजोल ने अभिनय की चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया और खुद को साबित किया। काजोल ने यूं तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम करके अपने अभिनय का जलवा दिखाया, लेकिन शाहरुख खान के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी।

मुंबई के एक सिनेमा घर में आप अभी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म देख सकते हैं। सन 1998 में शाहरुख खान के साथ काजोल की एक और हिट फिल्म आई कुछ कुछ होता है।

शाहरुख खान और काजोल की एक और हिट फिल्म आई माय नेम इज खान। दोस्तों काजोल ने सिर्फ बेस्ट हीरोइन का ही रोल नहीं किया बल्कि नेगेटिव रोल में भी काजोल बेस्ट एक्ट्रेस कहलाई। उन्होंने फिल्म गुप्त में रोल किया नेगेटिव लेकिन रिजल्ट रहा पॉजिटिव। इस तरह काजोल ने साबित कर दिया कि काजोल हीरोइन का रोल करें या खलनायिका का रोल करें रहेंगी वे उत्कृष्ट अदाकारा।

हर लड़की के जीवन में एक रोज एक राजकुमार आता है। वो राजकुमार उसके सपनों में नए रंग भरता है। काजोल के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के हीरो बने अजय देवगन।

फिल्म दिल क्या करे। इस फिल्म में उनके साथ थे अजय देवगन। 1994 में आई फिल्म हलचल में काजोल ने शर्मिली सिन्हा की भूमिका निभाई थी। सन 1998 में फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था, जिसमें काजोल ने संजना पटेल का किरदार अदा किया था।

राजू चाचा, गुंडा राज और यूमी और हम अजय देवगन के साथ ये हिट फिल्में काजोल ने दी। फिल्म यूमी और हम में काजोल अल्जाइमर्स नाम की बीमारी से ग्रसित होती हैं। अजय देवगन के साथ ये एक मार्मिक फिल्म थी।

सन 2006 में काजोल की फिल्म आमिर खान के साथ आई थी। फिल्म थी फना, जिसमें उन्होंने एक नेत्रहीन कश्मीरी लड़की की भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में ऋषि कपूर पर्दे पर नजर आए थे।

0: आमिर खान के साथ कुछ फिल्में और की थी काजोल ने, जैसे फिल्म इश्क। हालांकि फिल्म इश्क में आमिर खान के साथ थी जूही चावला।
1: काजोल की बेहद कमर्शियल फिल्म आई थी हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म में काजोल के साथ पर्दे पर नजर आए थे अनिल कपूर।

काजोल बनी थी मेघा वर्मा। सन 2000 में आई फिल्म राजू चाचा। सन 2001 में फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी।

0: कुछ मीठी।
1: दोस्तों, काजोल को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1996 में काजोल को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

सन 1999 में फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। सन 2002 में कभी खुशी कभी गम फिल्म के लिए मिला काजोल को

काजोल के फिल्मी करियर की एक बड़ी बेहतरीन फिल्म आई थी तानाजी, जिसमें अजय देवगन बने थे तानाजी मालूसरे, काजोल बनी थी सावित्री बाई और सैफ अली बने थे उदय भानु सिंह राठौड़। बहुत सारे फिल्मी समीक्षकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी।

सैफ अली खान के साथ काजोल की एक और फिल्म आई थी ये दिल लगी, जिसमें साथ में अक्षय कुमार भी थे। एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म आई थी काजोल के फिल्मी करियर की सन 1998 में दुश्मन, जो बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए

काजोल की अभिनय यात्रा आज भी जारी है। सन 2015 में उनकी एक कॉमेडी फिल्म आई थी दिलवाले। फिल्म खूब चली थी।

सन 2021 में आई फिल्म त्रिभंगा, इसके बाद सन 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी। काजोल ने कुछ वेब सीरीज भी की, जैसे कि दी ट्रायल। काजोल ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए। वे कहीं चुलबुली लड़की के रूप में पर्दे पर नजर आईं, कहीं गंभीर स्त्री, तो कहीं बेहद रूमानी प्रेमिका या पत्नी।

अभिनय के अलावा काजोल एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और विधवाओं और बच्चों के साथ अपने काम के लिए वे काफी चर्चित हैं। काजोल ने सन 2008 में कुछ रियलिटी शोज भी किए जिसमें एक टैलेंट जज के रूप में भी उन्होंने काम किया।

काजोल का फिल्मी करियर काफी विराट है। उनके पूरे करियर को समेटकर सारी फिल्मों का जिक्र करना एक कार्यक्रम में संभव नहीं है। आज बस इतना ही।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री काजोल पर।
1: जाती हूँ मैं,
2: जल्दी है क्या,
1: ढके जिया,
2: वो क्यों भला।
0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज के फनकार।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना जिसे हमने लिया है फिल्म आज और कल से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

0: हरे आशीर्वादम अशोक कुमारम
1: जय गोविंदम जय गोपालम
0: पृथ्वी पुत्रम राज कपूरम शम्मी कपूरम शशि कपूरम
1: जय गोविंदम जय गोपालम
0: रामम श्यामम दिलीप कुमारम पूरब पश्चिम मनोज कुमारम
1: जय गोविंदम जय गोपालम
0: हरे प्रेम पुजारी देवानंदम रूप पुजारी आय जहरम
1: जय गोविंदम जय गोपालम
0: हरे नीलम कमलम राज

0: गोविंद जय गोपाल।
1: अरे पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम,
0: जय गोविंद जय गोपाल।
1: अरे बम बम नाचे किशोर कुमार, बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम।
2: आइए सुनते हैं आप फिल्म में मुकेश को।

के दीवाने जी। हाँ, इस फिल्म के गीत हम आपको सुनवा रहे थे। आवाजें मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की थी। और इसी के साथ दोस्तों कार्यक्रम रजनीकांत यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते कार्यक्रम एक फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं पाकीज़ा फिल्म के गीतों को।

हम आपको बताते चलें कि ये पाकीज़ा फिल्म सन 1972 की एक प्रसिद्ध बॉलीवुड संगीतमय ड्रामा फिल्म है। इसे कमल अमरोही ने लिखा और निर्देशन किया। इस फिल्म में मुख्य भूमिका महान अभिनेत्री मीना कुमारी ने निभाई। इसे बनाने में लगभग 14 वर्ष लगा था। सन 4 फरवरी 1972 में ये रिलीज हुई और मुख्य कलाकार के रूप में मीना कुमारी, राजकुमार और अशोक कुमार इस फिल्म में नजर आए। संगीतकार थे गुलाम अली और नौशाद अली। पाकीज़ा एक उर्दू शब्द है, इसका अर्थ होता है निर्मल या पवित्र। फिल्म लखनऊ की एक साहिबजान की मार्मिक कहानी है। ट्रेन में सोते वक्त साहिबजान को एक अजनबी का पत्र मिलता है जो उसकी सुंदरता की तारीफ करता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन समाज की मुश्किलों की वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है। यह फिल्म कमाल अमरोही का एक महत्वपूर्ण सपना थी जो उनके निजी जीवन के उतार चढ़ाव के कारण 14 साल में पूरी हुई। फिल्म रिलीज होने के कुछ ही हफ्तों बाद मीना कुमारी का निधन हो गया जिससे यह उनकी आखिरी यादगार फिल्म बन गई। आइए सुनते हैं पाकीज़ा फिल्म के गीतों को।

मिलन की खुशी पल भर की, जुदाई का गम उम्र भर, इसको ही सच्चा है जो हर हाल में रहे असर। मिलकर भी कई लोग बिछड़ जाते हैं राहों में, कुछ रिश्ते उम्र भर दिल में ही सफर करते हैं।

तेरा मिलना भी एक ख्वाब था, तेरा मिलना भी एक ख्वाब था, तेरा बिछड़ना भी। अब यादों के सहारे ही जिंदगी गुजरती है, मिलन में जो सुकून था, जुदाई में वही याद है।

जुदाई ने सिखा दिया मोहब्बत का असली मतलब, जो पास होकर न समझे वो दूर होकर समझ आया।

जुदाई में भी एक अजीब सा नशा है, यादें वही ठहर जाती हैं जहां दिल टूट के भी मुस्कुराना नहीं भूलता। कभी कभी जुदाई मोहब्बत की असली पहचान बन जाती है, क्योंकि वही दिल समझता है कि कोई कितना अपना है, और वो समय भी कितना अजीब था। कार्यक्रम रजनीगंधा में आज बस इतना ही। अपने दोस्त परमेंद्र को दीजिए कार्यक्रम रजनीगंधा से अनुमति। नमस्कार।

हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: नेता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मुंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते साहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रैट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretations issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour for a timely reform. The strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original Act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019. After completing the business, Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. Earlier in the day, the Upper House witnessed repeated disruptions over several issues, including alleged police action during students' protest on the NEET paper leak issue. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid, and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. CEO of Meta, the parent company of several of the world's largest social media networks and communication tools, Mark Zuckerberg today sent his apologies to the government of India for the child sexual abuse material, related content, deepfake content and errors in operating the platform. Sources said Meta admitted that a lot of money was paid for boosting certain type of content. Today marks 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 35A. On this day in 2019, a landmark decision marked the beginning of a new chapter in the journey of Jammu and Kashmir and Ladakh. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said, constitutional changes made in 2019 ushered in development and empowerment in the two union territories. In a social media post, Mr. Modi highlighted that infrastructure has expanded, opportunities in areas such as education, healthcare, entrepreneurship, and sports have grown in both Jammu and Kashmir and Ladakh. On the 7th anniversary of the abrogation of Article 370, Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal, while talking to the media, said the historic step accelerated development in Jammu and Kashmir.
4: Article 370 and Article 35A were discriminatory and unjust provisions which were abolished by Prime Minister Narendra Modi in 2019. Since then, the pace of development in Jammu and Kashmir has accelerated. Both heritage and development have received a boost. Employment opportunities have increased and people have witnessed unprecedented infrastructure growth. The people there are happy.
3: In Jharkhand, the students' protest against the alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission and Jharkhand Staff Selection Commission examinations being held at Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi is intensifying with each passing day. The agitating students have announced plans to lay siege to the Jharkhand Assembly during the upcoming monsoon session to press their demands. India enjoyed a mixed day at the Korea Masters Badminton Tournament in Asan, with seven players advancing to the second round of women's singles, while all six men's singles players crashed out in the opening round. In the women's singles, Anmol Khair, Tanvi Sharma, Mansi Singh, Rakshita, Ramraj, Ashmita Chaliha, Isharani Barua and Shriyanshi Valishetty progressed to the second round with impressive victories. And that is the end of this news bulletin.
5: Yeah. ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है 102.1 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 और 16 सेकंड हुए हैं। यही संपन्न होता हमारा आज का दैनिक प्रसारण। कल सुबह 5:53 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने दैनिक प्रसारण के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।